से मुंह के अंदर ही मोड़ लेंगे। मुंह से श्वास लें, नाक से श्वास को छोड़ें और यही प्रक्रिया हमें समय के हिसाब से, यानी कि हम 1 से 2 मिनट प्रारंभिक स्थिति में करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम उसके टाइम को बढ़ाते जाएंगे। यह शरीर को ठंडक देता है, क्रोध और तनाव को कम करता है। गर्मी के मौसम में यह विशेष लाभकारी होता है। अगला आता है शीतकारी प्राणायाम। इसको करने के लिए दांतों को हल्का खोल कर रखें, दांतों के बीच से श्वास लें और नाक से श्वास को छोड़ें। शरीर को और मन को शीतलता देता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में यह सहायक होता है। अगला प्राणायाम आता है उद्गीत प्राणायाम। यह गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते समय लंबा ओम का उच्चारण करें तथा हमिंग साउंड करें, यानी कि करके एक साउंड हम बनाते हैं, वही साउंड हम कर सकते हैं। मन को अत्यंत शांत करता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगला प्राणायाम होता है अग्निसार। अग्निसार श्वास बाहर निकाल कर रोकें, पेट को बार बार अंदर बाहर करें ताकि हमें यह मालूम हो सके कि हम श्वास को ठीक तरीके से छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। पाचन तंत्र मजबूत करता है, गैस, कब्ज और अपच में लाभदायक होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बारी बारी से दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ें और लें। श्वास की गति धीमी और नियंत्रित रखें। शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करता है, तनाव को कम करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखता है आपके लिए। क्योंकि सबसे पहले ये जरूरी होता है कि अगर हमारे पेट में गैस, पेट फूलना, हल्की कमजोरी और भूख कम लगने की अगर बात है तो यह प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो ये था आज की जो एक समय सारणी यानी मुख्य प्राणायामों की सूची। तो आप इसे जरूर से करें और उसके बाद हमें चैट बॉक्स में आकर के इन सारे नियमित प्राणायामों के बारे में बताएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है और आप उसमें चाहते हैं कि कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में आकर के मैसेज कर सकते हैं और या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह और सुन सहेली प्रोग्राम में, ताकि हम उसका निवारण आपको दे सकें। तो इसी के साथ आज की समय सारणी को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक और प्राणायाम, एक और आसन के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योगिनी योगशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आइए आज हम कुछ ऐसे आसनों को आपके सामने बताने जा रहे हैं जो कि अमूमन हम सिर्फ सुनते ही आए हैं, जैसे कि सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन। योग की बहुत ही सरल और हल्की कसरतें होती हैं, जिन्हें शरीर को तैयार करने के लिए, लचीला बनाने और ऊर्जा प्रभावित करने के लिए किया जाता है, वह सूक्ष्म आसन या सूक्ष्म व्यायाम कहलाता है। सूक्ष्म आसन वे छोटे छोटे अभ्यास हैं जिनसे शरीर की जोड़ों, नसों और मांसपेशियों में जकड़न कम होती है, रक्त संचार बेहतर होता है। ये मुख्यतः वार्म अप की तरह होते हैं और बड़े आसनों की तैयारी कराते हैं। विशेषताएं इसकी बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे पहले सूक्ष्म आसन के बारे में जानना यह इम्पोर्टेंट होता है। आसन सरल होते हैं, ये आपको सभी पता है, लेकिन कुछ आसन को आसान बनाने के लिए हम सूक्ष्म व्यायामों को करते हैं। यह हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। अधिक समय और शक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। शरीर को धीरे धीरे सक्रिय बनाते हैं। सूक्ष्म आसनों के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे ग्रीवा आसन, गर्दन को घुमाना, आगे पीछे घुमाना, स्कंद आसन, कंधों को ऊपर नीचे गोल गोल घुमाना, भुजा आसन, हाथों को फैलाना, घुमाना और ऊपर नीचे करना, कर आसन, कलाइयों और उंगलियों को मोड़ना, सीधा करना, कटी आसन, कमर को दाएं बाएं झुकाना और गोल घुमाना,
बाद

आसन, पैरों को मोड़ना, सीधा करना, एड़ी पंजों पर खड़ा होना। नेत्र आसन, आँखों को अलग अलग दिशाओं में घुमाना। सूक्ष्म आसनों के ये कुछ प्रकार हैं जो कि हम कर सकते हैं। आइए अब हम बताने जा रहे हैं लाभ। शरीर में जकड़न और अकड़न को दूर करने में यह सहायक सिद्ध होता है। रक्त संचार और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं। बड़े योगासन, प्राणायाम या ध्यान करने से पहले शरीर को तैयार करते हैं। तनाव, थकान और आलस्य को कम करते हैं। छोटे छोटे शब्दों में अगर हम यूं कहें कि सूक्ष्म आसन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। छोटे छोटे हल्के व्यायाम पर बड़े योगाभ्यास की तैयारी कराते हैं। हमने अभी जाना कि सूक्ष्म आसन क्या होते हैं। आइए सूक्ष्म व्यायाम के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि अब हम आराम से आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया ग्रीवा संचालन यानी कि गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना या ग्रीवा संचालन यानी कि गर्दन का व्यायाम कहलाता है। स्कंध संचालन यानी कि कंधे का व्यायाम। कंधों को ऊपर नीचे, घड़ी की दिशा में घुमाना यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंधों की जकड़न और तनाव को कम करता है। भुजा संचालन यानी कि हाथों का व्यायाम। हाथों को सीधा फैलाना, ऊपर उठाना, गोल घुमाना रक्त संचार और चलक बढ़ाता है। करतल संचालन यानी कि हथेली और कलाई का व्यायाम। मुट्ठी खोलना और बंद करना, कलाइयों को घुमाना और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस दिशा में हम घुमाएंगे। हाथ पैरों में रक्त संचार सही करता है। अगला आसन है हमारा पाद संचालन जो कि पैरों का व्यायाम होता है। पैर की उंगलियों को मोड़ना, सीधा करना, एड़ी पंजों पर खड़े होना पैरों की नसों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। घुटना संचालन, घुटनों को मोड़कर गोल गोल घुमाना घुटनों की जकड़न को दूर करता है। कटी संचालन यानी कि कमर का व्यायाम। कमर को दाएं बाएं घुमाना और झुकाना यह कटी संचालन यानी कि कमर व्यायाम के अंतर्गत आता है। पीठ और कमर को लचीला बनाता है। और सबसे लास्ट में आता है नेत्र व्यायाम जिसे त्राटक क्रिया भी कहते हैं। आँखों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल घुमाना और पलके झपकाना आँखों की रोशनी और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह वे आसन हैं जो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम योग की वह सरल कसरतें हैं जिन्हें बिना किसी कठिनाई के कोई भी किसी भी समय कर सकता है। मुख्यतः शरीर को लचीला, सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए यह व्यायाम और अभ्यास किए जाते हैं। इसे योग की भाषा में मिनी योग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसीलिए आजकल सभी लोग मिनी योग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। मन को और मस्तिष्क को शांति देने के साथ साथ हमें तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन भी कम करता है। एकाग्रता और ध्यान भी बढ़ाता है। रक्तचाप और हृदय की धड़कन को भी संतुलित करता है। फेफड़ों की क्षमता, श्वसन तंत्र को साथ ही साथ मजबूत करता है और नींद की समस्या में भी सहायक सिद्ध होता है। पूर्णतः हम आपको ये बता दें कि कोई भी अगर हम आसन और व्यायाम की प्रक्रिया को करते हैं तो वह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हम उस पे अपना पूर्ण रूप से उसको करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में 3 से 5 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसी के साथ हम अगले फिर व्यायाम में मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टा आसन।
उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुकें और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है, कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव, चिंता और थकान को भी यह कम करता है। मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है। शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पीठ सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं। पेट के मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है। हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है। पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 3 घंटे के बाद इस आसन को करना चाहिए। शुरुआती लोग इसे दीवार के सहारे या किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही करें। आसन करने के बाद कुछ समय बालासन और जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं उसमें आराम से बैठ जाएं और उष्टासन को पूर्ण करने के बाद ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ही हम इस आसन को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी उष्टासन के लाभ, सावधानियां और तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से यदि आप इस आसन को करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियां, उपचार, लाभ
और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना, या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना। पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी पिएंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी गैस की समस्या जितनी भी भारी होगी वह धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म तेज करता है। खाली पेट पानी पीने से शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ती है, वजन घटाने में मदद मिलती है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन लोगों को जिम जाना होता है, भारी से भारी एक्सरसाइज करनी होती है। शायद उनका उद्देश्य यही होता है कि हमें पतला होना है, हमारा पेट अंदर हो जाए, टमी अंदर हो जाए और हम अच्छे से सुडौल होकर के मार्केट में जाएं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं, या फिर हम अपने घर पे रहें, अपने दोस्तों के बीच में जाएं। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी की आदत डाल लेनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म तेज करता है, यानी कि खाली पेट पानी पीने से शरीर की जितनी भी खराब कैलोरी होती है वो बर्न की करने की क्षमता बढ़ जाती है और वजन घटाने में मदद करता है। आप मेरे कहने पे, यानी आज समता के कहने पे, एक महीना लगातार एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत सुबह शुरू करें और आप ये आदत को शुरू करने से पहले वेट करें और उसके बाद एक महीने के बाद अपना वजन जरूर करें। आप देखेंगे कि

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है जब हम शांत रहते हैं ना तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व के शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी नागे

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्रों वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै बकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स्य, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या, यक्ष

जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं। उन्हीं या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों, आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: प्यार से खूबसूरत।

दोस्तों, शिव पूजन में बेलपत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे बेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। बेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि बेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें, तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि जिसका आरंभ ना हो, शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता। इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती, उन्हें शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं, होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यानिसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: वाओ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और उसी डे का इंतज़ार जहां से एक बार फिर से पूरा पूरा वीक स्टार्ट होता है। तो चलिए भाई, आज का वीक भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से और इत्तेफाक की बात है कि आज इस वीक की तो शुरुआत है लेकिन इस मंथ का एंड है, यानी है आज 31st of August, यानी 31 अगस्त देखते ही देखते आ गया और हमने इस महीने का सबसे बड़ा त्यौहार 15th of August यानी ऑफ़ कोर्स स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। इसके साथ ही साथ ये मंथ अब हमसे विदा ले रहा है लेकिन इस मंथ की बहुत सारी यादें राखी की, 12 रबीउल अव्वल की और अपनों के साथ छुट्टी मनाने में काफ़ी कुछ गुजरी है। सो आई होप कि बहुत ज़्यादा यादगार तो रहा होगा ये गुज़रता लम्हा, ये गुज़रते दिन, राइट? चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल अब क्या करना है, अब आपको ले चलना है आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताना है कि भाई आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है और आपसे एक्चुअल में क्या है कहना चाहता। लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

दो चीज, जस्ट टू थिंग्स जिंदगी में, अगर ये दो चीज पर आपने अपना वश चला लिया तो यकीनन आपको कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली बता रहे हैं, आप कोई भी कंडीशन ले आइए, आप कोई भी सिचुएशन ले आइए, अगर इन दो चीज़ों पर आपने जीत हासिल कर ली तो यकीनन आप जिन राहों पर बढ़ रहे हैं, जिन सपनों को बुन रहे हैं और जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। लिटरली बता रहे, बहुत इजी हो जाता है। सो आखिर ये दो चीज़ है क्या? सवाल तो ये उठता है कि ये दो चीज आखिर है क्या। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर ये दो चीज क्या है। दरअसल आज का थॉट कह रहा है कि नींद और निंदा, जी हाँ, यानी कि स्लीपिंग और क्रिटिसिज्म, नींद और निंदा पर जो इंसान कामयाबी पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, नींद और निंदा पर जो भी इंसान कामयाबी पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। अब नींद और निंदा को समझेंगे। नींद, जी हाँ, आधे से ज़्यादा आबादी की, आधे से ज़्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम है, जब कुछ करने का वक्त आता है तो नींद बहुत तेज़ आती है। नींद से मतलब आलस से है, और लिटरली कई बार नींद बहुत ज़्यादा आने भी लग जाती है। हम सोचते हैं कि भाई हम कुछ नया सोचो, कुछ नया करने का, तो ये नींद क्यों आ जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में जो जहन है, जो दिमाग है, वो हमेशा उस चीज़ को अपोज करता है, क्योंकि उसको नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो दिमाग तो हमेशा बहाने करेगा और नींद ले आएगा, कहेगा नींद आ रही है सो जाओ, क्योंकि उसको नया कुछ नहीं करना है, राइट। और आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं उससे अलग हट करके कुछ जब तक नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ फ़िलहाल आप हैं और जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। इसीलिए ये आलस जो है, ये नींद जो है, ये बहुत बड़ी रुकावट बनती है जब कोई चीज़ आप अचीव करने निकलते हैं। निंदा ऑफकोर्स हर काम की होती है, जैसे ही शुरुआत करेंगे वैसे ही निंदा, कुछ करने लग जाएंगे तो भी निंदा, हाँ जब कुछ अचीव कर लेंगे तो कम निंदा होगी, ज़्यादा अचीवमेंट की तारीफ होगी, लेकिन तब भी निंदा करने वाले रहेंगे। निंदा दो तरह से हमने हमेशा बताने की कोशिश की है, दो तरह से होता है। एक होती है सच में, यानी आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या लोगों को तकलीफ हो रही है, सो वो निंदा सच है, उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, सही करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई आपकी यूं ही निंदा हो रही है, क्यों? क्योंकि बस आप बेस्ट कर रहे हैं, और शायद यूजुअली इंसान को जब कोई उससे ज़्यादा बेहतर करता है तो बुरा लगता है। अगर ऐसी कोई निंदा है जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, कोई लॉस नहीं हो रहा है और आप अपनी जगह बेहतर हैं, तो बस वो निंदा बेकार है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़िंदगी में रोकती हैं। इसलिए आपको अपनी इन दो चीज़ों पर अगर आप विजय पा लेते हैं, नींद और निंदा, तो यही कहा गया है कि फिर आपको लाइफ में बढ़ने से आगे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यही दो चीज़ जो है यही आपको बढ़ने से रोकती है, यही आपको आगे जाने नहीं देती है। इसीलिए आज का ये थॉट ऑफ द डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन दो चीज़ों को बारे में हमने सच में समझ लिया और जान लिया तो हमारी लाइफ चेंज होना ही होना है, डेफिनेटली होगी। तो भाई आपको क्या लगता है, आपको भी तो कई बार नींद ने रोका होगा, और नींद से कहीं ज़्यादा आपको निंदा ने रोका होगा कि अरे हम तो जो कुछ करते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि तुमसे तो हो ना पाएगा, और तुमने ये भी किया तो गड़बड़ किया और वो भी किया तो गड़बड़ किया। तो भाई अब या तो निंदा में ही फंसे रह जाए और या तो आगे अब निकलते चले जाए बिना ये सोचे समझे कि किसने क्या कहा। हमारा काम है बार बार ट्राई करना, हमारा काम है हमें अपने सपनों तक ले जाना, हमारा काम है कि हमें खुद को खुश रखना, वो हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल ये आज का थॉट ऑफ द डे जो मंडे वाला था
वो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी नहीं है और बहुत टिकाऊ नहीं है, यानी ज़िंदगी का सच में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों से दूर हो करके बस जीना है, नींद और निंदा से दूर रहना है।

0: जिंदगी सच में दो पल की है और इसी दो पल में एक पल में नींद और दूसरे पल में निंदा जो है वो हमको परेशान कर देते हैं। फिलहाल इनसे अगर आगे हम निकल गए तो डेफिनेटली ये कहा गया है कि हमको कोई रोक वोक नहीं पाएगा, हम बता दे रहे हैं पहले से ही, बाद में मत कहिए बताया नहीं था। चलिए फिलहाल आपका वेलकम करते हैं वंस अगेन ऑन मॉर्निंग वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग शॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल चूंकि आपने ट्यून किया हुआ है फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन के चैट पर जो कुछ आप लिखते हैं वो गोंडा एफएम के आरजेस तक लाइव उनके शोज में पहुंचता है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त किसने क्या लिखा है और लाइव हम तक क्या क्या पहुँचा है। सबसे पहले अरविंद हैं फ्रॉम मनकापुर, लिखा है गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे टू ऑल माय स्वीट फ्रेंड्स एंड सर, थैंक यू सो मच, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद महेंद्र देपन हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखते हैं सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। आगे लिखते हैं कि हर सुबह हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी खूबसूरत है और ख़ुद को कल से बेहतर बनाने का मौका हमेशा हमारे पास है, सो हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शानदार रहे। थैंक यू सो मच टू यू महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका दिन भी शानदार रहे ऐसी दुआ हम यहाँ से आपके लिए करते हैं। अनूप जी हमारे मौजूद हैं और लिखते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान, यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। सुप्रभात, क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही। सुप्रभात आपको भी, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सोनिया तिवारी जी मौजूद हैं, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। आशु जी लखनऊ से लिखते हैं सुप्रभात सर जी, सुप्रभात, सुंदर सुबह का मीठा मीठा नमस्कार, न घूमने के लिए कार

चाहिए न गले के लिए हार चाहिए, जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र प्रेम और परिवार चाहिए। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। सविता दुबे जी हैं हरखापुर गोंडा से। सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। और साथ ही साथ हमारी आशु जी लिखती हैं लखनऊ से, तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी, तुम्हारे रहने या न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई अंतर नहीं होने वाला, इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। बेशक सही कहा आपने कि कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, धरती वैसे ही चलेगी, सुबह वैसी होगी, शाम वैसे ही होगी, सब कोई काम वैसे ही चलता रहेगा, लोग अपनी अपनी लाइफ में बढ़ते रहेंगे और यही दुनिया का दस्तूर है भी। इसके बाद सविता जी ने कहा है कि मैं निंदा और नींद से बहुत फेंक दिया हूँ, मन की करती हूँ, सुविचार बहुत प्यारा लगा। चलिए अच्छी बात है कि आपने नींद को भी, एक्स्ट्रा वाली जो नींद है उसको त्याग दिया। हाँ, इसमें ये मत भूलिएगा जो कोर नींद है, क्योंकि आजकल लोग तो कोर नींद खोए हुए हैं और जब सोने का वक्त आता है तो जाग रहे होते हैं। ये वाला नहीं, वाला एक्स्ट्रा वाला जो नींद आती है जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सोचते हैं और उसके बाद आपको नींद अपनी आगोश में ले लेती है, वो वाली नींद। और निंदा को तो आप समझ गए हैं भाई, सो फिलहाल निंदा से यही है कि जो आपके काम की नहीं है उसको तो कोई मतलब नहीं है। सो थॉट सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और मुझे लगता है कि इसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है ना। चलिए फिलहाल इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, वापस से आएंगे आने के बाद जो है वो कई सारी बातों का पिटारा आज आरजे अदनान आपके लिए लेकर आए हैं। सो इसलिए कहीं नहीं जाना, उससे पहले दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से आ गए हैं। गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत करते हैं दीपक जी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। तो चलिए भाई इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बातचीत का सिलसिला वापस से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तब तक के लिए आप बेहतरीन सा नाश्ता ज़रूर कर लीजिए।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कई बार एक डिसीजन इतना बड़ा आपकी लाइफ में असर डालता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, एक इंस्टेंट तुरंत लिया गया फैसला, एक बात ऐसी सोची गई, न जाने कितने सारे लोगों पर इतना ज़्यादा असर डालता है कि सच में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कई सारी कहानियों को आपने सुना है, लेकिन एक्चुअल में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त आपने नेपाल में पानी के त्रासदी की कहानी लगातार देखी होगी और रोज़ देख रहे होंगे। फिलहाल हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1643 जाने जो हैं वो बचाई है। अब आप सोचेंगे सिर्फ एक आदमी ने 1643 लोगों को बचाया, ये कैसे? चलिए ये हम बताएंगे आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो जिस वादे के साथ गए थे कि भाई आने के बाद आपको हम बताने वाले हैं कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1643 लोगों की जान बचाई। अब एक आदमी ने इतने सारे लोगों की जान नेपाल में पानी के जो त्रासदी है उससे कैसे बचा ली, आइए बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda.

दरअसल नेपाल के त्रिशूली घाटी के बाढ़ के बीच में प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी ने वक्त रहते एक बड़ा फैसला किया। जब प्रिंसिपल राजेंद्र दवाड़ी को पता चला कि बाढ़ का पानी तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और सभी क्लासरूम्स खाली करवाने का फौरन आदेश दिया। सभी 1643 बच्चों को जो है वो सेफ जगह की तरफ भेजा गया और कुछ ही मिनट्स के बाद बाढ़ का सैलाब स्कूल की पूरी इमारत को बहा ले गया। कैन यू इमेजिन कि पूरा पूरा स्कूल जो है वो बहता चला जाए। भाई स्कूल में कोई एक क्लासरूम या कोई एक फ्लोर नहीं होता, दो तीन फ्लोर्स होते हैं और 20-25-30 क्लासरूम्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है। ये सभी कुछ अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। सो स्कूल के जो टीचर हैं, यानी प्रिंसिपल ने जो है वो 1643 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन दो लोग जो है वो नहीं बच पाए। स्कूल के टीचर संतोष परियार और चपरासी सुल्तान लामा, इनकी बाढ़ में मौत हो गई। पीछे रह गया स्कूल का मलबा और इस तबाही का दर्दनाक मंजर। जी हाँ, सो फिलहाल एक डिसीजन आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फैसला साबित होता है। बच्चे ही थे, वो ना जान पाते तो शायद वो सभी के सब शिकार हो जाते। तो कहीं ना कहीं जब कोई बुरा वक्त चल रहा हो, उस वक्त आपको फ़ैसला लेना हो, तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सेफ तरीक़ों को देखते हुए लिया गया फ़ैसला लिया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक डिसीजन से 1643 बच्चों की जान बच गई। नहीं, अगर शायद वो भी काहली करते या सोचते कि अरे इतना भी क्या ही आएगा, तो शायद आज मंजर कुछ और होता। लेकिन यही कहते हैं ना कि आपका लिया गया डिसीजन कई बार बहुत बड़े मायने की तरफ ले जाता है और कई लोगों की ज़िंदगी पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, और वही हुआ है फिलहाल इस केस में। सो मुझे लगता है कि डिसीजन लेने की पार हम सभी लोगों में होनी ही चाहिए, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और जो बेहतर हो सके ये करने की क्षमता हम सभी के अंदर हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी इमरजेंसी वक्त में इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। फिलहाल वापस से लौटेंगे तो बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है गोंडा में, यानी सिटी अपडेट की तरफ चलेंगे। फिलहाल आप बने रहिए अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर A सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी।

0: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
1: टीचर, मैं पूछूं क्या?
0: बिल्कुल।
1: तो टीचर, ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?
2: हाँ जी, भाई जिस वादे के साथ गए थे कि आने के बाद आपको ले चलने वाले हैं सिरी की अपडेट की तरफ, सो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है गोंडा में, आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
3: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, आज या कान, आज या कान।

सो चलिए भाई, आपको हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो शहर से ही आ रही है। और पहला जो आ रही है वो है, विद्या ज्ञान में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना शुरू हो गया है। सो विद्या ज्ञान स्कूल में जो शैक्षिक सत्र है, यानी एकेडमिक ईयर्स 2027-28 में क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सो प्रवेश परीक्षा के बेस पर जो चुने हुए बच्चे हैं उनको कक्षा 6 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को रहने खाने की भी फैसिलिटी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। सो प्रवेश के लिए परिषदीय राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय व मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो इसके पात्र विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सो अभ्यर्थियों को विद्या ज्ञान की वेबसाइट www.vidyagyan.in पर आवेदन करना होगा। फिलहाल BSA ने बताया कि सभी विद्यालयों के जो मेधावी विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम्स में प्रतिभाग कर सकते हैं। सो पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, वो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, और लड़कों में इनकी एज 10 से 11 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सो ये 3 क्राइटेरिया अगर पूरा हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें एडमिशन हो जाएगा, यानी इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो दूसरी अपडेट आ रही है वो दरअसल सरयू के जलस्तर खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर दूर है, और इसी को लेकर के हम आपको बताना चाह रहे थे कि भाई फ़िलहाल सरयू नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से माझा एरिया के लोगों की जो फिक्र है वो अभी भी बरकरार है। क्योंकि सैटरडे की बात अगर हम बताएं तो इसका बढ़ने से जलस्तर, कल सुबह नदी का जो जलस्तर था वह मामूली घटा, लेकिन फिर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। एल्गिन ब्रिज पर जो है वो कल यानी रविवार की सुबह 8 बजे जलस्तर 105.850 मीटर दर्ज किया गया था, जो कि खतरे के निशान से 106.070 मीटर से महज 22 सेंटीमीटर नीचे है। दूसरी तरफ नवाबगंज के माझा एरिया के बाढ़ प्रभावित परिवार राहत किट और कटान के मुआवजे के इंतज़ार में है। सो फिलहाल बाढ़ खंड के आंकड़ों के हिसाब से शनिवार की दोपहर 2 बजे सरयू का जलस्तर 105.870 मीटर था। उस वक्त नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे थी और जलस्तर बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो दर्ज की गई थी। शाम 8 बजे पानी बढ़कर के 105.890 मीटर हो गया था। इसके बाद चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि गोंडा से ही है। सो फिलहाल तार के आपस में लपट जाने से बिजली गुल हो गई और उमस ने भी बेहाल कर दिया। जी हाँ, सो बारिश के दौरान कल अगर हम रविवार की बात करें तो सुबह झंझरी और पूरे शिवा बख्तावर और मोहनपुर समेत कई उपकेंद्रों की 33 kV लाइन फेल हो गई। इससे जुड़े हुए क्षेत्र की जो बिजली आपूर्ति वो ठप हो गई। सो सुबह के वक्त बिजली गुल होने से जो कंज्यूमर्स हैं उनको उमस भरी गर्मी की परेशानी उठानी पड़ी। सो फिलहाल झंझरी उपकेंद्र के जो अवर अभियंता हैं उन्होंने बताया कि मंडे नाले के पास में सुबह 6:55 पर लाइन ब्रेकडाउन हो गई। तार आपस में लिपटने से तार टूट गया। करीब 2 घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। पूरे शिवा बख्तावर एरिया में सुबह करीब 6 बजे बिजली गुल हो गई। इससे 4000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो है वो प्रभावित हुए। सो फिलहाल ये जो अपडेट थी ये तो बिजली की सप्लाई को लेकर के थी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है योगाभ्यास को लेकर के। सो फिलहाल आज खेलो इंडिया के अंतर्गत शहर के ही LBSPG कॉलेज में योगाभ्यास का कार्यक्रम सुबह 7 बजे किया गया। इसके अलावा परसपुर ब्लॉक के संसाधन केंद्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सुबह 9 बजे से। इसके अलावा नगर पालिका परिषद गोंडा के सभागार में जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से होने वाला है, और सुबह 10 बजे से ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाने वाला है। सो फिलहाल ये आज होने वाले इवेंट्स के बारे में था। इसके बाद आपको बता दें कि आज से ही ब्लॉक्स में बटेंगे नियुक्ति पत्र। सो आंगनवाड़ी सहायिका के 725 पदों के लिए निकली थी भर्ती और 594 पदों का जो है वो सिलेक्शन हो भी गया है। सो ज़िले के आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सहायिका हैं 594 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है, और आज से सभी ब्लॉक्स पे
चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सैटरडे को जिला मुख्यालय पर CDO दयानंद प्रसाद ने 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर इसकी शुरुआत की थी। हालांकि 131 पद अब भी खाली रह गए हैं और इन पदों पर दोबारा विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ज़िले में फिलहाल 3095 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इसमें करीब 2.40 लाख बच्चे फ़ायदा ले रहे हैं और सहायिका के रिक्त पद भरने के लिए नवंबर में 725 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन आने के बाद विभाग ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की। प्रक्रिया पूरी होने पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 594 अभ्यर्थियों का अंतिम सिलेक्शन किया है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ी हुई। डिजिटल लाइब्रेरी की उपयोगिता की जांच होने की बात सामने आ रही है। 194 पंचायतों में किताबों की संख्या, गुणवत्ता से फर्नीचर तक की होगी पड़ताल। गांव में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए तैयार की गई डिजिटल लाइब्रेरी अब अधिकारियों की परीक्षा बनेगी। लाइब्रेरी में किताबें पहुंची, फर्नीचर लगा और संसाधन जुटाए गए, लेकिन इसका फ़ायदा कितना वहां के लोग उठा पा रहे हैं इसका जवाब अब कागज़ों पर नहीं बल्कि मौके पर रिपोर्ट देना होगा। ज़िले की 194 जो चुनी हुई ग्राम पंचायतें हैं इसमें स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी का ज़मीनी निरीक्षण कराया जाएगा। ज़िला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों को मौके पर जाकर लाइब्रेरी की स्थिति की जांच के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में सबसे अहम जानकारी ये जुटाई जाएगी कि हर रोज़ पढ़ने पढ़ाने के लिए कितने ग्रामवासी लाइब्रेरी पहुँच रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए NBT और बाकी प्रकाशकों से खरीदी गई जो बुक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनके नंबर्स और उनकी क्वालिटी की भी जांच की जाने की बात फिलहाल सामने आ रही है। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो ये है कि अवध यूनिवर्सिटी जो है डेंगू पर नई दवा की तलाश कर रहा है। डेंगू के इलाज के लिए नई दवा डिवेलप करने की दिशा में अवध विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक शुरुआती सफलता हासिल की है। बायोकेमिस्ट्री विभाग की टीम ने प्राकृतिक स्रोतों से मिले 4.07 लाख से ज़्यादा यौगिकों की जांच की। इसमें 4 ऐसे यौगिक मिले जो डेंगू वायरस को बढ़ने से रोकने में काम आ सकते हैं। शोध में वायरस के उस प्रोटीन को निशाना बनाया गया जो उसके RNA की नई प्रतियाँ बनाने में मदद करता है। कंप्यूटर के जरिए चारों यौगिकों को इस प्रोटीन के साथ इसकी रिएक्शन देखा गया। इनमें 2 यौगिक ने तुलना के लिए इस्तेमाल किए गए अवरोधक पदार्थ की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट्स के संकेत दिए हैं। शोधकर्ताओं ने इन यौगिकों को स्टेबल रहने और बॉडी में संभावित नुकसान पहुंचाने की आशंका का भी कंप्यूटर से आकलन किया। हालांकि इसे डेंगू की दवा की खोज नहीं माना जा सकता। इन यौगिकों का वास्तविक असर जानने के लिए पहले प्रयोगशाला में वायरस और कोशिकाओं पर जाँच करनी होगी और रिजल्ट बेहतर आने पर ही दवा जो है डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। शोध में अवध विश्वविद्यालय के ऐश्वर्या खरे, वर्षा त्रिपाठी, नीलम पाठक और शिवी समेत कई शोधकर्ता जो हैं वो शामिल रहे थे। फिलहाल आपको बता दें धान खरीद से पहले राइस मिलों का सत्यापन शुरू हो गया है। जी हाँ, आगामी धान खरीद से पहले लेकर ज़िले में तैयारियां हो रही है। खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले खाद्य विभाग ने राइस मिलों का सत्यापन काम शुरू कर दिया है और इस बार सत्यापन में बिजली विभाग की टीमों को भी शामिल किया गया है जो मिलों की वास्तविक क्षमता और बाकी व्यवस्थाओं की जाँच करने वाली है। फिलहाल ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी जो कि आप तक पहुँचा दी गई। आई होप कि अब आप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसी जानकारी होगी जो आपके काम की होगी एंड आई होप कि आप भी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी और जाते जाते ताकि आपके लिए ये भी एक जानकारी बेहतर साबित हो। विद्यार्थियों के पहचान पत्र भी अब डिजी लॉकर पर होंगे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी। आगामी जो शैक्षिक सत्र है 2026-27 से लखनऊ विश्वविद्यालय अपने जो विद्यार्थी उनके पहचान पत्र भारत सरकार के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर जारी करेगा। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति प्रोफेसर JP सैनी ने कहा है कि ये पहला डिजिटल इंडिया मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। फिलहाल ये जो ज़रूरी जानकारियाँ थी वो हमने आप तक पहुँचा दी। आई होप कि इसमें कई जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की भी रही होगी। फिलहाल वक्त है आगे म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ बढ़ने का, चलने का।
तो चलिए भाई आपको बता रहे हैं कि अगला कौन सा सॉन्ग आने वाला है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और आप इस गाने को काफ़ी मन से एंजॉय करने वाले और शायद खुद भी गाए बिना आप रहने वाले नहीं है। स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सो भाई बिग बॉस के चाहने वालों, आप लोगों के लिए फिलहाल बिग बॉस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और साथ ही साथ बॉलीवुड से एक और जुड़ी अपडेट, या यूं कहो कि बॉलीवुड टू चलते हैं हॉलीवुड, कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स बेस्ट आइडिया। तो चलिए आपको बताते हैं भाई क्या कुछ हो रहा है बिग बॉस को लेकर के, और उसके बाद सीधे आपको पहुंचा देते हैं हॉलीवुड, यानी टिकट टू बॉलीवुड टू हॉलीवुड। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो देखिए सिनेमा घरों में इस हफ्ते जो है मिर्ज़ापुर द मूवी से लेकर के जीवन बीमा योजना तक कई फिल्में रिलीज़ होने वाली है, मगर उतना ही धमाल ओटीटी पर भी होने वाला है, क्योंकि बहुत ही फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 20 इसी हफ्ते दस्तक देगा। इसके अलावा कई ज़बरदस्त फिल्में और सीरीज़ भी रिलीज़ होने की कतार में शामिल है। तो चलिए बता देते हैं कि इस लिस्ट में फ़िलहाल क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं बिग बॉस 20 से। सो इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो आकर्षण है और लोकप्रिय रियलिटी शो है बिग बॉस 20, जो कि इसी वीक से दस्तक देगा और एक बार फिर से सलमान खान ही इसे होस्ट करेंगे। सो ये शो 6 सितंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ होगा। इस बार शो में कई चीज़ें खास हैं। करण अर्जुन वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वहीं वरदान में मिलने का कॉन्सेप्ट भी है। इसके अलावा DC, जी हाँ, वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज अभिनीत फिल्म DC जो है सिनेमा घरों के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने की तैयारी में है। सो अरुण मथेश्वरन निर्देशित ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 4 सितंबर से सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होगी और ये फिल्म तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी अवेलेबल होगी। सो हिंदी पट्टी वाले दर्शकों को इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना ही होगा। इसके अलावा अगली मूवी है द कोर्ट। अगर कोर्टरूम ड्रामा सीरीज़ में आपको दिलचस्पी है तो इस वीक इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। द कोर्ट एक तमिल सीरीज़ है। इसकी कहानी कैसे युवा वकील याजनी की है, जिसे हकलाने की समस्या है। उसके फादर भी नामी वकील है। एक दिन याजनी अपने ही फादर के सामने सामने होती है, यानी आमने सामने। ये सीरीज़ 4 सितंबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। इसके बाद जो है वो है गंधारी। जी हाँ, तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म गंधारी इस हफ्ते OTT पर दस्तक देने वाली है। देवाशीष मखीजा निर्देशित इस फिल्म में तापसी एक ऐसी माँ की भूमिका में है जिसकी बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। तापसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, मगर वो विशेष प्रशिक्षण लेकर के बिटिया की तलाश में निकलती हैं। फिल्म में इश्वाक छाया कदम और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। फिल्म 3 सितंबर से OTT पर रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं कान्हो बनियो कॉमन मैन। ये गुजराती भाषा की सीरीज़ है। इस पर दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को इंसानों की समस्या को सुलझाने के लिए ज़मीन पर आते हैं और एक आम इंसान की तरह रहते हैं। जन्माष्टमी पर्व से दो दिन पहले ये सीरीज़ 2 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। हालाँकि ये सीरीज़ गुजराती भाषा में ही अवेलेबल होगी। इसके अलावा आपको बता दें स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोनू। अगर साइंस फिक्शन फिल्में में आपको दिलचस्पी है तो इस वीक आप इसे देख सकते हैं। ये फिल्म इस मई में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, अब OTT पर आने की तैयारी में है। ये 2 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। द जेंटलमैन सीज़न 2, ये एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज़ है। इसका दूसरा सीज़न इस हफ्ते आएगा। इसके पहले सीज़न को काफ़ी पसंद किया गया था। अब द जेंटलमैन सीज़न 2 का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 3 सितंबर से होगा। सो फिलहाल ये OTT प्लेटफॉर्म्स और मूवीज़ को लेकर के था, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने बताया। अब आपको ले चलते हैं हॉलीवुड की तरफ, चूँकि हमने वादा किया था भाई हॉलीवुड तक आपको पहुँचाना। तो फिलहाल आपको बता दें कि 38 साल बाद, 38 ईयर्स काम करने वाले हैं टॉम क्रूज इस सीक्वल में। जी हाँ, अब कौन सा ऐसा सीक्वल है जिसमें 38 साल बाद टॉम क्रूज़ वापस से काम करने वाले हैं। सो टॉम क्रूज़ अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए चूंकि मशहूर हैं और हाल ही में इन्होंने एक नई फिल्म का ऐलान किया है। इन्होंने बताया ये फिल्म 1990 में रिलीज़ हुई इस फिल्म का सीक्वल है। इसके बाद ही इन्होंने फिल्म की लीड अभिनेत्री के बारे में जानकारी दी। सो चलिए बताते हैं कि फिल्म कब रिलीज़ होगी और कौन है अभिनेत्री। सो टॉम क्रूज़ ने डेज ऑफ थंडर के सीक्वल का ऐलान किया है और इन्होंने बताया कि 1990 की इस रेसिंग ड्रामा फिल्म के बहुप्रतीक्षित सीक्वल में एन हैथवे भी उनके साथ होंगी। सो ओरिजिनल फिल्म 38 साल बाद आने वाला ये सीक्वल 2028 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगा। सो आपको बता दें कि 1990 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल डेथ ऑफ थंडर में क्रूज़ ने कोल टिकरल का रोल निभाया था। सो ये फ़िलहाल हॉलीवुड के चाहने वालों और टॉम क्रूज़ के जो फ़ैन हैं उनके लिए बहुत ही सुपर्ब सी न्यूज़ है, जिसके बारे में भाई वो बहुत वक्त से इंतज़ार करने वाले हैं और 2 साल बाद 2028 में ये गर्मियों में फ़िलहाल रिलीज़ होने की बात बताई जा रही है।
अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें, अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और आप भी तंग हो गए हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खर्चे हो रहे हैं, साथ ही साथ आप भी डरे रहते हैं कि कहीं आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, तो ये सारी जानकारी आपको इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पर आरजे अदनान आकर के देने वाले हैं और समझाने वाले हैं प्रॉपर कि किस तरह से अकाउंट को मैनेज करना है, जिससे कि आपका खर्च भी कम होगा और साथ ही साथ वो सेफ्टी मेजर्स जिनका ध्यान रखते हुए हम साइबर क्राइम में जाने से बच जाएंगे, साइबर फ्रॉड होने से हमारे साथ में हम खुद को बचा लेंगे। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: हाँ जी, फिलहाल हम बताने वाले थे यूपीआई के दौर में खर्च और बचत अलग अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी जाते हैं और ट्विंग से बोलता है पेमेंट ऑफ और इस तरह से दिव्यूर सज्जनों 22 रुपए प्राप्त हुए, इस तरह की न जाने कितनी सारी आवाज़ें आती हैं, लेकिन आपके दिल से आपके मन से वो 22 रुपए, वो 15 रुपए, वो 12 रुपए सब कटते जाते हैं और आप एट द एंड बड़े परेशान हो जाते हैं यार कि ये जब से हम यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तब से बचत हो ही नहीं पा रही है, न जाने कितना रुपए वैसे ही चला जाता है, राइट। तो भाई क्या ऐसा है कि यूपीआई छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शन है। सो बेहतर ऑप्शन में ये होने वाला है कि आपके पास यूपीआई भी रहने वाला और आप उसको मैनेज भी करने वाले हैं, और मैनेज इस तरह कि भाई जिस चीज़ को आपको चिंता है यानी अपने खर्चे को लेकर के, वो दूर होने वाली है। सो करना क्या है यही तो हम बताने वाले हैं, बट गौर से सुनिएगा।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो देखिए भारत में इस वक्त डिजिटल क्रांति ने लेन देन की दुनिया को पूरी तरह इस वक्त बदल दिया है, और जिसका पार्ट आप भी हैं और मैं भी हूँ। अब जेब में नकदी की जगह स्मार्टफोन और QR कोड ने ले ली है, लेकिन इस जो बदलाव की सुविधा है इसके साथ एक कड़वी हकीकत भी है। कड़वी हकीकत क्या है? साइबर अपराधियों को हमले के लिए दायरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। धोखाधड़ी से जुड़े आंकड़े इस खतरे और गंभीरता को साफ उजागर करते हैं। फिनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो अप्रैल से नवंबर के बीच में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए 805 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 10,64,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े इस तरफ इशारा करते हैं चूक तकनीक से ज़्यादा हमारे जो वित्तीय प्रबंधन है और लापरवाही है उसके लेवल पर हो रही है। सो फिर क्या करा जाए? अगर हमारी लापरवाही है तो इसमें हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। देखिए, खर्च खाता और बचत खाता अलग अलग क्यों करना ज़रूरी है? आज की सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो रही है कि आम नागरिक एक ही बैंक खाते से सैलरी ले रहा है और उसी से ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई और इमरजेंसी जो फंड्स हैं उसको भी रख रहा है उसी खाते में। सो UPI से जोड़कर हर जगह भुगतान भी कर रहा है। सो लिटरली मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है और मुझे भी ये लगा है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान रखने वाला है कि अगर हम एक ही खाते से सैलरी भी हमारी उसमें आती है, उसी से हम खर्च भी कर रहे हैं, वो UPI से जुड़ी हुई है और हम उसी में सारे फंड्स भी रख रहे हैं, तो ये सच में रिस्की है। तो फिर क्या किया जाए? भाई दो खाते बनाए जाएँ, तीन खाते आप बना लीजिए, लेकिन दो खाते होना ज़रूरी है। अब किस तरह से इस चीज़ को समझा जाए? अगर आपका मेन जो अकाउंट है, खाता सीधे UPI से जुड़ा है, तो किसी फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन की सिचुएशन में खाता पूरी तरह खाली हो सकता है। लेकिन अगर आप UPI के लिए सिर्फ एक अलग खाता यानी ट्रांजैक्शन और खर्च खाता रखते हैं तो उसमें सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए तक का बैलेंस रहता है, तो किसी भी अनहोनी की सिचुएशन में आपका नुकसान जो है वो काफ़ी सीमित होगा। जी हाँ, यानी जिस खाते से आप UPI से लेन देन कर रहे हैं उसको अलग से खुलवा लीजिए, उसमें UPI के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये डाल दीजिए। आपके रोज़मर्रा के खर्च के लिए कभी आप दूध ले रहे हैं, कभी आप घी ले रहे हैं, कभी आप कोई चीज़ ले रहे हैं, लेकिन आपका जो खर्चा है वो UPI वाले खाते से ही होगा, इसी से UPI कनेक्टेड होगा, राइट? सो जब एक ही खाते से लाखों रुपये दिखते हैं तो छोटे छोटे जो डिजिटल भुगतानों का एहसान नहीं होता और ना ही उनका एहसास होता है और फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। अगर अलग खाते का होता है, महीने का जो निश्चित बजट होता है उसमें से बैलेंस ख़त्म होते ही खर्च की जो सीमा आप बनाते हैं तुरंत आपको एहसास होने लगता है। सो OTT प्लेटफॉर्म्स है या बीमा है या यूटिलिटी बिलों के ऑटो डेबिट्स मैंडेट्स हैं, इसका अक्सर मेन खाते में दर्ज जाते हैं। खर्च वाले खाते से जुड़े होने पर आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा सब्सक्रिप्शन जारी रखना है, किसे बंद करना है, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। सो करना क्या है? देखिए, जो हम बता रहे हैं वो गोल्डन रूल ज़रा आप सुन लीजिए, वो ये है खाते के प्रकार क्या है। एक मेन खाता रहेगा, एक खर्च खाता रहेगा, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। करना ये है कि मेन खाते में क्या होगा, इसमें इमरजेंसी फ़ंड होगा आपका, आपके लॉन्ग टर्म की जो बचत है वो है, वो बचत रहेगी इसमें, आपके इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपने अगर FD कोई कराया है तो वो रहेगी। इसमें सुरक्षा का नियम क्या, किन बातों का ध्यान देना है, किसी भी UPI ऐप से आपको लिंक नहीं करना है मेन अकाउंट को, इसका डेबिट कार्ड जेब में आपको नहीं रखना है, सिर्फ सुरक्षित नेट बैंकिंग से ही इसको बैलेंस करना है, इसको मैनेज करना है। दूसरा खाता आता है खर्च खाता, जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ख़रीदारी होगी, आपका बिल का भुगतान होगा, ऑनलाइन ऑर्डर्स होंगे और ऑटो पे होगा। सो इसको क्या करना है, इसको UPI ऐप से जोड़ना है, बैलेंस 5 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम रखना है और ज़रूरत पड़ने पर ही मेन खाते से इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी, देखिए बहुत छोटी सी बात है, मुझे लगता है कि हज़ारों लाखों में जितने लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं इसको, उनके पास में कहीं ना कहीं इस बात को मैं बता दूं कि सभी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ या आप हैं। और गलती ये होती है कि हम मेन खाते से ही हम उसमें से UPI भी अटैच कर लेते हैं, लिंक्ड कर लेते हैं और हम उसी में फ़ंड भी कर रहे हैं जमा, उसी में हमारी गाढ़ी कमाई भी है, लेकिन हमें लगता है कि अगर
इस युग में हम जी रहे हैं जहां पे यूपीआई रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है, तो उसके लिए एक अलग खाता खुलवा सकते हैं जिसमें 5 से 10 हज़ार रुपये रख सकते हैं। ऐसे अकाउंट में हमें क्या क्या करना है कि ऐसे अकाउंट में हमें जो रोज़मर्रा की ख़रीदारी है उसका बिल पेमेंट करना है, जो बिल आपको मंथली जाता है उसका देना है, कोई सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है उसका देना है, ऑनलाइन ऑर्डर्स आप कर रहे हैं इसी से आपको करना है, ऑटो पे पे अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको भी इसी से ऑपरेट करना है, तो ये सब आपका यूपीआई वाले खाते से हो जाएगा। इस तरह से कभी फ्रॉड होता भी है तो बहुत लंबा चूना लगने से बच जाएगा और कहीं ना कहीं आपको आपके खर्चे का एहसास भी बीच बीच में होता रहेगा। मान लीजिए आपका बजट 10,000 रुपये मंथली है खर्च करने का, तो जैसे ही 8,000 रुपये आपने खर्च किए, 2,000 बचा, आपको फौरन रियलाइज़ होने लग जाएगा कि अच्छा खासा अमाउंट जा चुका है, अब सिर्फ 2,000 बचे हैं। तो इस तरह से खर्च पे भी काफ़ी हद तक लगाम लग जाती है और हम बहुत बड़े फ्रॉड से तो बच ही जाते हैं। और जो मेन अकाउंट है उसको आपको यूपीआई से लिंक नहीं करना है, ये आप हमेशा याद रखिए। इसके अलावा कौन कौन से डिजिटल सुरक्षा के नियम हैं जिनकी जानकारी आपको, हमको, हम सबको होना चाहिए जिससे कि हम फ्रॉड से बच सके, उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूज़िकल वाला ब्रेक। ब्रेक के उस पार वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि वो कौन कौन से डिजिटल सुरक्षा के नियम हैं जिसका ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे सारे फ्रॉड से हम बच सकते हैं।

0: तो कुछ सुरक्षा के नियम हमने कहा था आने के बाद बताने वाले हैं, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी काम का होने वाला है, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप खुद नहीं जुड़े हैं तो आपके घर में कोई ना कोई जुड़ा होगा, आपका फ्रेंड, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, कोई ना कोई तो होगा। तो चलिए भाई, आप भी ज़रा गौर से सुनिए और उन तक खबर पहुँचा दी, और जो लोग खुद इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा अलर्ट होकर के इन सुरक्षा नियमों का ध्यान रखिए, कल कदार आप इसका शिकार बनने से बच सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

पहला रूल जो है गोल्डन वो है, किसी से पैसे लेने के लिए कभी यूपीआई पिन दर्ज नहीं करना पड़ता। पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, पैसे लेने के लिए नहीं होता है। पहली बात इसको आप हमेशा याद रखिएगा तो फिर आपके साथ में ऐसे फ्रॉड्स होना काफ़ी हद तक बंद हो सकते हैं कि किसी से पैसे लेने के लिए कभी यूपीआई पिन को दर्ज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पैसे भेजने के लिए आपको लेना होता है। दूसरा है, बचत खाते को डिजिटल भुगतान ऐप्स से पूरी तरह दूर रखें। जो सेविंग्स अकाउंट है उसको डिजिटल भुगतान यानी यूपीआई से जोड़ करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। मेन आपका जो अकाउंट है वो अलग रहेगा, यूपीआई के लिए खर्चे के लिए एक अलग अकाउंट आप कर सकते हैं जिसमें 5 से 10 हज़ार रुपये आप रख करके सारे आप पेमेंट्स करते रहिए। तीसरा है, बैंक अधिकारी, पुलिस या कस्टम केयर बन करके फ़ोन करने वाले किसी भी इंसान को OTP, पासवर्ड या CVV कभी नहीं बताना है। चौथा है, लॉटरी जीतने, कैशबैक मिलने या पुराना सामान खरीदने बेचने के नाम पर भेजे गए किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन नहीं करना है, नहीं तो आप फ्रॉड का शिकार सीधे सीधे हो जाएंगे। किसी के कहने से एनीडेस्क जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और WhatsApp पर आई किसी अनजान APK फाइल को इंस्टॉल बिल्कुल मत करिए, इससे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। एनीडेस्क से होता ये है कि आपकी स्क्रीन पर जो कुछ दिखेगा वो सामने वाले को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, जो कुछ आप करेंगे वो सामने एज इट इज़ अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा, तो आपका पासवर्ड, आपकी OTP सब कुछ दिख जाएगा और वो आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। दूसरा है, APK फाइल अगर WhatsApp पे कोई नए नंबर से आता है, नो नंबर से उसको खोलने को कहा जाता है, बिल्कुल भी मत उसको ओपन तक मत करिएगा, टच मत करिएगा। इसके अलावा UPI ऐप पर बटन दबाने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे मर्चेंट यानी प्राप्तकर्ता के नाम पर उसका जो राशि है उसकी पुष्टि ज़रूर कर लें कि आप अगर मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं 320 तो 320 ही है, 3000 तो नहीं है या 3 लाख करके तो नहीं, हालांकि इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर देख लेना है कि जो पेमेंट आप जिस राशि का कर रहे हैं, जितना अमाउंट कर रहे हैं, क्या उतना ही है या बढ़ गया है, ये आपको हमेशा चेक करना है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस, होटल या कैफ़े पर पब्लिक वाईफाई फ़ोन नेटवर्क से जुड़कर कभी भी बैंकिंग ऐप या UPI का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि ये जासूस वाईफाई होते हैं और आप जो कुछ करते हैं उससे उसका पता चल जाता है। तो अगर बैंकिंग का काम करना है तो अपने खुद के फ़ोन के इंटरनेट से करिए, या कोई ट्रस्टेबल दोस्त है इस तरह से कोई अगर शख्स है उसका आप ले सकते हैं हॉटस्पॉट, लेकिन आप वाईफाई पे अगर हैं किसी सार्वजनिक स्थान पर और पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा दसवां है, अनाधिकृत लेन देन पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, यानी cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें और अपने बैंक को फौरन इन्फॉर्म करें कि खाता तुरंत ब्लॉक करवाएं। ये सारे मेजर लिए जाते हैं अगर किसी तरह से कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है। 1930 पे आपको तुरंत कॉल करना होता है, आपको cybercrime.gov.in पर जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होती है। इसके अलावा बैंक को फौरन इन्फॉर्म करना होता है कि आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाए ताकि और अमाउंट उससे ना जा पाए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। फ़िलहाल हम भी चाहते हैं कि ऐसे किसी भी फ्रॉड से आप हमेशा ही बचते रहे, और हाँ, सावधानी थोड़ी सी अगर अपनाएंगे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर हम इन सभी नियमों का और इन सभी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेंगे, राइट? तो चलिए इस गाने को एंजॉय करिए, वापस से आते हैं, बताते हैं क्या कुछ लिखा है आपने चैट बॉक्स पर, उसके बाद लेंगे आपसे विदा।

0: हाँ जी, तो फिलहाल कई सारे कमेंट्स बाद में भी आए हैं जब हमने लास्ट आपका मैसेज दिया था, तो चलिए भी बताते हैं उसके बाद कौन कौन आया है इस मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास, क्योंकि कई सारे मैसेजेस जो हैं हम तक आ गए हैं और वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

तो हमारी सविता दुबे जी लिखती हैं, नींद नहीं लूंगी तो आंखों के नीचे काला पड़ने लगेगा। हाँ बेशक पड़ता है। प्रीति जी है फ्रॉम बहराइच, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। नाजिया अंसारी हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। इसके बाद धर्मेंद्र जी हैं, दीपक जी आपका भी स्वागत है, एंड यस। इसके बाद महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आया है शमा जी का फ्रॉम लखनऊ, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और इन सभी के मैसेजेस के बाद में इरफान शाह का भी मैसेज आया है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, इसके बाद जो है आपने बताया शमा जी ने, यूपीआई चलने से मेरे दोस्त पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तब बोलेंगे आज ये कर दो आज वो कर दो, इतना भेज दो, ऑनलाइन ही बंद हो जाना चाहिए। कर सकते हैं आप, अच्छा एक बेहतरीन इसका सॉल्यूशन हो सकता है ये। और इसके बाद जो है आप लोगों ने भी अपनी अपनी राय लिखी है और बताया है कि सर जी जहाँ तक हो सके छोटा अमाउंट नकदी प्रयोग करें, बिल्कुल बेशक। महेंद्र बोलते हैं कोई कंपनी या किसी के बहकावे में ना आए, जहाँ आधिकारिक ब्रांच हो वहीं जा करके सत्यापित करें। एंड धर्मेश त्रिपाठी आपका भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। गाइस आप लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बट आप लोगों ने कितना किया ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज का मॉर्निंग शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और हाँ सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद गोंडा FM 89.6 FM गोंडा शहर की।

0: या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोना में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976, 9861 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: श्वेता, समता, कहाँ हो सब लोग? अरे स्टूडियो में इतनी शांति क्यों है, और सब कितना मुंह लटकाए हुए हो?
6: किरण भी एक ड्रेस खरीदने का मन कर रहा है, पर इतनी महंगाई है कि खरीद ही नहीं पा रहे, इसीलिए मन बहुत दुखी हो गया है। महंगाई कितनी बढ़ गई है।
5: ये तो है समता, हर सामान महंगा होता जा रहा है। डेली की सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें।
7: अरे सब लोग महंगाई पर बाद में रोना, पहले मेरी फ्रेंड सिमी से तो मिल लो। ये हम लोगों के गांव की गूंज की टीम से जुड़ना चाहती है। और हाँ किरण दी, आपके लोक गीतों की ना ये बहुत बड़ी फैन है।
8: हेलो, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं किरण दीदी, समता दीदी और हरिओम से मिल रही हूँ। जिनकी आवाज सुनते थे वो लोग हमारे सामने खड़े हैं। क्या आप लोग मुझे भी गांव की गूंज की टीम का हिस्सा बनाएंगे? हमारे यहाँ दादी बाबा बहुत खुश होंगे आप लोगों से मिलकर।
9: एक शर्त पर तुम हम लोग को अपने गांव ले चलोगी?
10: कहीं चलने की बात हो रही है, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। एसी में बैठ कर हाथ पैर अकड़ गए हैं, गर्मी बहुत है फिर भी घूमने का मन कर रहा है।
7: हम ननकू भैया से कहते हैं गाड़ी निकाले, तब तक सिमी रिक्वेस्ट कर रही है कि किरण दीदी एक लोकगीत सुना दें।

0: अब ये बताओ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं?
1: हम लोग झंझी ब्लॉक में चंदवतपुर गांव जा रहे हैं। वहीं हमारे दादी बाबा भी रहते हैं, उनसे मिलेंगे और इस समय गेहूं की कटाई हो रही है तो हम वहां भी चलेंगे।
2: मई आ गया और हम सब बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। याद है बचपन में हम सब बच्चों को लेकर मम्मी पापा नाना नानी या दादा दादी के घर ले जाते थे?
3: चाचा के, बुआ के, मामा के, मौसी के, सभी के बच्चे होते थे घर में। 30-35 लोग तो होते ही थे घर में कम से कम।
0: समता, हम सोच रहे हैं कि कभी दादी बाबा या नाने नाना ने शिकायत नहीं की कि कितनी महंगाई है और एक महीने सबको कैसे रखेंगे। हमारी ननद भी आ रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ और हम सोच रहे हैं कि कितनी महंगाई में एक महीने कैसे रखेंगे, पर हम भूल गए कि यह तो उनका घर है, उनका पूरा अधिकार है।
1: आपको पता है क्या, पहले हमारी मम्मी भी बहुत परेशान होती थी, फिर दादी ने छत पर सब्जी बोना सिखाया, अब लगभग हर सब्जी घर के गार्डन से ही मिल जाती है।
4: आप बना में सोडा मिलाकर पिलाइए या बेल के शरबत का आइसक्रीम बना दीजिए, देखिएगा बच्चे बाजार का खाना भूल जाएंगे और आपको मेहमान का आना खटकेगा भी नहीं।
2: आपकी ननन तो कितना अच्छा खाना बनाती है, आप नई नई रेसिपी बताइएगा और वह बनाएंगी। आपकी ननन तो कितनी स्वीट है, वह ननन पर जो गाना गाती हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं है।

0: आप लोगों को पता है, जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे तो ढेर सारे बच्चे हो जाते थे। उनको बिजी रखने के लिए बाबा हम लोग से बागवानी करवाते थे। वेजिटेबल गार्डन में तरह तरह की सब्जी लगवाते थे। आप भी ऐसा ही करिएगा किरण दीदी, बच्चे मोबाइल से हटकर कुछ सीखेंगे।
1: लो, चंदवतपुर आ गया। अगर बहुत गर्मी नहीं लग रही हो तो चलो, वहाँ गेहूँ की बुआई हो रही है, उसे देखते हैं।
2: सब लोग मुंह पर चुन्नी बांध लो, क्योंकि भूसा चला जाएगा नाक में। वैसे गाड़ी में तो मास्क भी रखे हैं।
3: देखो, जितने आदमी हैं सब ने मुंह में गमछा बांधा है, और औरतों ने पल्लू। पर बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। हरिओम, सबको मास्क दे दो। भूसे की धूल से सांस की बड़ी समस्या होती है।
4: देखो बच्चों ने कैसे पुरानी साड़ी से कैंप बनाया है, और ढोलक की आवाज़ ये कहाँ से आ रही है? तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है क्या?
0: धनु आजी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं। जब घर के लोग खेत में काम करने जाते हैं तब आजी ढोलक बजाती हैं, और छोटे बच्चों को अपने साथ रखती हैं और गाती हैं। बच्चे उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं और बड़े लोग अपना सारा काम निपटा लेते हैं।
1: गाँव में देखो कितना अपनापन है। आजी सभी के बच्चों को कितना प्यार से रख रही हैं। पानी, दूध, भूजा, सत्तू सब रखा हुआ है। वहीं शहर में हम लोग को क्रैस में बच्चों को छोड़ना पड़ता है।
2: किरण दीदी, आजी आपके बारे में पूछ रही थी और एक लोक गीत सुनाने को बोल रही थी। और देखिए, सभी अपनी गेहूं की कटाई और दवाई छोड़कर आपके पास आके बैठे हैं।

0: यह लीजिए, मट्ठा पीजिए और खरबूजा खाइए, बहुत मीठे हैं। सब बिल्कुल शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। बबलू पेड़ से अमिया तोड़कर लाया है और बाली हरी हरी मिर्च नमक की चटनी कौन कौन खाएगा।
1: हरिओम, आज गांव की गूंज की टीम ने खेत खलिहान में आए अपने एक्सपर्ट से गेहूं के भंडारण और कटाई के बाद खेत को उपजाऊ कैसे बनाएं, जो बात सीखी है ना, अपने किसान भाइयों को बताएं।
2: आप लोग बताएं कि आपने गेहूं खुद काटा है या मशीन से कटाई की है। देखकर तो लगता है मशीन से कटाया गया है। और हाँ, अब खेत का क्या करेंगे?
3: हमारे गांव में तो खेतों को जला देते हैं और इससे खूब आग भी लगती है। खेतों को जलाकर चले जाते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर बगल में किसी के खेत में फसल लगी हो तो आग भी लग जाती है।
4: यही तो गलती करते हैं आप सब। जब गेहूं और भूसा घर चला जाए, खेत खाली हो जाए, तब आप खेत में पानी भर दे और उसकी एक बार जुताई कर दे, फिर उसमें ढैचा बो दे, जिससे 40 से 45 दिन में वो तैयार हो जाएगा। और फिर एक बार पानी भर के खेत की जुताई कर दे, जिससे अगली फसल के लिए खेत उपजाऊ हो जाएगा।
0: आप लोगों ने ध्यान से सब बातें सुनी? अगर कोई बात न समझ में आए तो फोन करके सिमी बिटिया से पूछ लीजिएगा। 89.6 FM पर जो कृषि एक्सपर्ट आते हैं उनसे बात करवा देंगे और उनको भेज भी देंगे।
3: अलगू भैया, दया राम काका, आप सबने सुना ना कि कैसे अगली फसल के लिए खेत को उपजाऊ बनाएं? किरण दीदी, हमने दादी को फोन कर दिया था, देखिए वो पूरे गांव की औरतों की टोली को लेकर आ रही हैं। रज्जो काकी के घर बहू आई है, वो अपने बहू को लेकर आई हैं। किरण दीदी, सब आपका गाना सुनने आई हैं।

0: लो यह गाना तो नई बहू के लिए है और काकी के हाथ में छोटा सा ललना दिख रहा है, तो एक गाना तो प्यारे से ललना के लिए होना ही चाहिए।
1: ओ हमरे भाई है ललनवा कैसे सपरी।

0: राघव भैया पूछ रहे हैं कि गेहूं का भंडारण कैसे करें, जब वह रखते हैं तो उस पे कीट लग जाते हैं।
1: भैया आप लोग जो मेहनत से गेहूं पैदा करते हो वही हम लोग खाते हैं, तो उसको तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गेहूं की जब दवाई करते हैं तो वह गर्म होता है, इसको तुरंत बोरे में बांध कर नहीं रखना चाहिए, ठंडा करिए ताकि उसमें बहुत नमी से भी न रह जाए।
2: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दो दिन खेत में ही पड़ा रहने दें और सूखने दें, पर अगर आपको लगता है कि खेत में नुकसान होगा तो घर पर लाकर कहीं फैला दें और ठंडा होने दें जब तक कि गेहूं में 10% की नमी ना रह जाए।
3: अब आप लोग पूछेंगे यह कैसे पता चलेगा, तो गेहूं को दांत से दबाइए, अगर कट कट की आवाज आती है मतलब आपका गेहूं तैयार है डेहरी में रखने के लिए।
0: जिस डेहरी में रखना है उसे धूप में सुखा लें, जिससे जो डेहरी के मुंह पर या ढक्कन में कीड़े के अंडे रह जाते हैं वो सब मर जाएं। अब गेहूं को भंडारण के लिए रखें, पर अभी उसमें दवाई डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर दवाई डालना है ना तो सल्फाज बरसात शुरू होने के पहले डाला जाता है, और डालना कैसे है, इसके नीचे ढक्कन से इसमें डालना होता है।
1: जब सल्फास डालेंगे तब एक हफ्ता गेहूं का प्रयोग ना करें, उसके ढक्कन को भी ना खोलें, क्योंकि सल्फास गैस बनती है, और ना ही उस कमरे में सोएं। 7 दिन के बाद जब आप चाहें बिना धोए गेहूं की पिसाई करवा सकते हैं, क्योंकि अब दवा का असर नहीं रहता है।
2: एक बात का और ध्यान रखें, या नहीं कि दवा डालकर चैन की नींद से एकदम सो जाएं, समय समय पर ढक्कन खोल कर या जाँच करते रहें कि कीड़े तो कहीं नहीं लग रहे हैं।
0: अपने गेहूं का भंडारण अच्छे से करें ताकि साल भर आपका गेहूं सुरक्षित रहे। कुछ भी पूछना होगा तो हमें फोन कर लीजिएगा, गुरुवार को 5 बजे खेत खलियान आता है ज्ञानस्थली रेडियो पर, उसे जरूर सुना कीजिए।
3: चलो सिम्मी, दादी घर चलने को कह रही हैं, बोल रही हैं कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है, दाल की कचौड़ी और आम की चटनी, आहा, और साथ में गलका, अरे मुँह में पानी आ रहा है।
0: सभी को नमस्ते, राम राम, जल्दी फिर आएंगे। और हाँ, आप लोग भी हमारे रेडियो स्टेशन आइएगा।
1: कमल ककड़ी की सब्जी में तो बहुत ज्यादा स्वाद होता है, इसको हमने पहली बार खाया है। इसे बुआ क्या बोल रही थी?
2: समता मैम, मैं महेश भैया के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि किरण दीदी का गाना सुने बिना तो कोई जाने ही नहीं देगा।

0: कमल ककड़ी की सब्जी में तो बहुत स्वाद था, उसको हमने पहली बार खाया है। इसे बुआ क्या बोल रही थी?
1: लगता है कहीं पास में पानी बरसा है। सिमी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं अगर सभी लोग गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे तो खेती तो बंद ही हो जाएगी, फिर हमें गेहूँ, बिना पॉलिश की दाल, ये सब कहाँ से मिलेगा?
2: किरण दीदी, गांव की गूंज की टीम और मेहनत करेगी, लोगों को गांव से जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, औरतों को लघु उद्योग में मदद करेंगे हम सब मिलकर।
3: आप लोग जब बातें कर रहे थे, हम कमल ककड़ी कमल गट्टे के फायदे के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम आज गांव नहीं आते तो पता ही नहीं चलता।
1: चलते चलते एक यह लोकगीत चंदवतपुर गांव के लोगों के लिए।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई सबसे पहले वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है, उनका भी जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, और उनका भी जो हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं। सो कैसे हैं आप सभी लिसनर्स, क्या है आप सभी का हाल चाल, फटाफट से आइए अपना हाल चाल बताइए और हमारे साथ जुड़िए आपके अपने वाले शो में जिसका कि नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आज हाजिर हूं लेकर के कुछ खास। भाई आपको तो पता ही कि आज हम करते हैं कुछ काम की बातें। वैसे तो हम डेली भी काम की बातें करते हैं, ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन आज है मंडे। मंडे यानी कि हमारा जॉब वाला डे। आज के दिन हम बात करते हैं कुछ जॉब वैकेंसीज को लेकर के, और साथ ही ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने काम के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। भाई काम हमें डेली लाइफ में अपने करना ही करना होता है, और उसका स्ट्रेस भी होता है। तो आज दोनों पर बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले जो बात होगी वो होगी जॉब वैकेंसी के लिए कि किस तरीके से क्या क्या जॉब वैकेंसीज हैं जो स्पेशली यूथ्स के लिए इस समय बहुत ज़्यादा हैं, कैसी क्वालिफिकेशंस चाहिए उनके लिए, और कहाँ पर जाकर आप उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। सो हमारे पास आज डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप भी फटाफट से आ जाएं, आएं अपने अटेंडेंस लगाएं, हमें बताएं कि आप आ चुके हैं। तो आइए लिसनर्स करते हैं एक बहुत ही प्यारी और शानदार शुरुआत आपके अपने वाले शो यानी कि ज्ञानस्थली लाइव की, और सबसे पहले करते हैं काम की बात। तो मैं बता दूं कि आज जो जॉब वैकेंसीज मैं लेकर के आई हूं वो ज़्यादातर बैंकिंग के लिए। यस, तो आज हम आपको बताएंगे कि बैंकिंग के क्षेत्र में क्या कुछ जॉब वैकेंसीज हैं और क्या कुछ पेपर भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर बात करें जॉब वैकेंसीज की हमारी यूपी में, तो SBI क्लर्क जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में 9,766 क्लर्क पदों पर मेगा भर्ती इस समय निकाली हुई है, जो इस साल की सबसे बड़ी बैंकिंग परीक्षाओं में से एक है। जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को इसके लिए पाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हाँ वो इसमें जा सकते हैं, तो वो ज़रूर इसके लिए आवेदन करें। इसमें पेपर होगा, और अगर आपने पेपर क्वालिफाई किया तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। मैं बता दूँ कि अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है, कॉमर्स से पढ़ाई की हुई है, तो आप इसके पेपर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा आता है कि प्रदेश पुलिस में भी भर्तियां निकाली गई हैं, जो कांस्टेबल के पद पर इस समय चल रही हैं, जो कि पुलिस कांस्टेबल की हैं। इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, और बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर 2026 है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप फटाफट से अभी के अभी कराएं। दूसरा आता है कि पंजाब सरकार भी इसके लिए हर साल कई सारे आवेदन निकालती है, तो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है यूपीएससी के लिए कि संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए निकाली हैं भर्तियां, जो कि ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 2026 है, आप उसमें जा कर के डाल सकते हैं। दूसरा आता है लाइफ स्टॉक एक्सप्रेशन ऑफिसर के लिए भी है, जो प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं। 1,251 पदों की भर्तियां अधिसूचना जारी की जाती है, जिसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर 2026, यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके लिए लास्ट डेट अभी मैंने आपको बताई, वो इसके लिए लास्ट डेट है। तो आप इन डेट्स को याद रखें और ज़रूर से जाएं और आवेदन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तब तक आपको ये सारी ही जॉब्स कैसे मिल सकती हैं। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, और हाँ एक बात और, अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को संभाल के नहीं रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आप जिस भी मतलब जैसे आपने जो भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उन सभी में आपकी जो मार्कशीट है

पर आपका नाम, आपकी रैंक, नंबर, ये सभी चीज़ें जो होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए। उस पद के लिए आपको जो चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आधार लगता है, आपका आय प्रमाण पत्र लगता है, या जो भी चीज़ें लगती है, जो भी पेपर्स लगते हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। पेपर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी कुछ जॉब वैकेंसीज, और इसी के साथ हो चुकी है ज्ञान हस्ती लाइव में हमारे मंडे की शुरुआत, जिस दिन हम करते हैं कुछ काम की बात। काम की बात तो डेली होती है, पर इस दिन को हमने काम के नाम का टैग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मंडे, भाई संडे को छुट्टी होती है और मंडे को सभी लौटते हैं अपने अपने कामों पर, तो उससे अच्छा दिन हो सकता है जॉब वैकेंसीज बताने के लिए और कुछ काम की बातें बताने के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए हमने मंडे को चूज़ किया है। तो मंडे है हमारा काम का डे, यानी कि वर्क वाला डे, वर्क प्रेशर वाला डे। हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने काम के प्रेशर को नहीं, बस उसके स्ट्रेस को थोड़ा सा ज़ीरो कर सकते हैं और फुल फोकस कर सकते हैं अपने काम पे। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स लेकर के। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने वाले शो में। सो फटाफट भाई, आज है काम काम काम, बहुत सारा काम, और दिन भर होता है सिर्फ काम काम काम। भाई मैं तो बहुत, जैसे होता है ना कि हम कहते हैं अरे यार मैं तो बहुत थक जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ ना तो भी ऑफिस के काम का ही स्ट्रेस रहता है, तुम्हें पता है। कभी कभी तो मैं नींद में भी बड़बड़ाती रहती हूँ ऑफिस के काम को लेकर के। कुछ ऐसा ही होता है ना हमारा, ऑफिस के काम को लेकर टेंशन होता है, बहुत होता है। कई बार कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर आपको होता है सर में तेज़ दर्द, और फिर हम हो जाते हैं परेशान। परेशान होना बनता भी है, क्योंकि देखिए 9 to 5 की जॉब हो या उससे आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो ज़्यादा हो, जॉब जैसी भी हो, काम का स्ट्रेस तो होता ही होता है। हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी कह लें कि अरे यार टेंशन मत लो ना, सब हो जाएगा, जस्ट चिल, लेकिन ये जस्ट चिल जो है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए चिल होता है, बाकी टाइम तो चिल नहीं होता है, बाकी टाइम तो टेंशन होता ही होता है। और इसी के साथ महेंद्र जी आ गए हैं, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून अंशिका मैम। गुड आफ्टरनून आपको महेंद्र जी, कैसे हैं आप? भाई कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के 100 की सीधी एक बात ये है कि स्ट्रेस तो आपको होता ही होता है, फिर चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए अपने स्ट्रेस को ना आने देने की, लेकिन वो बिना नॉक किए, बिना आपको इन्फॉर्म किए आपके माइंड में एंटर हो ही जाता है, और फिर पूरा दिन आपके साथ रहता ही रहता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे कि आपके काम का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ऐसी भी कुछ चीज़ें बताएंगे जिनसे कि आप इसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेंगे। तो आइए बताते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं उनमें, कि सबसे पहले है कि टू डू लिस्ट, यानी कि रोज़ सुबह सबसे पहले ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बनानी चाहिए कि दिन भर में आपको कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और आज ही के दिन में आपको वो काम पूरे कर लेने हैं। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कौन कौन से काम अपने दिन के कंप्लीट करने हैं, ये हम पहले से जान लें। दूसरा आता है प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी का मतलब होता है कि सबसे मुश्किल या ज़रूरी काम सबसे पहले ख़त्म हो। बिल्कुल सही, प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होता है ना कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आज ही आज पूरा होना ज़रूरी है, इसको हम कल पे नहीं डाल सकते, लेकिन जिन कामों के लिए अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त है वो आप कल पे डाल सकते हैं। दूसरा होता है नो मल्टीटास्किंग। नो मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही टाइम पर हमें बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए, अपने काम की लिस्ट बनाएं, धीरे धीरे एक एक काम को करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पे, कि दूसरा हमारा जो है वो ये है कि जैसे सभी को कहीं ना कहीं यही होता है ना कि एक लंबा टाइम हमें जॉब में देना होता है, जैसे कि सुबह आप 10 बजे जा रहे हैं, 11 बजे जा रहे हैं, जितने भी टाइम को जा रहे हैं, और शाम को वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5-6 घंटे या 7 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे ब्रेक्स का मतलब होता है जैसे कि आधे घंटे आप काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है वो हल्का फ्रेश हो जाता है। आप उस 5 मिनट के ब्रेक में कुछ भी कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, या बस ऐसे उठे और एक चक्कर मार के आके फिर बैठ गए, आप टहल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है उसे छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ढेर सारा टाइम, कहने का मतलब ये कि 5 से 6 घंटे 7 घंटे नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे भी अगर रेगुलर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर लेते हैं, तो इससे आपके फोरहेड में पेन होने लगता है। हमारे फोरहेड में पेन कब होता है? जब हम ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए ज़्यादा काम नहीं करना है, कम काम करना है, बट हाँ हमें हमारा काम ज़रूर से करना है, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते रहिए। दूसरी चीज़ है कि क्या होता है ना कि अपनी सीट पर बैठे बैठे ही कई बार गर्दन कंधों में स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे होता है ना कि बहुत टाइम तक अगर आप बैठे रहेंगे तो इससे आपकी पीठ में, गर्दन में, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर हम लंबे टाइम तक चेयर पर बैठते हैं, तो उसमें आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। थोड़े 5 मिनट खड़े हो जाइए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिर बैठ जाइए, इससे आपके कंधों में, पीठ में, गर्दन में पेन नहीं होगा। और इसी के साथ महेंद्र जी लिख रहे हैं कि मैम जब सूरत रहता था तो कंपनी की चिंता बहुत रहती थी, अब गांव आ गया हूँ, 10 दिन हो गए, कॉल करके भी नहीं पूछा है, जब वापस जाएंगे तो देखेंगे, अभी तो आराम से उठते हैं और पूरे दिन आराम आराम आराम।
बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी, कि क्या कहते हैं ना कि जगह काम की चिंता तो होती है, लेकिन जब हम छुट्टी लेते हैं या ये सोचते हैं कि भाई आप तो हमें घूमने जाना है, गांव जाना है, या इतने दिन की छुट्टी, 10 दिन, 5 दिन जो भी है, तो उतने दिनों में हम बस ये सोचते हैं कि हम रिलैक्स कर लें। और कहीं ना कहीं ब्रेक ज़रूरी भी होता है। अगर लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं तो कुछ दिनों का ब्रेक ज़रूरी होता है। अगर कुछ दिन आप ब्रेक ले लेंगे तो इससे ये होगा कि आप फिर फ्रेश हो जाएंगे और दुगनी ताकत के साथ अपने काम पे वापस जा पाएंगे और अपना 100% भी दे पाएंगे। इसलिए ये तो सही है कि ब्रेक तो लेना ही चाहिए। और छुट्टियाँ, छुट्टियाँ तो भाई जब भी मिलें तो हमें बहुत मज़े से उन्हें इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि छुट्टियाँ जो होती हैं ना वो जल्दी मिलती नहीं है, जल्दी मौका नहीं मिलता हमें छुट्टियों का। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग पे, चलते हैं सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, और आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार फिर लेकर के कुछ टिप्स और टेक्निक्स अभी हमारे पास हैं उन पर बात करेंगे। और आज है स्टोरी टाइम, तो एक स्टोरी भी है मेरे पास जो आप सभी को मोटिवेट करेगी, उसे भी शेयर करेंगे। पर उससे पहले आइए चलते हैं, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो ज्ञानश्री लाइव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए भाई वापस चलते हैं हम हमारे काम पे, क्योंकि कहते हैं ना कर्म ही पूजा है और जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हमारा दिन भी है काम वाला, क्योंकि हमने अपने मंडे को टैग दिया है कि हमारा मंडे जो होता है वो बहुत काम वाला मंडे होता है। अब काम वाला मंडे क्यों होता है भाई? संडे हमारा छुट्टी का दिन होता है, संडे को आपने फुल ऑन अगर मस्ती कर ली तो मंडे को तो काम करना ही पड़ेगा ना। इसलिए तो अभी तक हमने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं कि जिनसे आपका काम का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होता है। अब आते हैं बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपकी स्ट्रेस को और आपके दिमाग को रिलैक्स करती हैं। दिमाग को रिलैक्स करने का मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग ही थकता है, मतलब फिजिकल तो हम थकते ही हैं लेकिन आपका दिमाग भी थकता है और ये हमें पता नहीं होता है। हमें लगता है कि दिमाग थोड़ी ना थकता है, हम तो फिजिकली थकते हैं। और कई बार तो हम कहते हैं ना मुझे थकान वकान महसूस नहीं होती है, तुम्हें महसूस होती है, मुझे देखो मैं तो कभी थकता ही नहीं हूँ या थकती ही नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, आप थकते हैं, बस आपको वो चीज़ रियलाइज नहीं होती है। तो इसलिए आज कुछ चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहली जो हमारे पास आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज कह लें या ये कह लें कि ये बहुत अच्छा काम होता है, आपको करना क्या है कि आपको गहरी सांसें लेनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है। जब भी आपको स्ट्रेस ज़्यादा लगे तो सिर्फ 4 सेकेंड के लिए आपको अपनी सांस को अंदर लेना है, 4 सेकेंड के लिए उसे रोकना है और फिर बाहर उसको निकाल देना है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो इससे आप धीरे धीरे स्ट्रेस आपका जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि कंटिन्यूसली काम करने की वजह से हमें बहुत भारी भारी महसूस होने लगता है और थोड़ा सा ये भी लगने लगता है कि अरे अभी इतना काम और बाकी है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके माइंड में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर रहेगा और फिर हमें इस तरह की चीज़ें और इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो फील नहीं होंगी, यानी कि आप जल्दी नहीं थकेंगे। दूसरा आता है कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, दिन भर पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेट रखें। थकान और चिड़चिड़ापन डिहाइड्रेशन से ही बढ़ता है, इसलिए पानी प्रॉपर पिए। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम से कम जैसे कहते हैं ना कि दिन के 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीने ही पीने चाहिए, तो उतना आपको भी है कि प्रॉपर पानी पिए। अगर आपको लंच ब्रेक मिल रहा है तो लंच ब्रेक के बाद 5 से 10 मिनट की छोटी सी वॉक ज़रूर करें। ये आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के साथ साथ कई बार बैठे बैठे क्या होता है ना कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी पीठ में कंधों में अकड़न जैसी महसूस होने लगती है ना कई बार बैठे बैठे, वो ठीक होती है। और दूसरा, वॉक करने से आप रिलैक्स भी महसूस करते हैं। अब आते हैं दूसरे उस पर कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि घर जाने के बाद ऑफिस के ईमेल मैसेज को चेक करना बंद कर देना चाहिए, थोड़ा सा डिजिटल डिटैच होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर घर जाकर हम ऑफिस के ईमेल्स को और मैसेजेस को चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है ना कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम हो वो भी छूट जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जब भी कोई इमरजेंसी या ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज आए तो उसके लिए आप स्पेशल टोन रखिए कि जब वो स्पेशल टोन बजे तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये इमरजेंसी और कुछ बहुत ज़रूरी मैसेज है। अगर वैसे कोई मैसेज आ रहा है या ईमेल आ रहा है जो आपको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हैं, इससे आपके काम का कोई नुकसान नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए जब शाम को आप ऑफिस से घर जाएं तो थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड करें ताकि आपको आपका टाइम जो मी टाइम है वो मिल सके। क्योंकि जब हमें हमारा टाइम नहीं मिलता है ना तभी जा कर के स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि एक्स्ट्रा काम करने से बचना चाहिए। एक्स्ट्रा काम करने से बचने का मतलब होता है कि कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे लाओ ये भी कर लें, अच्छा वो भी कर लें, अच्छा ये भी कर लेते हैं, काम कंप्लीट हो जाए। काम कंप्लीट हो जाना अच्छी बात है, आप अपने काम के लिए सिंसियर हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन का जैसे आप 4 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं ना, ठीक वैसे ही कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि मुझे 4 दिन का काम एक ही दिन में कर लेना है। क्योंकि आप थकते हो, आप माने या ना माने आपके ब्रेन पे असर होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा काम करें। एक दिन का काम आप कर लीजिए, फिर दूसरे दिन थोड़ा काम कर लीजिए, फिर तीसरे दिन कर लीजिए, ढेर सारा काम एक साथ करने की कोशिश ना करें, इससे मेंटली बर्नआउट होता है। मेंटली बर्नआउट का मतलब होता है कि धीरे धीरे आपका दिमाग इतना थक जाता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते और फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार कितना काम, मुझे तो काम से ब्रेक ही नहीं मिलता है, मुझे तो छुट्टी ही नहीं मिलती है, मैं क्या करूं कैसे करूं।
और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर होता है स्ट्रेस, जो कि हमारा बिल्कुल रिलीज़ नहीं होता, हमारे दिमाग पे बना रहता है, जिसकी वजह से हमें सिर दर्द होता है, फिर हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर अपनी स्ट्रेस को हील करते रहिए, और हाँ, काम को कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना बी लिमिट, तो लिमिट में काम करिए आप, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और अब बारी आएगी हमारी स्टोरी की, तो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो बताऊंगी एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के उस पार। तो आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को, और मिलते हैं सॉन्ग के उस पार, छोटे से ब्रेक के उस पार, बस लेकर के आज की स्टोरी। तो देखते हैं कि आज वो कौन है जिसकी स्टोरी हमें मोटिवेट करेगी, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। तो करिए इंतज़ार, हो जाइए बेकरार, क्योंकि स्टोरी लेकर बस हाजिर होती हूँ ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना वाला शो जिसका कि नाम है ज्ञान स्थली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो वापस आ गए हैं क्योंकि आज दिन हमारा होता है कहानी यानी कि स्टोरी टाइम हो चुका है। तो आइए बताते हैं कि आज कौन है हमारे पास वो जिनका मोटिवेशन हमारे भी काम आने वाला है। सो आज स्टोरी जिनकी कह लें वो है रोहन की कहानी, जिसने अपनी नाकामियों को ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। कहते हैं ना कि जब असफलता यानी कि जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, हमें फेलियर मिलता है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस फेलियर से क्या सीखते हैं। तो आइए बताते हैं कि रोहन की कहानी आखिर है क्या। 22 साल की उम्र में रोहन के पास न कोई अच्छी नौकरी थी और न ही भविष्य के लिए कोई रास्ता। कॉलेज के बाद उसने एक के बाद एक 3 स्टार्टअप शुरू किए, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण और पैसे की कमी के कारण तीनों बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। उसके दोस्त कॉरपोरेट कंपनियों में लाखों के पैकेज पर काम कर रहे थे, जबकि रोहन अपने कमरे में बैठकर अकेले अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसके रिश्तेदार, समाज, सभी उसे ताना मार मार कर उसकी हिम्मत हमेशा तोड़ दिया करते थे और वो यही सोचता था मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में बस एक टर्निंग पॉइंट होता है और उसे ढूंढने की या उसके मिलने की देर होती है। एक शाम हताश होकर रोहन अपने दादी के पास बैठा हुआ था। उसने रोते हुए कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जो भी करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और उसके घर के पीछे बगीचे में उसे ले गए और वहाँ उन्होंने दो पौधे दिखाए। एक कैक्टस था और दूसरा जो था वो बैम्बू यानी कि बांस का पौधा था। दादाजी ने कहा, बेटा जब इन दोनों के बीच बोए थे तब दोनों बराबर थे, हमने दोनों की बराबर देखभाल भी की, लेकिन जो कि एक कैक्टस था और दूसरा बांस का पौधा था, दोनों में उगा वही जो उनमें उगना था, यानी कि एक में कांटे और दूसरे में बांस, ठीक उसी तरीके से तुम्हारी जिंदगी भी है। तुम खोजो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। और फिर रोहन ने वैसा ही किया और 3 स्टार्टअप फ्लॉप होने के बाद उसने फाइनली काम शुरू किया। और इस बार उसने जो काम शुरू किया वो था कि उसने अपनी एक छोटी सी कंप्यूटर क्लास खोली, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर नॉलेज था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर्स में जो प्रॉब्लम होती थी, जो चीज़ें होती थी जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता था, वो रोहन बस यूँ सॉल्व कर लेता था। उसने अपनी स्किल को पहचाना और काम किया और इस बार उसका जो स्टार्टअप था वो निकल मतलब बहुत ही अच्छा हुआ। और उसने धीरे धीरे इसी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर अपनी एक नई पहचान बनाई। वो चाहता तो हार सकता था पर उसने हार नहीं मानी। यही होता है लाइफ में कि ज़रा सा हमें कहीं कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब तक अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तब तक लाइफ बहुत अच्छी है। मेरी लाइफ से अच्छी भी कोई चीज़ है, लेकिन ज़रा सा कुछ ख़राब हुआ नहीं कि हम कोसना शुरू कर देते हैं, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है, मेरी किस्मत तो ऐसी ही है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या होगा, मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं, हे भगवान मेरा क्या होगा। कोसने से चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। कोशिश करिए, पहचानिए कि आखिर उम्मीद की किरण है का, क्योंकि कहते हैं ना कि वो तो पैरों की जमी भी गवा देते हैं जो उम्मीद का दामन छोड़कर चलते हैं। उम्मीद क्या होती है उनसे पूछो जो उम्मीद का दामन थाम आसमां भी झुका लेते हैं। बिल्कुल, अपनी उम्मीद को कभी मत टूटने दीजिए। कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में भी है जो आपको मिलेगा, और आप ही के अंदर, आप ही के पास होता है, बस पहचानने की देर होती है। और जिस दिन हम पहचान लेते हैं कि हम किस काम को बेहतर से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, उस दिन हमारी लाइफ आसान हो जाती है। कोई भी काम आसान नहीं होता। आप नया कोई भी काम शुरू करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से हमेशा सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां ही होती हैं जो हमें, एक कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी कैसी होती है, तो आप भी बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, और उसे एक आकार देना और उसकी मूर्ति बनाना जैसे मूर्तिकार के हाथों में होता है, ठीक उसी तरह अपने आप को धीरे धीरे सांचे में ढालना और धीरे धीरे एक तरीके से पूरी मूर्ति तैयार करना, खुद को बेहतर बनाना, ये हमारे ही हाथों में होता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखते जाएं, खुद को बेहतर बनाते रहें, और लाइफ में बस एक चीज़ को ध्यान रखें कि कभी भी हार नहीं माननी, क्योंकि जो हार जाते हैं उनके लिए किस्मत भी हार जाती है, पर जो किस्मत को हरा कर जीतना जानते हैं, उनकी किस्मत भी उनसे कहती है कि अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है, तो भाई मुझे इसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा, फिर आपकी किस्मत भी कहीं ना कहीं जीतती है। इसलिए खुद को नहीं, हमेशा अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं ना, मत कहो खराब है तकदीरें, खुद खींचो ना अपनी किस्मत की लकीरें, तो खुद अपनी किस्मत की लकीरें रोहन की तरह खींचें और कभी भी हार ना माने। तो चलिए आइए लिसनर्स, ये प्यारे से मैसेज के साथ ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए, और आऊंगी इस सॉन्ग के उस पार आपको बाय बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

वापस आई हूँ जाने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं, आपसे मिलेंगे आपके अपने बहुत ही पसंदीदा वाले शो में, यानी कि सुन सहेली में। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए। बाय बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं अपने चहिते आरजेस को। मैं हूँ आरजे अदनान और मेरे साथ हैं
2: आरजे आकांक्षा।
1: जी हाँ, जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ आपके पैसे बचाने के अलग अलग तरीके बताते हैं।

0: आई थी स्टेशन के फोन से और सभी ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी सिहतिया सिंह जी की जिंदगी से मिलती जुलती थी। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपने अपनों और अपनी जमा पूंजी को खोया।
0: लेकिन एक हादसे ने सिहतिया सिंह जी की जिंदगी को बदल दिया। उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। इनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर बदर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए। सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे, ये तो सही नहीं होगा ना।
1: आज तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्जना।
0: मतलब अरे मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ, पर तुम मुझे बोलने दो तब ना।
1: हाँ हाँ, जो सही बात है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम यानी सेहत सही लाभ कई से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रहा था तो मैंने ऑटो पर कुछ लाउडस्पीकर चलते हुए देखा। मुझे लगा सेहत से जुड़ी बात हो रही है और श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया है।
1: अच्छा, तो फिर सुनाओ जरा।
0: चलिए तो हम सुनाते हैं आपको ये सेहत की अनोखी बात।
2: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गाँव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
3: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अब तुम बोलोगी कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसीलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में अच्छे से बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी की वजह से होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं। तो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसीलिए सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुनिए, जो भी काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो या बच्चे का होमवर्क करा रहे हो या फिर रसोई में खाना बना रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के जरिए बहुत ही जरूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट फिर से करेंगे। कब करेंगे ये बताएंगी आरजे कांशा।
1: तो हम रिपीट टेलीकास्ट करेंगे अगले शुक्रवार को।
0: जी हाँ, तो सुनिएगा जरूर और घर वालों को भी सुनाइएगा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को।
4: ये एनटीडी है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहे तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें 2 तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक

0: होता है। लिम्फोडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहाँ ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं स्क्रोटल एरिया होता है वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फोडेमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो, अदरवाइज एवरीबॉडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को, और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है, और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट्स समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहाँ तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, चार मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम, तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा, लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सैनिटेशन की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृपी जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिंस एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको चार गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को 2 गोली और 15 से बड़े को 3 गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसके मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन।
1: इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी एक बीमारी है जो कि एक पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति उसका वाहक बन सकता है क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद आते हैं, लोग दवाई लेने से इसकी खतराते हैं।
2: तुम तो भाई वाकई बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या आज सेहतिया भैया नहीं आएंगे?
1: आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब ये 10 अगस्त की तैयारी में लग गए होंगे, भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया जो है वो पुरुषों को कर रहे होंगे।
2: इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी दोनों यानी महिला और पुरुषों को हो सकती है।
1: कभी कभी ना तुम ऐसी बात करती हो जैसे मुझे लगता है कि तुम आरजे कैसे बन गई हो। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि महिला है या पुरुष है, सोचो जरा।
2: तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है, और 10 अगस्त को क्या होगा? अगर सेहतिया भैया आ जाते तो उन्हीं से पूछ लेते।
1: जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था।
3: सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
2: तो आप भी 10 अगस्त में बिजी थे?
3: बिल्कुल ठीक समझे हो आप, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसी निगलेक्टेड बीमारी की चपेट में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिले की तरह मास ड्रग्स MDA राउंड 10 अगस्त को चलेगा। यह NTD में से एक है। ये वो रोग है जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और फाइलेरिया उपेक्षित उष्ण कटबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो यह एक अस्थायी विकृत में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है।
1: अरे हमारे चाचा भी इसी बीमारी के कारण समाज से कटकर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे, लेकिन सेहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं और किसी के संपर्क में आने से कोई खतरा नहीं होता।
2: तो ये बीमारी यानी ये रोग सभी को हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है ना? हमने अभी डॉक्टर साहब को सुना, इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है, तो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है।
3: होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDS का सामना करने वाले समुदाय में आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं।
1: लेकिन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। लोग जो है वो अंधविश्वासों और भ्रांतियों की वजह से उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और यही वजह है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही है।
2: उन उपायों में से एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस को जड़ से खत्म करने में एक उपाय है ये।
3: तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या घट जाती है और एलएफ के फैलने का दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है।
1: और भैया, इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं?
3: भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी एनटीडीएस में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुकमवर्म संक्रमण, चिकनगुनिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोकोमा, रेबीज और सेक बाइट एनवेशन जैसे रोग शामिल हैं।
1: तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एलएफ यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए एमडीए जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एलएफ जैसी एनटीडीज पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
2: क्या हमारे देश में और भी निग्लेक्टेड रोग हैं?
3: ये बीमारियाँ मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
2: सेहतिया भैया, मेरा एक और सवाल है। वो पिछले एपिसोड में आपने कुछ बताया था ना निक्षय मित्र के बारे में, वो क्या है?
3: एक बार फिर बताता हूँ, निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य टीबी, क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं।
2: तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है?
3: नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल टीबी, क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके।
1: लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी एनएफईपी के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
3: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग यानी एमडीए के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयां डीईसी और एल्बेंडाजोल मुक्त में वितरित की जाती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुक्त कराने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुक्त दवाइयां, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती है। एक और खास बात है कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके।
2: सेहतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है।
1: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता दोस्त, भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें। और तो और, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके फाइलेरिया से जुड़ी योजनाओं की और ज्यादा जानकारी ले लें।
3: और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन
4: आपके जाने से पहले शपथ लेना जरूरी है।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
5: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
1: प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा
5: सेहत सही तो लाभ कई।
2: तो सेहतिया भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखिए, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाइयां जरूर खाइए। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे साझा भी करेंगे।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। नमस्कार, आदाब, दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और आज साथ में है आरजे अंशिका। मौसम ने ली है अंगड़ाई और अभी साथ में हो जाएगी कुछ खास लोगों की लड़ाई।
6: वाह वाह मैम, क्या लाइन बनाई है आपने।
5: वो लड़ाई प्यार वाली लड़ाई,
6: प्यार वाली लड़ाई,
5: प्यार वाली लड़ाई, वो डिशम डिशम वाली नहीं,
6: नहीं,
5: प्यार वाली लड़ाई। तो मौसम ने ली है अंगड़ाई और अभी आपकी हो जाएगी किसी अपने खास से प्यार वाली लड़ाई। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि आज है ट्यूजडे सेक्शन, यानी कि हमारे बच्चों का लड़ाई झड़ाई ठिशुम निशुम वाला सेक्शन होता है उसमें। तो बच्चों के साथ में हम आज का शो शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका,
5: और आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
7: सुन सहेली।
5: और सुन सहेली में इस प्यारे से मौसम को आज हम शुभ दोपहरिया नहीं बोलेंगे, आज हम बोलेंगे हैप्पी मॉनसून। तो एक साथ एक ही फ्रेम में अंशिका और मैं क्या बोलेंगे,
6: हैप्पी मॉनसून। सो हैप्पी मॉनसून आप सभी को। तो आइए चलते हैं हमारी सबसे पहली वाली, जो कह लें एक प्यारी सी शुरुआत की तरफ, जो कि एक पोएम की तरह होती है, के साथ होती है, जो लेकर के आती है आपकी अपनी आरजे समता। तो भाई आज मूड है ज़बरदस्त, मौसम है ज़बरदस्त और कोई है बहुत मस्त मस्त मस्त।
5: हाँ, वो असरे दीदार है।
6: ओ माय गॉड, असरे
5: दीदार है, असरे क्या कहते हैं कि असरे दीदार कह सकते हैं, असरे इश्क कह सकते हैं, और असरे हम स्पर्श कह सकते हैं, और असरे रूबरू बात करना हो सकता है, असरे हम एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी फीलिंग्स शेयर करने का, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया कल, क्योंकि कल मैं अपने रहबर से मिल करके आ रही हूँ। तो ऐसा अंशिका, अंशिका तो छोड़ो, मतलब मुझसे अभी 2 साल से जानती है, मेरे से जो काफी पहले साल से जुड़े हुए हैं ना, वो सभी ऐसा महसूस करते हैं कि मैं जब मिलके आती हूँ अपने रहबर से, तो मेरे जो चेहरे का नूर है, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो इतनी सुंदर हो जाती है कि क्या ही बता दे। मतलब मैं खुद अपने आप को जब शीशे में देखती हूँ अंशिका
6: जी मैम,
5: तो तो ऐसा फील होता
6: destiny.
5: है डेस्टिनी, इट्स अ वेरी
6: मिरेकल
5: मिरेकल
6: डेस्टिनी,
5: इट्स फॉर मी, ओनली फॉर मी,
6: यस ऑफ कोर्स ओनली फॉर यू। और इसे कहते हैं जबरदस्त साइन, क्योंकि कहते हैं ना कि यूनिवर्स में
5: क्या साइन बताओ पहले
6: था कुछ
5: अच्छा ऐसा होता है ना, जब हम किसी को बता भी ना पाए, किसी को बोल भी ना पाए, और अगला इंसान उसको परेशान करे, बताओ क्या साइन था?
6: साइन था मैम,
5: क्या था?
6: वो अभी आपने देखा कि क्या साइन था, तो वो हमारी बात है ना, गर्ल्स टॉक, तो वो हमने बताई।
5: ओके गर्ल्स टॉक, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं जल्दी से आज की पोयम को, एंड फिर उसके बाद हम शेयर करेंगे अपने गर्ल्स टॉक को, कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है,
6: बहुत ज्यादा गर्मी है,
5: गर्मी है ना,
6: गर्मी है,
5: मौसम ऐसा बाहर। तो चलिए प्यारी से शुरुआत करते हैं आज पोयम से, जो की है सुबह की शुरुआत अनोखी आई। अंशिका मेरा मुंह देखने लगी थी रास्ता वास्ता नहीं मैम कह रही है, आज खोई हुई है मैम,
6: आज खोई हुई है नहीं मैम, आज कहते हैं ना रास्ता देने की जरूरत तब पड़ती है,
5: असर इश्क,
6: हाँ जब हम राही होते हैं, तो आज तो मैम राही,
5: मैं वैसे भटक रही थी, अब मुझे मंजिल मिल गई है,
6: तो जब मंजिल मिल जाती है तो रास्तों की चाह खत्म हो जाती है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर कहते हैं ना कि प्यार
5: कहानी हो गई, कहानी
6: रास्ता देते हैं, तो चलिए रास्ता भी उसी पे,
5: इस वाले रास्ते की जो मैं राही हूँ ना, ये मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहने वाली हूँ।
6: ओह माय गॉड,
5: ऐसा है कि आप भी मेरे साथ आजीवन रहने वाली हैं। मैंने तो कमिटमेंट कर दिया है अंशिका, और मैं लोकल में नहीं, अंशिका लोकल में ही शादी करेगी, मी ऑल्सो नॉट, क्योंकि अंशिका की लोकल में शादी हम कर देंगे ताकि हमेशा से हमारी जो जोड़ी है ये हमेशा से बनी रहे।
6: बिल्कुल, तो वही शादी की तैयारियां हो चुकी हैं,
5: हो चुकी हैं,
6: बस हो चुकी हैं, आई थिंक मुझे लगता है 50% हो चुकी है, आई थिंक 70, बस 30% है। वो कहते हैं ना कि अच्छा शादी आपको पता है क्यों डिले होती है, पहले ये बताएंगे फिर आज पोयम के लिए लास्ट
5: जल्दी बताओ थोड़ा।
6: वो इसलिए डिले होती है क्योंकि लड़कियां जो हमारी होती हैं वो नखरे करती हैं, मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं करूंगी, मैं इतनी जल्दी नहीं कहूंगी कि मुझे शादी करनी है, लेकिन पता है मन में क्या होता है, मन में करनी भी होती है और हम कहेंगे भी नहीं,
5: वो असमंजस में लोग हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि हाँ यस करें कि ना करें, पर मेहंदी के कलर से तो पता लगाया जा सकता है कि इंसान रेडी है, और अगला जो बंदा है वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता भी है।
6: यस,
5: मेहंदी के कलर से जान सकते हैं,
6: बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना रंग जितना गहरा प्यार उतना ही गहरा। तो आइए कुछ इसी पे कर देते हैं आज शुरुआत। उनके इश्क का रंग क्या चढ़ा, और कोई रंग चढ़ ही ना सका, वो क्या मिले और कुछ हसरत बाकी ही ना रही, हम मांग रहे थे खुदा से, हम मांग रहे थे खुदा से तुम कब मिलोगे, क्या पता था तुम दिल में बस यूं ही मिलोगे,
5: तुम दिल में कहीं छुपे थे और यूं ही मिल जाओगे।
6: वाह,
5: है ना,
6: नजरें मिली, दिल ने दिल से कुछ कहा,
5: गर्मी की बुढ़ापा चल रही है, सबलू जी ये क्या,
6: सबलू जी यहाँ इश्क की बात हो रही थी,
5: बिना हाथ पैर की बात कर रहे हैं आप, पता नहीं क्या। चलो तो डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट हम शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत अनोखी, गर्मा गर्म चाय की प्याली, साथ में हो एक प्यारी सी साली, और हाथ में हो पोहा जलेबी या पकौड़ी की सजी थाली, मसाला डोसा और सांभर, बीच में लाइन मैंने जोड़ी थी
6: जी जी,
5: मसाला डोसा और सांभर की खुशबू मन को हर्षाती है। क्या अंशिका, आज मैं लंच भी नहीं करके आई हूँ और मुझे भूख लगी है, सांभर डोसा क्या ही मतलब है यार। खाने के शौकीनों की सुबह कुछ इस तरह मुस्कुराती है, दोपहर होते ही याद आती है तीखी चटपटी सी चाट, गोलगप्पों के पानी की वो सज सजाती है हाट, छोले भटूरे की रंगत देख मुंह में पानी आ जाता, स्वाद का ऐसा जादू है ये जो हर दिल को भाता, शाम ढले महफिल सजती है पिज्जा और बर्गर के नाम, मोमोज की तीखी चटनी से बनता है हर एक काम, बिरयानी की खुशबू से तो भूख दुगनी हो, अभी तुम्हें हम पटक के मारेंगे जो भूख दिन के समय तुम ये सब करती हो, बिरयानी की खुशबू से जो भूख दुगनी हो जाती है, खाने की एक वैरायटी जीने का मजा बढ़ाती है, अंत भला तो सब भला, मीठे बिना हर बात अधूरी, रसमलाई और गुलाब जामुन करते हैं ये चाह पूरी, डाइट चार्ट को भूलकर जो हर स्वाद का लुफ्त उठाते हैं, इस मतवाली दुनिया में ही सच्चे शौकीन कहलाते हैं।
6: वाह,
5: मजा आया आज के पोयम में,
6: बहुत बहुत
5: चीजें मुंह में जैसे लग रहा था घुल मिल रही थी,
6: और लास्ट में मीठा, वाओ, तो लाइन्स अधूरी रह गई थी क्योंकि सबलू जी का आ गया था मैसेज। कोई बात नहीं, तो चलिए लाइन्स को पूरी कर लेते हैं। अब प्यार से होगी प्यार की बात, प्यार से होगी प्यार की बात, क्योंकि दिल किसी के प्यार के लिए होता है बेताब। और इसी प्यारी सी बात के साथ करते हैं नई नई प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी शुरुआत आज समता के साथ, क्योंकि आज हमारी आज समता जो है वो कर रही है कुछ बहकी बहकी सी बात,
5: रूहानी इश्क है ना इसी है।
6: रूहानी
5: इश्क जो होता है वो किसी एक बंदे से नहीं होता है, पहले तो आप ये क्लियर कर लें
6: जी मां।
5: क्योंकि ये हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनके मुंह से अगर एक भी अगर बात निकल जाती है तो अफवाहें फैल जाती हैं फर्जी की,
6: तो ऐसा नहीं
5: तो
6: है।
5: ये रूहानी इश्क है और सभी को पता है कि मेरी रूहानियत किससे है, एक ही हमारे हैं रहबर, मैं मेरी रूहानियत इश्क उन्हीं से है और वही हमेशा रहेंगे। तो ये रूहानियत इश्क का असर है मेरे ऊपर कि मैं आज हूँ इतनी निखरी निखरी, शायद इसी वजह से आज कर रही हूँ बातें कुछ बिखरी बिखरी।
6: वाह, आज तो भाई मैम का जो कहते हैं ना कि मिजाज जो है वो आज कुछ ठहरा ठहरा है, तो वैसे मैम के साथ भी है। और अभी मैम ने जो पढ़ा और उसमें लाइन जोड़ी थी ना साली वाली, तो उस पे मुझे एक गाना
5: यही है वो साली।
6: हाँ, मैं तो सब बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बहू भी बनने के लिए तैयार हूँ, साली भी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरी सास ऐसी होती तो मेरी लॉटरी हो जाती।
5: चले अब एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ में आज की रेसिपी भी सुनने। ठीक है
6: बिल्कुल, तो आइए लिसनर्स चलते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ और उसके बाद में आज की पहली रेसिपी जो कि बताएंगी आपको आज अंशिका।
6: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बता देते हैं कि आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये है कि हमेशा जब भी आप कोशिश करें चीज़ों को समझने की, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और अपनी तकलीफ़ें कभी अपने अपनों के सामने नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आपकी तकलीफ़ें अगर आप अपने अपनों के सामने दिखाते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए अगर आपको कोई तकलीफ भी है तो वो हमेशा खुद तक रखें और हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करें।
5: बिल्कुल।
6: कई बार क्या होता है ना कि सिचुएशन वैसी होती नहीं है जैसा हम रिएक्ट कर देते हैं और हमें बाद में लगता है कि सिचुएशन तो कुछ थी ही नहीं और हमने रिएक्ट कर दिया। इसलिए हमेशा सिचुएशन को सोच समझ कर फिर रिएक्शन करना चाहिए और अपनी तकलीफें जहाँ तक हो सके अपने तक ही रखनी चाहिए। तो ये था आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अब आइए इसी के साथ चलते हैं और बता देते हैं आपको आज की रेसिपी। तो भाई, जब हमारे मन में समोसे का ख्याल आता है तो मन में क्या आता है मैम?
5: चटनी।
6: चटनी
5: और
6: एक बात और आती है मन में,
5: समोसे के साथ में। मैं पूरी आप समझाएं कि क्या चाहिए आपको आंसर।
6: मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हमारे मन में जैसे कोई कहता है चलो समोसा खाते हैं तो मन में पहली चीज क्या आती है?
5: क्रेविंग होती है।
6: क्रेविंग होती है और साथ ही साथ में हमारे मन में क्या आता है कि समोसा मतलब ऑयली और हैवी, और फिर हम सोचते हैं यार समोसा कौन खाएगा, ऑयली हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, उसमें आलू होता है, मसाला होता है, जिसकी वजह से मुझे गैस्ट्रिक भी हो जाती है।
5: तो तुम ये बोलो ना तुम्हारा प्रश्न ही गलत था कि समोसे के बाद क्या होता है। तुमको ये पूछना चाहिए था कि समोसा खाने के बाद क्या होता है, समोसा होता है तो क्या होता है, ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत था। वही मैंने कहा कि मैं आंसर नहीं दे पाई तो बहुत बड़ी बात हो गई।
6: ऐसा हो ही नहीं सकता।
5: तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत था
6: क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं
5: जिस... नहीं ऐसा नहीं है। अभिमन्यु भी फंस गए थे एक चक्र में। तो ऐसा नहीं है कि ये तो तुम बिल्कुल सामने वाले तारीफ करो और पीठ पीछे वाला वो चीजें
6: नहीं ऐसा नहीं है।
5: ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका मैं आंसर नहीं दे पाऊँ, ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न सही होना चाहिए।
6: तो आइए सही, इतना सारा जो बताने का मोटिव था वो सिर्फ इतना था कि जब भी हम समोसे के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में उसके लिए थिंकिंग बन चुकी है कि हेल्दी नहीं होता है, हैवी होता है, और साथ ही साथ में हम कहते हैं ना हेल्दी नहीं है, मुझे हेल्दी फूड की आदत है। जो मतलब जो डाइट बहुत ज़्यादा करते हैं और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे यार वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज हम आपको ऐसा समोसा बताएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा
5: जी,
6: बस कुछ चेंज है उसमें। तो चेंज क्या है चलिए बताते हैं, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको सोया चंक्स वाला समोसा, यानी जिसमें होगी सोयाबीन का यूज़ होगा, क्योंकि सोयाबीन प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। और इसी के साथ में आज हम पनीर भी इसमें मिक्स करने वाले हैं, मतलब आज हम आपको प्रोटीन समोसा खिलाने वाले हैं।
5: ये प्रोटीन और हाइजीनिक समोसा होने वाला है।
6: बिल्कुल। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। तो आपको सोया चंक्स ले लेने हैं, जो छोटे छोटे वाले आते हैं ना,
5: सबसे छोटे वाले,
6: सबसे छोटे वाले उनको ले लीजिए और ऐसे सूखा, इट मींस कि बिना भिगोए हुए, जैसे हम पानी में उसको भिगो करके फिर यूज करते हैं ना,
5: हाँ।
6: लेकिन पानी में बिना भिगोए हुए आपको उसे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए पनीर, पनीर हमें चाहिए 50 ग्राम, 50 ग्राम आपको पनीर चाहिए। और उसके बाद में हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मटर, हरी मटर जो मार्केट में आती है पैकेट,
5: हाँ, जो वाली। जो फ्लोजन वाली होती है, हाँ, आप वो भी ले सकते हैं,
6: बिल्कुल। उसके बाद में आपको ले लेना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, और मटर आपको थोड़े से ले लेने हैं, थोड़े से का मतलब है आधा कप, और आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज भी आपको ले लेना है। अब आते हैं कि हमें मसालों में क्या लेना है। तो मसाले में सबसे पहले है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला,
5: okay.
6: और नमक आप अपने अकॉर्डिंग जितना जैसे भी खाते हैं उस हिसाब से आपको ले लेना है। और इस समोसे में, वैसे तो समोसे में होता है मैदा, लेकिन इसमें हमें लेना है गेहूं का आटा,
5: ओके,
6: गेहूं का आटा,
5: गेहूं के आटे से बनाना है
6: जी, तो okay. आपको गेहूं का आटा ले लेना है। और उसके बाद में आप चाहें तो आप इसको फ्राई करने के लिए घी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो भी ऑयल आप खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं कि बनाना कैसे। तो सबसे पहले आपने जो सोयाबीन लिया हुआ है उसको आपको पानी में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में आप उसको ले लीजिए और हाथों से सारा पानी उसका आपको निकाल लेना है, जो वो प्रॉपर भीग जाए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि हल्का सा आपको तेल लेना है और तेल में उसे रोस्ट कर लेना है
5: जी।
6: अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो जब वो हल्का क्रिस्पी हो जाए उसके बाद आपको मिक्सिंग में डाल करके उसे अच्छे से 2 बार चला लेना है, तो वो पेस्ट बन जाएगा,
5: हाँ।
6: ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में पनीर जो आपके पास था उसको आपको मैश कर लेना है अच्छे से। पनीर को आपने मैश कर लिया और आपका जो ये सोयाबीन था उसका भी अच्छे से बैटर जो है पेस्ट वो तैयार हो गया। अब आपको इन दोनों को मिक्स एंड मैच अच्छे से करके मिला लेना है। जब आपने इन दोनों को मिला लिया उसके बाद बारी आती है कि हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो मैंने आपको बारीक कटा हुआ प्याज बताया था, आपको वो प्याज डाल देना है। जो हरी मटर आपके पास 1.5 कप थी वो भी आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद में आपको इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, और फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से इसमें मिला देना है। मतलब हाथों से मिलाइएगा ताकि वो पूरा अच्छे से मिल करके एक सार हो जाए। अब ये आपकी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई। अब आपको इसे रेस्ट के लिए रख देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। रेस्ट के लिए रख दिया, अब आते हैं कि हमें इसके लिए जो गेहूं का आटा रेडी करना है,
5: हाँ।
6: तो गेहूं के आटे को रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि गेहूं का आटा ले लेना है और थोड़ा सा घी अलग गरम करके उसमें आपको मोयन दे देना है। मोयन दे दिया आपने और फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है।
5: बिल्कुल,
6: अजवाइन डाल करके आपको वो आटा क्या,
5: अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मतलब मैंने सुना है कि मट्ठी वगैरह में या फिर समोसे में जब भी आप अजवाइन डालें तो हाथों से क्रश करके डालें उसको।
6: जी मैम,
5: हाथों से क्रश करके डालने पे ना वो बहुत अच्छे से उसका वो भी हो जाता है, मतलब जैसे वो ना कोई दाना दाना फिर नहीं रहता है, वो हल्की सी क्रश हो जाती है।
6: जी मैम, अब आपको क्या करना है कि इसमें हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा जो मोयन है वो ठीक है या नहीं।
5: हाँ।
6: कई बार क्या होता है कि मोयन कम हो जाता है तो जैसे क्रिस्पी नहीं लगता है, तो उसके लिए जब आप आटे में घी को डालेंगे उसके बाद उसे अपने हाथों से अच्छे से आपको जिसे कहते हैं ना कि
5: मिला लेना है पूरे आपको आटे को, हाँ,
6: हाँ।
5: और एक मुट्ठी में आटा लेना है, अगर वो हल्की सी जो सी मुट्ठी में आ करके वो बंद रही है इट मीन्स कि आपने इसमें मोयन अच्छा डाला है।
6: जी
5: यही ना।
6: जी मैम,
5: वही।
6: तो ये मैम ने जैसे कि अभी बताया तो आपका आटा हो गया। अब आपको इसको अच्छे से गूंथ लेना है पानी डाल करके। अच्छे से गूंथ जाने के बाद, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो कि आप समोसा बना रहे हैं तो आटा हल्का सा टाइट होना चाहिए, ज्यादा अगर वैसे होगा,
5: अगर हल्का सा टाइट होगा ना तो वो क्रिस्पी ज्यादा होता है।
6: जी मैम, तो ये हो गए आपके समोसे का आटा रेडी। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको मतलब इसको अच्छे से बेल लेना है। तो बेलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक बड़ी सी थाली लेनी है
5: जी।
6: बड़ी सी थाली पे आप इसको बड़ा सा बेल लीजिएगा, जैसे कई बार गुजिया के लिए हम बेलते हैं ना, फिर
5: हाँ।
6: उसमें छोटे छोटे कट्स करते हैं,
5: हाँ।
6: वैसे ही बड़ा सा आपको बेल लेना है। और इसके बाद आपको चक्कू की सहायता से इसको 4 पीस में कट कर लेना है। 4 पीस में आपने कट कर लिया और फिर आपको इसमें जो आपका बैटर है वो उसको फिल करना है और इसे समोसे का आकार दे देना है। आपका प्रोटीन वाला ये समोसा रेडी हो गया है। अब आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपके पास मतलब जैसे कि जो भी तेल आप खाते हो या तेल या रिफाइंड, उसमें आपको इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने की फ्राई हो गया, उसके बाद आती है बात कि अब हमें इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकालना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कहते हैं बहुत ऑयली है, एक्स्ट्रा ऑयल आ गया है। तो एक्स्ट्रा ऑयल को रिलीज करने के लिए आप इसको टिश्यू पेपर पे रख दीजिए, तो आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो रिलीज हो जाएगा
5: बिल्कुल।
6: और आपका समोसा,
5: और कभी भी आप लोग एक टिप और मैं दूं कि जब भी आपने कोई भी ऐसे तलने वाली मतलब कुछ होता है, जैसे नमक पारा हो गया, समोसा हो गया, गुजिया पहले हम लोग तल लेते हैं फिर चाशनी में डालते हैं, तो ये सारी चीजें ना आप किसी एक कंटेनर में, बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई ऐसा बंद वाला जैसे कैसरोल होगा या कुछ ऐसा होगा, या मतलब ऐसी ट्रे होगी जो कि आपने क्या करना है कि उसमें सब तल तल के उसमें एक साथ इकट्ठा करते जाते हैं, तो वो सॉटे हो जाता है। मतलब है कि वो ना वो घिम जाता है, जैसे नहीं कहते वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक टिप देना चाहती हूँ आज, कि आपने एक बड़ी सी ट्रे लेनी है, एक बड़ी सी प्लेट लेनी है, जिसपे आपने पेपर बिछा लेना है, न्यूज़पेपर सिंपल सा। अगर टिश्यूज नहीं है ना तो आपने क्या करना है, सिंपल सा न्यूज़पेपर बिछा देना है, और नीचे जाली का कुछ सिस्टम रखिए। अगर आपके पास बड़ी कोई छन्नी है, बड़ी आपके पास कोई जाली है, उस पे अगर आप रखेंगे ये न्यूज़पेपर बिछा करके, तो आपने 2 से 3 दिन तक, क्या आप हफ्ता भर रखेंगे ना, ये मुलायम नहीं होगा। और कोशिश करिए कि हवा जहाँ पर हो वहाँ नहीं रखिए, तो ये सॉटे भी नहीं होगा। ये टिप ऑफ द डे।
6: टिप ऑफ द डे भी मिल गया, समोसा भी मिल गया, लेकिन कुछ मीठा नहीं मिला।
5: हमें लगा भी बोलो कि चटनी नहीं मिली है।
6: मुझे तो तीखे के साथ मीठा अच्छा लगता है, तो मीठा है कुछ, अगर मैम कहें तो मैं बता दूं।
5: बताएंगे, लेकिन मीठा अभी नहीं बताएंगे।
6: ओके,
5: बताएंगे एक ब्रेक के बाद में। तो अभी आप नमकीन का स्वाद लें, और नमकीन के बाद में मीठा अच्छा लगता है, तो इस ब्रेक के बाद आएंगे, मीठा जानेंगे, एंड उसके बाद में फिर से बताएंगी हमारी मास्टर शेफ, जो कि आप सभी की फेवरेट होती हैं। तो आज बहुत कुछ खास लेकर के आएँ, एंड मेरे पास टिप ऑफ द डे यानी किचन टिप्स ऑफ डे हैं बहुत सारे, तो जल्दी से हम जाएंगे तभी तो आएंगे।
6: तो आइए लिस्नर्स, चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर

0: इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
0: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी। डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: दोस्तों आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मैंने सोचा कि आपको आज बता दूं कुछ ऐसी वेज फिश, क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉन वेज हम लोग मैं तो नहीं खाती हूँ, और तो थोड़ा सा वेज जो कि फिश है हमारे पास में, और वो वेज फिश कैसे बनती है उसकी रेसिपी आपको आज बताऊंगी। तो वेज फिश के लिए, जैसा कि अभी सबलू जी ने लिखा है कि मैदा जो होता है वो हमारी किडनी के लिए फायदेमंद नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं बताऊंगी आपको, और मैं वेज फिश बता रही हूँ आज। और वो वेज फिश ये है कि सबसे पहले आपको बेसन ले लेना है, और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब मैंने फिश कभी खाई नहीं है, बट जो लोग खाई जिन्होंने खाई है वो लोग भी कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली इसका जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल वैसे ही आता है। तो आपने क्या करना है, बेसन ले लेना है, और बेसन को आपने जैसे दो कटोरी आपने बेसन लिया, आप अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से लीजिएगा। मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। एक कटोरी आपने ले लेना है बेसन, थोड़ी सी राई और हल्दी, गरम मसाला, नमक और पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च, इतना आपको एक एक चम्मच, एक एक आधा आधा चम्मच या क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार से आप बढ़ाइए और घटाइएगा, इतना आपको अपने से पहले इसको सामान को रख लेना है। एंड अब क्या करना है, आपको गैस जलाना है, कढ़ाई रखनी है, और उस कढ़ाई में आपको 3 से 4 चम्मच आपको घी डालना है, मतलब ऑयल आप बनाएंगे रिफाइंड में बनाइए या फिर सरसों के तेल में बनाइए, वो आपकी मर्जी है। उसको क्या करना है कि आपने ऑयल डाल दीजिए, और उसके बाद आपने बेसन डाल देना है। बेसन को अच्छे से भूनना है, और बेसन को भूनने के बाद में आपने उसका, जैसे आप नॉर्मल में हलवा नहीं बनाते हैं, जैसे आटे का सीरा बनता है, हलवा बनता है,

0: हलवा बनता है जैसे आटे का, वैसे ही आपको बेसन का हलवा बना लेना है। सिंपल सी लैंग्वेज में है कि बेसन को भून लेना है, और बेसन को भूनने के बाद में जैसे आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है, अब आपने इसमें जैसे एक कटोरी आपने बेसन लिया है तो आपको दो कटोरी पानी डालना है, और सारे मसाले जो कि मैंने अभी आपको बताए सूखे मसाले, पहले तेल थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तो उसमें आपने राई और जीरा चटका लेना है, उसके बाद में आपने लाल मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, मतलब स्वाद अनुसार, अगर आप लोग लाल मिर्च नहीं खाते तो उसको स्किप कर सकते हैं, गरम मसाला, नमक, ये सब डालने के बाद में आपको बेसन डालना है, उसको अच्छे से भून लेना है। जब आपको लगे कि वो कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्मेल अच्छी आ रही है, तब आपने दो कटोरी पानी डाल करके इसको इसका हलवा बना लेना है। हलवा इट मीन्स कि ये जैसे हलवा बनता है ना सूजी का, आटे का, सुन रही हो तुम?
1: जी मैम।
0: तो वो हलवा उस टाइप में बना लेना है, और उसके बाद में आपने जैसे आपको लगे कि ये भून रहे ना, उसके पहले ही आपने एक ले लेनी है थाली, तो मतलब थोड़ी सी गहरी थाली ले लेनी है, बड़ी सी, उसमें उसको ग्रीसिंग कर लेनी है, ऑयल से ग्रीसिंग कर लेनी है।
1: जी।
0: ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद में आपने ये सारा बैटर उसमें डाल देना है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा बैटर जब बन जाए, हलवा इसका बन जाए, वो डाल देना है, और इसको 3 से 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। अब क्या करना है, जब ये सेट हो जाए तो इसको बर्फी स्टाइल में काट लीजिए, या फिश स्टाइल, मतलब बर्फी स्टाइल फिश, टाइप का फिश ही होती है। मैं उसके बाद में इसको बर्फी टाइप पे कट करके इसको फ्रिज में डाल देना है। अब फ्रिज में रखने के बाद में कम से कम 5 मिनट रख दीजिए, वो फटाफट सेट हो जाता है। और आपने इधर मसाला तैयार करना है जिसमें आपको इसको फ्राई करना है, पहले आपने इसको फ्राई करना है, उसके बाद इसके ऊपर मसाला बताऊंगी। अब उसको फिश के टाइप में कट कर लेना है, बर्फी स्टाइल में कट कर लेना है, और एक एक पीस जब उठाएंगे ना तो बहुत स्पंजी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब आपको डीप फ्राई, अगर आपको पसंद है कि आप डीप फ्राई करें, आपको शैलो फ्राई करना है, या फिर आपको तवे पे ही, केवल नॉनस्टिक तवे पे ही फ्राई करना है, वो आपकी मर्जी है। तो नॉनस्टिक तवे पे इसको फ्राई करना है तो आपने क्या करना है कि आपने घी या तेल, जो आप खाना आप प्रेफर करते हैं, उसको आपने फ्राई कर लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक, एंड आपने एक प्लेट में पूरा मसाला बनाना है, प्लेट में मसाला बनाना है, हल्का सा नमक, क्योंकि नमक पहले से ऑलरेडी इसमें हमने डाला हुआ है, पिसा हुआ धनिया की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, गरम मसाला, और एक फिश मसाला आता है मार्केट में। अब ये लोगों की भ्रांति होती है कि मीट मसाला फिश मसाले में वो फिश पड़ी रहती है, उसमें मीट मसाले में मीट पड़ा रहता है, पर ऐसा नहीं होता है,
1: ऐसा नहीं होता है।
0: उसके मसाले थोड़े तेज वाले होते हैं, तेज पत्ता, गरम मसाला, दालचीनी, ये सब ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको मीट मसाला कहा जाता है। तो आपको मार्केट में जो भी मसाला मिल जा रहा है, आपको अगर मीट मसाला मिल रहा है, फिश का मसाला मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आपको वो ले लेना है, और उस प्लेट में 2 चम्मच वो भी डाल देना है। अब जब ये शैलो फ्राई हो जाए, फिर सारा मसाला एक एक को, मतलब फिश एक एक पीस उठा करके उसको डिप करके, उसी सूखे मसाले में डिप करके, फिर से एक बार तवे पे लगा करके इसको दोनों तरफ से सेक लेना है, सारी बर्फी स्टाइल,
1: सारे पीसेस को।
0: उसके बाद आपने दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, सिंगल खा सकते हैं, जैसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, आप किसी स्नैक्स में के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर आप इसको वेज फिश आप ये खा सकते हैं। भैया जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये वेज फिश जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करती है।
1: वाह, बहुत टेस्टी, मतलब सुनने में ही लग रहा है कि
0: बहुत टेस्टी होती है खाने में। मतलब मैं तो बताऊं कि हम लोगों क्या, तो क्या नॉन वेज नहीं बनता है, लेकिन ये वेज फिश जब बनती है ना तो सभी बहुत चाव से खाते हैं। बहुत
1: सुनने में भी लग रहा है कि बहुत ही टेस्टी है, तो आप भी बनाइए और मैं भी जरूर बनाऊंगी। सो खाएं, एंजॉय करें, और आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं,
0: और उसके बाद आएंगे अंशिका जो मीठा बता रही थी ना, वो सुनेंगे कि वो लास्ट में सुनते हैं,
1: वो लास्ट में सुनते हैं।
0: चलो
1: तो चलिए अभी के लिए ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, बस यू गई यू आई स्टेडियम।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका के साथ। तो भाई इस इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमारी स्टूडियो में आ चुकी हैं हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो आइए सुनते हैं सीधे अगली आवाज हमारी मास्टर शेफ की।
4: नमस्कार दोस्त, आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। सावन खत्म हो गया है, सब लोग अब नॉन वेज खाने के लिए तैयारी होंगे, तो मैं आज आप लोग को चिकन मुगलई सिखाने जा रही हूँ। कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप लोग, ताकि सामान लिख लीजिए। बहुत सरल उसमें आपको बताऊंगी, घर का ही जो सामान है उसी को आप यूज करेंगी। तो सबसे पहले आप चिकन 1 किलो ले लीजिए। चिकन ले लीजिए, उसको खूब अच्छे से धो लीजिए, थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए और नींबू निचोड़ के उसको फिर से रगड़ के धो दीजिए। इस नींबू डालने से ये होता है कि जो चिकन की स्मेल रहती है वो खत्म हो जाती है। अदरक जो है आप अदरक लहसुन ये आप जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट आप ले लीजिए 1-1 चाय का चम्मच। दही जो है वो आप ले लेंगी 1/4 प्याला। और दही ताज़ा होना चाहिए, दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। जब दही खट्टा होता है तो उससे जो होता है वो ख़राब हो जाता है, स्वाद जो है थोड़ा अलग हो जाता है। 1 टीस्पून काली मिर्च ले लीजिए गरम मसाले में। आप जीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और चक्री फूल है, काली मिर्च है, ये सब आप थोड़ा थोड़ा लीजिए। थोड़े का मतलब क्या है कि आप 1 चम्मच काली मिर्च ले लीजिए, 1/2 इंच का टुकड़ा आप दालचीनी ले लीजिए, 5-6 लौंग लीजिए, 2 छोटी इलायची ले लीजिए, 1 बड़ी इलायची ले लीजिए। हाँ, जीरा जो है आप 2 चाय का चम्मच ले लीजिए, खड़ा हुआ धनिया आप 2 चाय का चम्मच ले लीजिए और इन सबको आप हल्का हल्का भून लेंगे। तेज आंच में नहीं भूनेंगे, गरम रखेंगे पैन को, पर जल गरम नहीं, बहुत तेज गरम नहीं करेंगे, हल्का हल्का भून लेंगे। निकाल करके आप इसको दरदरा पीस लीजिए। दरदरा पीसने से होगा कि जो हमारे मसाले हैं वो अलग से जो है वो स्वाद देते हैं। अब आप क्या करेंगी कि 2 बड़ी बड़ी प्याज ले लीजिए, महीन महीन काट लीजिए। अब इन्हें क्या करें, घर उसमें कढ़ाई उसमें जो भी पैन बर्तन में बनाना है, हमारे पास तो बड़ी पतीली है स्टील की, मैं उसी में बनाती हूँ। अगर आपके पास है ठीक है, नहीं कुकर में, या जो कुकर में बनाइएगा तो स्टीम मत दीजिएगा कभी भी, वो जो ढकिएगा नहीं उससे एकदम मुर्गा टूट जाता है। तो आप ढक के बना सकती हैं या बड़ी कढ़ाई ले लीजिए, उसमें आप तेल डालिए। तेल इतना अंदाज से डालें, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। अगर आपको लगे कम है तो आप बाद में भी डाल सकती हैं। तो सबसे पहले आप प्याज डालिए कढ़ाई में, तेल डाला है, तेल गर्म हुआ, आप प्याज डालें जो आपने महीन काट के रखी हैं, उसको मुलायम करें और उसी के संग 2 तेज पत्ता भी डाल दें। अब जो है इसको आप धीमे धीमे भून रही हैं, बहुत तेज आँच नहीं करेंगी। उससे पहले आपने क्या करा, जो आपने चिकन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और जो भी आपने गरम मसाला पीसा है, इसमें आप मीट को जो चिकन है उसको लपेट के कम 1/2 घंटे पहले रख दें। उससे होगा कि जो फ्लेवर होता है मसालों का वो अलग अलग हो जाता है। अब आप जो है इसमें जो आपने लपेट के रखा है चिकन, इसी प्याज में आप उसको डाल देंगे और आँच अब आप तेजी कर देंगे, क्योंकि चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा। अब आप उसको तेज आँच करके रख देंगी और उसको आप तेजी में भूनेंगी। भूनने से ये होगा कि उसका जो पानी निकल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी समय आप नमक जो है वो भी डाल दीजिएगा, ताकि जो चिकन है उसमें नमक बिध जाए। और और जितना भी है अब आप इसको भूनती रहिएगा। जब आप देखिएगा कि चिकन ने पानी छोड़ना बंद कर दिया है, तब आप एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच अपने स्वाद के अनुसार एक चम्मच या आधे चम्मच पिसी हुई मिर्च आप डाल दीजिएगा। पिसी हुई मिर्च ज़्यादातर हम कैच की यूज़ करते हैं, उसमें ही होता है रंग भी बड़ा अच्छा होता है, स्वाद भी अच्छा आता है। तो पिसी हुई लाल मिर्च एक चम्मच या आधा चम्मच आप उसमें डाल दीजिएगा और तेज आंच में भून लीजिएगा। भूनने के बाद अब आप पकने दीजिएगा। जब आप अच्छे से ये पक जाए तब आप हरी धनिया डाल करके गरम गरम सर्व कर देंगे। उससे ये होगा कि ये जो आपका चिकन है मुगलई वाला, ये बहुत अच्छा वो देता। सर्व करते समय आप इस पे क्रीम भी डाल सकती हैं। क्रीम जो है, चाहे आप घर में जो दूध से निकलती है अगर आपके पास वो ज़्यादा है तो आप वो डाल दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार में जो क्रीम का पैकेट मिलता है 100 ग्राम का, आप ले लीजिए और सर्व करते समय इसको क्रीम डाल के अवश्य सजा दीजिएगा। देखिएगा कि बहुत अच्छा जो होता है ये हमारा चिकन मुगलई तैयार हो जाता है।
5: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी RJ समता और साथ में RJ अंशिका। तो आइए शुरू करते हैं हमारी रंजना मैम यानी कि मास्टर शेफ की एक दूसरी और रेसिपी, जो कि है बहुत ही प्यारी सी मट्ठी। अभी उनसे बात हो रही थी तो आइए जानते हैं, उसके बाद आऊंगी कुछ मीठा बताने जो कि अंशिका का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अंशिका बताएंगी और फिर हम आपको बताएंगे आज के टिप ऑफ द डे। तो आइए सुनते हैं रंजना मैम की रेसिपी।
4: अब मैं जो हूँ, आपको आजकल फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, अभी आपके यहाँ देखिए रक्षाबंधन हुआ है, इसके बाद जन्माष्टमी है, कजरी तीज है और अब त्यौहार हमारे शुरू ही हो चुके हैं। तो हम लोग के घरों में जो है वो उड़द की दाल की कचौड़ी बहुत बनती है। अब तो लोग बाजार में बना बनाया मसाला ले लेते हैं, पर आप बाजार का मत लीजिए, घर का बनाया हुआ जो होता है मसाला वो अलग ही स्वाद देता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, एक प्याला धुली हुई उड़द ले लें, छिलका जिसका उतरा रहता उसको हम लोग धुली हुई उड़द कहते हैं, उसको आप ले लेंगी और भिगो देंगी। भिगोने के बाद अब हम लोग जैसे हैं सुबह भिगो दीजिए, शाम को बनाना है, उसके बाद शाम को उसको खूब अच्छे से धो करके और पानी निकाल के एक

किनारे रख देंगे। उसके बाद उसमें क्या लेंगे, अब हम इसमें भी हम गरम मसाला लेंगे। तो गरम मसाले में 2 चाय का चम्मच हम जीरा लेंगे, 1 चाय का चम्मच हम काली मिर्च लेंगे और 5-6 लौंग लेंगे, 2 छोटी इलायची लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे। और इसमें हम चक्री फूल नहीं डालते हैं, थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे। जावित्री इच्छा हो तो 1-2 धागे डाल दीजिए, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और खड़ा हुआ लाल मिर्च जो साबुत होता है 2 डाल देंगे। और हम इसके संग जो है वो कर लेंगे कि थोड़ी सी अदरक 1 इंच का टुकड़ा डालेंगे। और इन सबको पहले हम मिक्सी के जार में डालेंगे और 1 से 2 बार चर्न कर देंगे। चर्न करने से ये होगा कि ये थोड़ा थोड़ा दरदरा पिस जाएगा। और खड़ा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच। अब आप जो है जो हमने दाल निकाल के रखी है उसको इसी मसाले वाले दाल में डाल देंगे और दरदरा पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालेंगे, 1 चाय का चम्मच। उसमें 1/2 चाय का चम्मच हम हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद जो आपने ये दाल पीसी है मसाले के संग इसको कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद हम इसको निकालेंगे और हल्का हल्का भूनेंगे उसको। इसी समय नमक भी डाल देंगे और हरी मिर्च भी अपने अंदाज से डाल देंगे। और आप देखेंगे इसी समय नमक भी डाल देंगे तो जो ये है हमारा भुन जाएगा। दाल अब ना तो बह रही है ना बहुत कड़ी हो गई है, भरने लायक बहुत अच्छी बराबर तैयार हो गई है। अब आप क्या करेंगे, आप 2 कटोरी 2 प्याले जैसे जैसे जिससे नापा है, आप 2 प्याले गेहूं का आटा लेंगी और 1/2 प्याला उसमें मैदा मिला देंगी। अब आप इसमें थोड़ा सा तेल डालिएगा, हम तो ज़्यादातर मोइन में सरसों का तेल ही डालते हैं, तो 2 टेबल स्पून हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, नमक डाल देंगे और हम इसको सांध के रख देंगे। अब हम इसको बहुत कड़ा नहीं सानते हैं, थोड़ा सा गीला सानते हैं। गीला सान के हम 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। जब हमें बनाना होगा तब हम इसको खूब अच्छे से आटे को मल लेंगे। मल के छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। लोई जो हथेली पे हम तेल के सहायता से, अगर आप बना ले रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मैदे की सहायता से थोड़ा थोड़ा बड़ा करके हथेली पे फैला के थोड़ी थोड़ी दाल भर के आप गोला बना के पतला पतला बेल लीजिए। और मीडियम आंच पे आप इन कचौड़ियों को गुलाबी गुलाबी तल लीजिए और खुद भी खाइए, दूसरों को खिलाइए। ये कचौड़ियाँ बहुत ही सुंदर और बनती हैं, स्वाद में बहुत ही अच्छी होती है। बाजार में मसाले मिलते तो हैं कचौड़ी का मसाला या तैयार मसाला, पर जो आप ताज़ा बना रही हैं उसमें जो बात है वो उसमें नहीं मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट सुन लेते हैं भाई मीठा, क्योंकि जरूरी है मीठा भी, क्योंकि बहुत देर से वो पेंडिंग है और अभी आप लोगों ने मास्टर शेफ की भी सुनी सारी रेसिपीज। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला में होता है मीठा। आइए मीठा सुन लेते हैं।
5: बिल्कुल, आज दिन जो था वो थोड़ा मीठा और नमकीन।

0: वाला था तो रेसिपी भी लास्ट में हम मीठे की सुन लेते हैं, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी ड्राई फ्रूट की रबड़ी।
1: माय गॉड।
0: तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए खोया। खोया आपको ले लेना है एक कप।
1: बोला तो नहीं खोया खोया चांद खुला आसमान। अच्छा, आज हम कुछ बहके बहके नहीं लग रहे हैं तुम्हें। जी आगे।
0: बहके बहके से राज, बहके बहके से एहसास, तुम क्या जानो दिल का साज।
1: जी जी,
0: तो वैसा कुछ है। और इस खोया खोया होना कभी कभी बनता भी है। तो ये खोया वाला खोया नहीं था, ये खाने वाला खोया था। वो आपको एक कप ले लेना है, ठीक है। दूध ले लेना है आधा कप, लेकिन हल्का गुनगुना। चीनी का पाउडर आप ले लीजिएगा 2 बड़े चम्मच। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में आपको लेना है बादाम, काजू, पिस्ता, और ये सारे ही आपको ले लेने हैं 4-4 चम्मच, ठीक है। अब उसके बाद में इलायची पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच, और 4 से 5 केसर के धागे ले लेने हैं आपको। तो ये हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स। अब आइए बताते हैं कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना है, थोड़ा सा बड़ा और डीप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको खोआ जो लेना है वो उसमें कद्दूकस कर लेना है अच्छे से। फिर आपको इसमें चीनी का जो पाउडर है ना वो मिला देना है, और इसे अच्छी तरीके से आप चम्मच की सहायता से मिला करके एक साथ कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इसमें आपको गुनगुना दूध, केसर के धागे और थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है, जब तक कि ये रबड़ी जैसा ना बन जाए। जब ये पूरा रबड़ी जैसा बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको इसे गैस पे थोड़ी देर के लिए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्स 5 मिनट के लिए आपको इसे रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप गैस पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गाढ़ा होते होते होते होते वो पूरा रबड़ी जैसा हो जाएगा। तो जब लास्ट में, जिसे कहते हैं ना कि मसाले कैसे पता चलते हैं कि पक गए हैं, जब वो नीचे लगने लगते हैं, ठीक उसी तरह जब आपकी रबड़ी जो दूध और खोआ है वो नीचे लगने लगे, तो इट मीन्स कि आपकी रबड़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, तो बारीक कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता इसमें डालिए, इलायची पाउडर डालिए, और इसे डाल करके अच्छी तरीके से आप चला लीजिए। ये मिक्स एंड मैच हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फटाफट से जो है आपकी ड्राई फ्रूट रबड़ी अब तैयार है, लेकिन तैयार होने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना होता है। तो 15 मिनट आप इसे रेस्ट पे रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी एक कंटेनर लेना है, उसमें इसे अच्छी तरीके से सर्विंग बोल ले लीजिए, और उसमें इसे निकाल लीजिए, और अच्छे से ऊपर गुलाब की पंखुड़ी, कुछ पिस्ते के दाने और केसर के धागे लगाकर सर्व करिए। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो अब क्या होता है ना मैम कि अब रेडीमेड मिलती है इमरती, कि आप उसको केवल घर में लाइए, फ्राई कर लीजिए और बस वो चाशनी में डाल दीजिए तो रेडी हो जाती है। तो इसके लिए आपको चाशनी पहले से बना के रख लेनी है। रेडीमेड रबड़ी आप ले आइए, उसको फ्राई करिए चाशनी में 5 से 6 या जितनी भी आपको लगे कि आपकी फैमिली के लिए मतलब पूरी पड़ जाएंगी उतनी आप चाशनी में डाल के पहले से रखिए, रबड़ी रेडी करने के 10 मिनट पहले से। अब आपकी इमरती चाशनी से निकालिए, वो रेडी है, रबड़ी तो आपने बनाई ही है, बस रबड़ी इमरती खाएं और इंजॉय करें। मौसम भी बहुत प्यारा है,
1: क्या ही बता दें, इतनी गजब की ना कि माउथ वाटरिंग होने लगा, बहुत ही।
0: और किसी खास के साथ खाएंगे तो टेस्ट और बढ़ जाएगा,
1: वो अलग की बात है,
0: वैसे किसी को खिला भी सकते हैं,
1: वो अलग मैटर है, बट इतनी ज़्यादा टेस्टी तो मैंने, मुझे कभी नहीं मैंने देखा है। खैर चलिए, तो इस प्यारे से एहसास के साथ, इस मीठे से एहसास के साथ में हम यहाँ लेंगे एक मीठा वाला ब्रेक, एक प्यारे से गाने को सुनेंगे, और उसके बाद आएंगे आपके साथ में आपसे बाय बाय करने एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने। नहीं,
0: टिप ऑफ द डे।
1: टिप ऑफ ये होता है देखो, असर मीठे का असर, तो टिप ऑफ द डे के साथ में हम आपको आएंगे फिर से अभी, लेकिन इस प्यारे से गाने को आइए।

0: रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। यस एग्जैक्टली आ गए हैं आपसे बाय-बाय करने के लिए। तो आज का टिप ऑफ द डे, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा सा एंड एक मेरे पास टिप ऑफ द डे और भी है अंशिका। तो मैं सोच रही थी कि जाते जाते मैं बता दूं कि जब आप डोसा बनाते हैं घर में, अब तो हर चीज़ घर पे बनने लगी, इडली डोसा सांभर सब बनने लगा है, तो डोसे का जो बैटर होता है, जो घोल होता है, पीसते समय अगर उसमें एक मुट्ठी चावल मिला दें और डोसा बेहद ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। और मोस्ट टाइम पे क्या होता है कि सब लोग दाल को भिगो देते हैं फिर उसको पीस लेते हैं, तो उसमें आपने एक से दो चम्मच जो पीली वाली राई होती है ना, पीली वाली राई मिला देनी है, पीली वाली सरसों, पीली वाली सरसों नहीं, मेथी।
1: अच्छा मेथी,
0: हाँ, मेरे मतलब वो स्क्रीन पे आ रही थी वो, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा था। मेथी, पीली वाली मेथी को मिला देना है जब आप बैटर बना रहे हैं ना चावल और दाल का, तो आपने उसमें एक चम्मच या दो चम्मच, एक चम्मच पर्याप्त है, आपने उसमें मिला देना है मेथी का दाना। और उसके बाद में जब वो बन करके डोसा तैयार होगा ना, जब बनाइएगा तो हम लोग को भी खिलाइएगा।
1: बिल्कुल बनाइएगा, खिलाइएगा। और इन्हीं खाने पीने की बातों के साथ मुझे लगता है कि हमारा टाइम भी हो गया है।
0: अरे टाइम हो गया?
1: यस
0: मैम। आज तो पता ही नहीं चला, मतलब रेसिपीज होती हैं और पता ही नहीं चलता है, खाने पीने में ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों को तो इजाजत, हम कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

गुना यानी कि आपके कॉलिंग वाला प्रोग्राम। आप करते हैं कॉल, हम लेते हैं आपके डिमांडेड गाने, करते हैं ट्यून, साथ में करते हैं एंजॉय, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे पहली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। पहली फरमाइश जो हमारे पास आज आई है वो आई है रिजु जी की, और वो सुनना चाहते हैं भीड़ में तन्हाई में मुझे बस तुम याद आते हो। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा नगमा, इमरान हाशमी का सॉन्ग। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर आपकी फरमाइश। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

उदित जी और श्रेया ने मिलकर आवाज दी है इस गाने को। तुमसा नहीं देखा फिल्म 2004 में रिलीज किया गया था। रिजु जी की फरमाइश, भीड़ में तन्हाई में मुझे हर दफ़ा सिर्फ तुम ही नज़र आते हो, तुम ही याद आते हो, तुम ही दिखाई देते हो, और ऐसा सच में होता है। हम अपने पसंदीदा इंसान को हर एक जगह पर याद करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि हमारे पसंदीदा तो हमारे लिसनर्स ही हैं और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्जुनती मौजूद हैं और ऑफकोर्स ये चल रहा है आपका कॉलर ट्यून गोंडा। चैट बॉक्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मैसेज जो आया है वो रिजु जी का ही आया था, आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून आज मैम राधे राधे, गुड आफ्टरनून टू यू राधे राधे, कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड साथ ही आपने लिखा है कि जिंदगी की इस भीड़ में खुद को ढूंढता रहा, हर किसी को खुश किया, बस खुद को भूलता गया। अरे अरे ऐसा क्यों किया? वैसे ऐसा होता है, हम खुद को ही सेक्रीफाइस करते रहते हैं और एट द एंड यही निकल कर आता है कि जो हीरो है जो हीरोइन है वो तो खुद को ही सेक्रीफाइस करते हैं और लास्ट में मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए थोड़ा सा खुद से मोहब्बत जताइए, खुद को थोड़ा सेल्फ लव दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए और ऑफकोर्स आप अपनी प्रायोरिटी हैं, इस चीज़ को समझिए। एंड इसके बाद महेंद्र जी का मैसेज है, राजस्थान से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून आर्जुनती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलेज यून गोंडा में। बहुत जल्दी रहती हूँ मैम जी, कहाँ जाना है पता नहीं, हमको भी कहीं नहीं जाना है, हमको भी यही रहना है लेकिन आपकी फरमाइशों को पूरा करते रहना है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कर देते हैं। फिलहाल लिख रहे हैं अरविंद जी की बहुत तेज़ी से बोलती हैं उन्नति मैम, समझ नहीं आता क्या रिप्लाई करूँ, कभी कभी तो डर जाता हूँ, उली बाबा हमसे कोई डर भी जाता है और हम गाय साथ ऐसा हो जाता है, पता नहीं था। वेल ये सुन के मुझे खुश होना चाहिए क्या दुखी होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले मुझसे कोई डरा नहीं और जब डर गया है तो अब मैं सोच रही हूँ मैं खुश हो जाऊँ या उदास हो जाऊँ, बिकॉज ये डरने वाला कोई और नहीं मेरा लिसनर है। हाउ इज दिस पॉसिबल, आज तक मुझसे कोई भी नहीं डरा था। फिलहाल थोड़ा सा प्राउड फील कर लेते हैं हम खुद पर और थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हैं, ये मिक्स वाला इमोशन हो गया मेरा। एंड इसके बाद है, किसी की यादों में जीना भी जिंदगी का बड़ा दर्द है। ओ माय गॉड, फिलहाल किसकी यादों में जी रहे हैं, कौन आपको इतना परेशान कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी का दर्द बन चुका है। फिलहाल दर्द को भुला देते हैं क्योंकि बारिश में भीगने का वक्त आ गया है। अगली फरमाइश हमारे पास आई है अमित कुमार जी की और वो कहते हैं कि बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, तो आइए इन बरसात में किसी से मुलाकात कर लेते हैं और अगर किसी से मुलाकात नहीं होती है तो उनकी यादों से थोड़ा मिल लेते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉलेज गुना, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर आपकी अगली फरमाइश, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अलका जी और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। और यह फरमाइश थी हमारी अमित कुमार जी की। नदीम श्रवण का संगीत और समीर साहब ने दिए थे इस गाने को बोल। बरसात फिल्म जो कि 2005 में रिलीज़ की गई थी और नज़र आई थी इसमें आपके अपने पसंदीदा बॉबी देओल एंड प्रियंका चोपड़ा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं चैट बॉक्स में धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास लिख रहे हैं, उन्होंने जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। एंड नाजिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। अक्षय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। अरविंद जी ने लिखा है खुश हो जाइए, कम से कम कोई तो डर रहा है। जी हाँ, चलिए हम खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा लेते हैं और यहाँ नहीं मुस्कुराएंगे पीछे जाके मुस्कुराते हैं। एंड इसके बाद लिखा है वेरी गुड आफ्टरनून रॉकिंग उन्नति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। और इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं चांद जी हथियागढ़ से, आपका भी वेलकम करते हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो चांद बाबू जी का ही है और वो सुनना चाह रहे हैं ये गोटेदार लहंगा रिमिक्स सॉन्ग, रिमिक्स वर्जन। आप इंजॉय करते रहिए और हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, क्योंकि आपने कहा हम बहुत तेज बोलते हैं तो सोचा था इतने धीरे हो जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन विद राज्य उन्नति। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए आपकी फरमाइश 6393316429 पर भेजते रहिए।

बहुत शुक्रिया चांद बाबू जी की फरमाइश को इंजॉय करने के लिए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारी रीना शर्मा जी की है। और जैसा कि हमारा सवाल भी है, क्या रिमिक्स वर्जन अलाउ है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे चांद बाबू जी ने कई बार हमसे इस बात की रिक्वेस्ट की है, तो ये उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट था कि हम रिमिक्स वर्जन सॉन्ग प्ले कर रहे थे। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए कॉलेज गुना। अगली फरमाइश हमारी रीना शर्मा जी की आई है। लता जी की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं चलो साजन, जहाँ तक घटा चले। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है, बहुत ही प्यारा गाना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। आप इंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: लता जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे मेरे हमदम मेरे दोस्त से रीना शर्मा जी की फरमाइश। रीना शर्मा जी का हमें मैसेज भी मिल गया है और उन्होंने लिखा है, हेलो नदी मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप। आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। लेकिन हमें ये क्या पता चल रहा है कि आज हमारे लिसनर उस्मान खान जी का जन्म वाला दिन है, तो मेरी तरफ से यानी कि रेडियो ज्ञान असली की तरफ से हैप्पी बर्थडे उस्मान खान जी, आप कहाँ पर हैं, आपको बहुत सारे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करते हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है राजू टेलर्स जी की और वो सुनना चाह रहे हैं, तेरे मेरे प्यार में कितना दम है दुनिया को दिखलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही ऐलान आप करते रहिए। गोविंदा और दिव्या भारती पर फिल्माया गया गाना शोला और सबनम फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं शैलेंद्र सिंह और अलका जी की आवाज़ में। बप्पी लहरी है इसके म्यूजिक डायरेक्टर, यानी कि संगीत जो दिया है वो हमारे बप्पी लहरी साहब ने दिया है। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग पर, तब तक के लिए आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।
1: लेने तुझको हम तुझे लेके ही जाएंगे।

राजू जी की फरमाइश थी और शैलेंद्र सिंह अलका जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे शोला और शबनम फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना गोविंदा और दिव्या भारती पर फिल्माया गया सॉन्ग। एंड हमारे अरविंद जी लिख रहे हैं, जिसे अपना समझा वही पराया निकला, हर रिश्ता एक भ्रम था जो टूट कर बिखर गया। एंड जी इम्तियाज जी, मुझे आपका गाना मिल चुका है, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लिखा है हमारे अरविंद जी ने कि प्यार गहना और अपना टैलेंट छुपाकर रखना चाहिए, वक्त पर दिखाना चाहिए। जी हाँ, और वक्त डिसाइड करता है कि कब दिखाना है। फिलहाल के लिए ये बात सच है कि कुछ चीज़ें हमेशा लोगों से छुपा कर रखें, लेकिन वो कौन सी हैं ये आप ही खुद डिसाइड करने वाले हैं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग अरविंद मौर्य जी का ही है और सॉन्ग का नाम है प्यार आया प्यार आया, सज धज कर मेरा यार आया। संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया गाना, अलीशा जी की आवाज़ में आप इंजॉय करने जा रहे हैं। एंड साथ ही आवाज़ है आनंद राज आनंद की। आनंद राज आनंद ने ही इस गाने को बोल दिए हैं और देव कोहली साहब ने दिया है इस गाने को संगीत। तो इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, जो कि हमारे महेंद्र जी की और जानवी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

अरविंद कुमार, सॉरी अरविंद मौर्या जी की फरमाइश, और आप इंजॉय कर रहे हैं प्यार आया सच धज के मेरा यार आया। देव कोहली का संगीत है, आनंद राज आनंद का बोल और अलीशा प्लस आनंद राज आनंद का आवाज। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महेंद्र जी की, और महेंद्र जी ने फरमाइश की है हमारा दिल आपके पास है फिल्म से अलका जी और कुमार सानू की आवाज़ में तुमको देखा तो क्या ये हो गया। तो आइए इंजॉय करते हैं, बेहद ही रोमांटिक गाना हमारे पास आया है और महेंद्र जी से पूछते हैं क्या हो गया है आपको देखकर। फिलहाल इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून कुंडा स्टे ट्यून्ड।

महेंद्र जी की फरमाइश थी, जावेद अख्तर के लिखे बोल, संजीव दर्शन का संगीत और अलका जी कुमार सानू की आवाज। बहुत ही प्यारा गाना आप एंजॉय कर रहे थे, तुमको देखा तो क्या हो गया है। और इसी के साथ चैट बॉक्स में बताया गया है कि कुछ नहीं हुआ है, पुराने यारों के टाइम सुने थे ये गाने, अब वापस सुनता हूँ। ऑल राइट, और इसी के साथ लिस्टर आपको इनविटेशन मिली है अरविंद जी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप सब काफ़ी थक चुके होंगे तो क्यों ना आकर चाय पी लिया जाए। तो क्या ख्याल है, कौन कौन जा रहा है भैया अरविंद जी के यहाँ पे? हमको एड्रेस नहीं पता, नहीं तो हम पहुँच जाते। फिलहाल आइए चलते हैं, हम अपने अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और मौसम बहुत ही प्यारा है, मौसम से इंस्पायर्ड होकर ही हमारी जानवी जी ने आज के गाने की फरमाइश भी कर दी है कॉलर ट्यून गोंडा में। गाने का नाम है मस्ताना, मौसम है रंगीन है नज़ारा, दिल है तुम्हारा। अलका जी और कुमार सानू प्लस उदित नारायण की आवाज़ में आप एंजॉय करने जा रहे हैं समीर साहब के बोल और नदीम श्रवण का संगीत। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो उस वक्त की सबसे बेहतरीन ट्रियो ने इस गाने को गाया था। उदित नारायण, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में समीर साहब के बोल आपने एंजॉय किए। जानवी जी की फरमाइश थी, मस्ताना मौसम है, रंगीन है नजारा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और क्या कोई गैस कर सकता है अगली फरमाइश किसकी होने वाली है? हाँ हाँ हाँ, चलिए अगर आप गैस नहीं कर पा रहे तो हम ही आपको बता देते हैं। शारदा प्रसाद प्रजापति ब्रज रेडियो श्रोता मथुरा से हमें सुन रहे हैं और उन्होंने फरमाइश भेजी है एक ऐसे तड़कते भड़कते गाने की जिसको सुनने के बाद आपके भी हाथ पैर हिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज गाने का नाम है बलमा। खिलाड़ी 786 से एंजॉय करते रहिए। अक्षय कुमार पर फिल्माया गया सॉन्ग और ऑफकोर्स आपकी अपने पसंदीदा सिंगर की आवाज़ है। अब वो आवाज़ किन की है ये आप हमें बताएंगे चैट बॉक्स में।

सारदा प्रसाद प्रजापति की फरमाइश और आपने एंजॉय किया बलमा। म्यूजिक दिया है भाई साहब हमारे हिमेश रेशमिया जी ने और आवाज है श्रेया जी की, इन्हीं के साथ है श्री रामचंद्रा जी की आवाज। फिलहाल आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे रईस साहब की है और उनसे पहले जो फरमाइश है वो है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की। बहुत प्यार आया है तुम पर और इस गाने को आप एंजॉय करने जा रहे हैं। तड़कते भड़कते गाने के बाद बेहद ही रोमांटिक गाने की फरमाइश, तो आइए एंजॉय करते हैं और मिलते हैं लेकर के अगला सॉन्ग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश थी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की, और घड़ी के इशारे को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं इनकी फरमाइश पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ धर्मेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं, नमस्ते आशुमती मैम, नमस्ते, आपको भी आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून कोंडा में। एंड इसके बाद लिखा है, क्या सॉन्ग है भैया, सॉन्ग तो हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश थी। एंड विश्वजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सॉन्ग बस कुछ ही देर में आ रहा है, बस जरा इंतजार कीजिए। नाजिया जी का भी सवाल आ गया है, उन्नति मैम अब हमारा गाना थक गया हुई बजा दे। ओके, बजा देंगे हम आपका गाना भी, लेकिन थका नहीं है, बस आराम से कहीं बैठा हुआ है, और बहुत जल्द आपका गाना आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए दिल तू ही बता। बच्चों की फिल्मों के बीच में एक ज़बरदस्त रोमांटिक गाने को पेश करने का जो अंदाज़ है बॉलीवुड का, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए था और शायद आगे भी ऐसे ही रहता रहेगा। आई होप बॉलीवुड आगे भी बच्चों के लिए कुछ ऐसी फिल्में बनाती रहे जिसको देखने के बाद आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए और कुछ आपको भी याद आए। फिलहाल याद के लिए मुझे पता है कि जुबिन गर्ग की आवाज़ में आप इस गाने को सुनेंगे तो उन्हें ज़रूर याद करेंगे। इन्जॉय करते रहिए।

रही साहब की फरमाइश थी, अलीशा और जुबिन गर्ग की आवाज में आपने एंजॉय किया क्रिस थ्री से दिल तू ही बता। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है निशा जी की और उन्होंने फरमाइश की है अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, यानी प्रिंस फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज में तेरे लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली फरमाइश होने वाली है नासिया जी की, रेनू तिवारी जी की, विश्वजीत जी की और उस्मान खान जिनका जन्मदिन है उनकी, और उनके लिए स्पेशल सॉन्ग जो हमारे इम्तियाज जी ने कहा है। स्टे ट्यून्ड।

निशा जी की फरमाइश के बाद आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं नाजिया जी की फरमाइश। और उन्होंने कहा था कि दिल फिल्म से कोई भी गाना उनके लिए बजा दिया जाए, तो आइए एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मुझे नींद ना आए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

दासी जी की फरमाइश और हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी का पसंदीदा गाना वही निकला। फिलहाल के लिए आप सुन रहे रेनू तिवारी जी की फरमाइश और वक्त है हमारे अगले सॉन्ग को ट्यून करने का, हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने का। अगला सॉन्ग है हमारे पास विश्वजीत जी का, जिन्होंने फरमाइश की है आपके बेहतरीन गाने की। 90s का बहुत ही सैड सॉन्ग मन फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं, चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

फिलहाल ये गाना जो आप एंजॉय कर रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में था, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और ये गाना सुनने के बाद हमारे कुछ लिसनर सैड भी हो चुके हैं, लेकिन सैड नहीं होना है, फिलहाल विश्वजीत जी की फरमाइश थी एंड संजीव दर्शन ने संगीत दिया था और समीर साहब ने दिए थे बोल, बहुत ही प्यारी फरमाइश। और इसी के साथ आइए चलते हैं, थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इम्तियाज जी की तरफ से उस्मान खान को डेडिकेटेड सॉन्ग आया है, ये वाला छोटे तरफ बर्थडे है। जी हाँ, तो आप एंजॉय कीजिए छोटे जी, और ऑफ कोर्स एक बार वापस से हैप्पी वाला बर्थडे।

इम्तियाज जी की फरमाइश थी और उस्मान खान जी को डेडिकेटेड, एंड सेम फरमाइश हमारे उस्मान खान जी की भी थी। फिलहाल अब इसी गाने के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, और जाते जाते धर्मेश जी की तरफ से एक मैसेज आया है जो हम पढ़ लेते हैं। और मैसेज कुछ इस तरह से है कि आरजी उन्नति जी यूं ही लोगों के दिलों को बहलाती रहिए, अपनी प्यारी आवाज से हर चेहरे पर मुस्कान लाती रहिए, आपकी मौजूदगी से महकता रहे हमेशा ये शो, बस इसी तरह आप हमारे बीच रहकर शो की रौनक बढ़ाती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा है, और उसका स्क्रीनशॉट पे अपने पास जरूर रखने वाली हूँ। फिलहाल के लिए ये डेडिकेटेड सॉन्ग आप सभी को, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों की फरमाइशें हम तक नहीं पहुंची हैं, हमारे धर्मेश जी भी बहुत लेट आए थे, तो अब आपसे चाहूंगी इजाजत इसी सॉन्ग के साथ, हम तुम्हें चाहते हैं। और आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

लाके ब्रह्म रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊपर चला के कटी।

0: मरुस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन सोपान, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: अब दे

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 91.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान फिर से मौजूद है आपके अपने पसंदीदा शो गोधूली में, उसी शो में जिसमें हम हर शाम गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, यानी कि वो अपने कार्यक्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। और वैसे भी हमारा मानना तो यही है कि भाई जिससे जो भी सीखने को मिले वो तो लेते ही जाओ, लेकिन साथ ही साथ जब बात हेल्थ की आती है, स्वास्थ्य की आती है, तो ये फिक्रमंद होने वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल ने हमको ऐसा घुमा दिया है कि हमारे इतने कमाए हुए पैसे भी जो है वो मिनटों में खर्च हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है कि भाई इतनी बीमारियों में अगर हमारा पैसा ऐसे ही जाता रहेगा तो हमने जो दो फ्लैट और सोचा था लेने का उसका क्या होगा, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लान होते हैं। बहरहाल, तो आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, आइए उनके बारे में बताते हैं। दरअसल आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गोंडा। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सो मच।
1: कैसी हैं आप? अपना हालचाल हमारे श्रोताओं को बता दें।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: आप ठीक है? कैसे नहीं ठीक होंगे, आप तो आयुर्वेद हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं, और जाहिर सी बात है आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं शहद जैसी चीजें आप खाते हैं, कई साल जो है वो लाइफ बढ़ा देता है। बहरहाल, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा सा कुछ एक संक्षिप्त सा विवरण अपने बारे में दें, ताकि हमारे श्रोता जान पाए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ की रहने वाली हैं, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में।
2: मैं लखनऊ में पैदा हुई, प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई, लखनऊ कॉलेज से
1: जी।
2: इंटर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीएससी भी मैंने वहीं से किया। उसके बाद मैंने बीएमएस किया राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत से, फिर मैंने एमडी की शिक्षा ली एनआईए जयपुर से, बस उसके बाद मैं यहाँ गोंडा में आ गई और जॉब।
1: तो गोंडा आपका ससुराल है, राइट?
2: जी जी।
1: अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोंडा से लखनऊ की दूरी भी नहीं है, और अब तो रोड भी फोर लेन हो गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि अपने बारे में आप हमको और हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताइए कि जैसे सभी का अपना एक एम्बिशन होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, किसी रिश्तेदार को देखते हैं किसी अच्छी पोस्ट पे, तो हमको लगता है कि शायद बड़े होकर के हम भी इनके जैसे बनेंगे, लोग बहुत इनको चाहते हैं, मानते हैं। एक होता है कि आपने कुछ ऐसे समाज में निकलते हुए देखा जहां पे आपको लगी कि नहीं, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है हमको कार्य करने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, तो ऐसा कोई आपके जहन में विचार आया, क्या हुआ, मतलब आपने एम्बिशन कैसे तय किया कि आपको करना क्या है लाइफ में?
2: एम्बिशन मैंने, मेरे पिताजी मुझसे हमेशा कहते थे कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा, और मैंने और भी डॉक्टर्स को देखा

0: और उससे आप पहले से ही जुड़ी रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फैमिली में भी कोई आपके डॉक्टर था क्या जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली थी? कोई दूर दूर तक कोई नहीं था?
1: कोई नहीं।
0: अच्छा, पिताजी का क्या कहना था? क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमको गाइड करते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो कभी कुछ ऐसा कहा गया कि आपको ये करना है या आपको खुला छोड़ा गया कि नहीं आपको जो लगता है वो आपको करना चाहिए?
1: नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी पिताजी की भी तरफ से या फैमिली में किसी की भी तरफ से, लेकिन बस मेहनत के लिए पिताजी हमेशा शुरू से बचपन से मुझे प्रेरित करते रहते थे कि तुम मेहनत करती रहो, कभी मेहनत बिगाड़ नहीं जाती।
0: ओके, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको दूसरी तरफ की भी चीजें दिखाते और बताते हैं, तो किसी ने ये आपको बताया नहीं कि भाई इस पे बहुत पैसे तो है नहीं, आयुर्वेद जो है बहुत पुराना हो चुका है, और अभी क्या है कि आप एलोपैथ में जाते हो, आप अंग्रेजी उसमें आते हो, तो बहुत सारे स्कोप है, ऐसा कभी किसी ने कहा है? तो फिर आपने उसको क्या जवाब दिया है?
1: ऐसा कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा नहीं।
0: अच्छा, फ्रेंड्स ने नहीं कहा, नहीं, किसी और ने कभी?
1: हाँ, ये तो समाज में है कि रुझान उधर ही है, मॉडर्न साइंस की तरफ, लेकिन मेरा रुझान इधर ही है, आयुर्वेद की तरफ।
0: मतलब ये कि आपको अपने जो कार्यक्षेत्र है या आपके एम्बिशन को लेकर क्लैरिटी थी कि आपको करना तो यही है।
1: हाँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हम आम लोग हैं, सभी का जो ध्यान है, इसका जो रुझान है, अब वापस से आयुर्वेद की तरफ हम आ रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यही अब हमको वापस से एक स्वस्थ समाज दे सकती है, और ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बचपन से किस तरह से थी आप? पढ़ने में बहुत अच्छी थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप क्या पार्टिसिपेट करती थी या नहीं करती थी, क्या था आपके साथ में?
1: पढ़ने में अच्छी थी, स्पोर्ट्स जैसे नॉर्मली पार्क में बच्चे खेलते हैं ऐसी, अदर कोई ऐसा स्पोर्ट्स में नहीं।
0: अच्छा, स्पोर्ट्स में था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमेशा से स्कूल में कराई जाती रही, उसमें कितना आपका पार्टिसिपेशन रहता था? उसमें नहीं करते थे आप? ओके, खेलने में कितना बिलीव करते थे?
1: खेलते बहुत थे।
0: मुझे लगता है कि भाई वो जो कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन खाली पढ़ने लिखने से बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो खेलते रहना कूदते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी ये तो आयुर्वेद के नियमों में से एक है, व्यायाम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा पार्ट है। राइट, तो भाई हमने जान लिया डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आखिर कहाँ की है, कहाँ पैदाइश हुई आपकी, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपके एम्बिशन के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। सो अभी चूंकि हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आज आपसे चाहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे समाज के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। तो पहला, अगर आपने इतनी तारीफ कर दी है ऑफकोर्स आयुर्वेद को लेकर के, तो आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो आज के दौर में ये लोगों के लिए और एक पैथी के रूप में देखा जाए तो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना कारगर है आयुर्वेद?
1: 100% सिग्निफिकेंट।
0: 100% दावा बहुत बड़ा है, सोच लीजिए। ओके,
1: आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है
0: जी।
1: एक आयु प्लस एक वेद। आयु का मतलब है लाइफ, वेद का मतलब है जानना, मतलब कि आप लाइफ को कैसे जिए ये जानना, यही जीने की कला कैसी होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद में सुबह से लेकर शाम तक का रजीम बताया गया है, दिनचर्या, तो दो महीने पे ऋतु बदलती रहती है, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, सुबह हमें कब उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त से, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप तब भी नहीं उठ रहे हैं तब भी 5 से 6 के बीच तो आपको उठ ही जाना चाहिए। अगर आप इस समय नहीं उठ रहे हैं तो आपको ये वात का काल होता है।
0: वात का काल, इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे
1: वात से आपके कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप इस समय पे उठ रहे हैं तो आपका पेट आराम से साफ हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है।
0: ओके, मतलब हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताया कि अगर हम जैसे सूर्योदय से पहले उठते हैं तो वात का दोष कहने का सेंस ये है कि जो ऑफकोर्स वात से जुड़े हुए जो रोग हैं, जो बीमारी है, वो नहीं होंगी। और अक्सर ये देखा गया अब लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गैस की होती है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आपने सुबह की स्टार्टिंग तो बता दी, उसके बाद आयुर्वेद कैसे कैसे क्या बताता है?
1: उसके बाद आप सुबह उठ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको नाश्ता कैसा लेना, आहार कैसा लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, ये सब

0: बताता है। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, तीन तरीके के आहार बताए गए हैं। अगर आप मौसमी फल, सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब ले रहे हैं तो ये सात्विक आहार में आ गया। राजसिक आहार में जैसे कड़वे, खट्टे, ज्यादा नमकीन ये सब ले रहे हैं तो ये राजसिक आहार में आया। तामसिक में जैसे कि आप बासी ले रहे हैं या ये जैसे ये पिज्जा ये सब खमीर उठा हुआ जंक फूड ये सब तामसिक आहार में आएगा। तामसिक आहार हमें आलस से प्रदान करता है, पूरा लेथार्जिनेस हमें महसूस होगा। सात्विक हमें एक्टिव बनाएगा। राजसिक से आप सोच लीजिए कि आप जब ऐसा खाना खा रहे हैं तो आपको कैसा गुस्सा आएगा, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तो अपने आप में है कि कैसी डिजीज होंगी ऐसा खाना खाने से।
1: अच्छा, खाने से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट याद आया। अक्सर मैंने कई बार रील्स में भी देखा है, कई लोगों ने बताया है, आज तक हम ये सुनते चले आए हैं कि बादाम खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है, और अखरोट खाने से दिमाग के लिए बेहतर होता है। और बताइए क्या कि उस खाने की चीज का शेप देखिए और अपने उन अंगों से मिलाइए, तो ये कितना सत्य है?
0: ये सत्य है। जैसे अनार के दाने हैं, दांत जैसा है तो उसको आप खाइए। राजमी का शेप किडनी के तरीके है तो वो उसको फायदा करेगा।
1: अच्छा।
0: अखरोट का ब्रेन शेप में है तो उसको फायदा करता है। तो ये सब चीजें सत्य है,
1: मतलब ये सत्य है, ये सच में वर्क करता है।
0: ये सच में वर्क करता
1: है। वाओ, क्या बात है। पेट के लिए क्या खाया जाता है?
0: पेट के लिए तो अब त्रिफला का सेवन करते हैं।
1: त्रिफला
0: का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है पेट के लिए। बाकी लीवर डिजीज में अलग अलग तरीके की चीजें हैं
1: जी।
0: हाँ, पुनर्नवा मंडूर है, पुनर्नवाष्टकवात है, ये सब दवाइयों का सेवन करते हैं।
1: कई लोग शुगर के लिए भी बताया जाता है कि नीम की पत्तियां खाते हैं। उसमें काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है उसके लिए। ओके, तो मतलब आपने ये इस बात पे प्रमाणित किया है कि कहीं ना कहीं जो हमारा बॉडी शेप होते हैं अंगों का, उसी तरह का जो खाने का शेप होता है, जैसा कि अभी आपने भी एग्जांपल दिया कि बादाम है, अखरोट है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को खाने से उस अंग को भी फायदा होता है। और ये हम बचपन से भी सुनते चले आए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी है कि भाई आयुर्वेद के इतने सारे नियम हैं और इन नियमों को अगर मुझे लगता है फॉलो किया जाए तो सच में कितनी सारी बीमारियां जो है उसको ऑफ कोर्स हम वैसे ही दूर कर सकते हैं। आपने सोने का बताया, अभी हम देख रहे हैं कि काफी बदलते दौर में लोगों के सोने का टाइम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी लाइफस्टाइल काफी चेंज हुई है। लेकिन फिलहाल अभी बस हम चाहेंगे कि इसी बात पे आप बताएं कि देर से सोने के क्या नुकसान है और आयुर्वेद में इसको लेकर के क्या बताया गया है, हमारा डिनर किस वक्त होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ डिनर 11-12 बजे तक भी हो रहा है, आपका क्या मानना है?
0: ये बहुत खतरनाक है जो डिनर इतनी देर में हो रहा है। हमारे यहाँ रात के खाने का समय बताया गया है सूर्यास्त से पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे बाहर का यत ब्रह्मांडे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में हमारा अग्नि का कार्य है वैसा ही हमारे पेट में है। तो जब बाहर की अग्नि ही कम हो जाएगी तो हमारे अंदर की भी अग्नि वर्क नहीं करेगी, इसलिए सूर्यास्त से पहले पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए रात का। उसी के अनुसार हमें रात में सो भी जाना चाहिए जल्दी। जब हम देर से सोते हैं तो फिर हम देर से उठेंगे तो फिर वही सारी प्रॉब्लम्स,
1: मतलब वो चक्र वही टूटेगा,
0: चक्र वो चलता रहेगा। और रात की स्लीप, अगर हमारी क्वालिटी स्लीप नहीं है तो हमारे एंजाइम्स, हॉर्मोन्स सही से सिक्रीट नहीं होंगे और आपका जो आपने खाया है वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये सब कुछ
1: मतलब एक चक्र है जिसे हमें फॉलो करना है।
0: हाँ,
1: करेक्ट। तो एक एड आता था पोलियो का और उसमें अमिताभ बच्चन बोलते भी थे कि अगर एक भी बच्चा छूटा मानो सारा चक्र टूटा। तो मुझे लगता है कि एक भी टाइम का खाना अगर देर करा या अगर गलत खाया तरीके से तो वो चक्र जो है दिन का वो टूट सकता है। एक और बात, उसके बाद हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चूंकि बताया तो ये जाता है कि आप नाश्ता सबसे हैवी कीजिए, लंच थोड़ा सा कम और रात का खाना उससे भी कम, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकली, इवन मेरे साथ भी है कि सुबह का सबसे कम होता है, दोपहर का उससे ज्यादा और रात का सबसे ज्यादा होता है। सारी दावतें, सारे फंक्शंस रात में होते हैं, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे?
0: ये बिल्कुल सही आपने बताया कि सुबह का नाश्ता कहते हैं कि राजा की तरह, दोपहर का खाना पता नहीं
1: नॉर्मल आदमी की तरह,
0: नॉर्मल आदमी की तरह, और रात का भिखारी की तरह,
1: भिखारी की तरह
0: ऐसे खाना चाहिए। हम उल्टा चल रहे हैं क्योंकि सुबह हमारा नाश्ता भागते दौड़ते होता रहता है, खड़े खड़े हम ले रहे हैं, दिन का नाश्ता टिफिन ले जा रहे हैं या कैसे भी हो रहा है, रात में जब हम फ्री होते हैं तो पूरा चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ लेकर के बैठते हैं, जबकि हमें रात में बहुत हल्का बहुत लघु भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है कि आप अपने गट के 4 पार्ट्स करिए और 2 पार्ट्स सॉलिड 1 लिक्विड और 1 को आपको फ्री छोड़ना चाहिए, तब आपका डाइजेशन सही से होगा। लेकिन हम इसका पालन नहीं करते
1: एग्जैक्टली सही बात है। अगर मान लीजिए कि हम 2 रोटी खा रहे हैं रात में एक एग्जांपल के तौर पे, और 2 रोटी में बहुत अच्छा खासा पेट मतलब भर ही जाता है पूरा, तो किस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं अगर हम मेजरमेंट करते हैं? एक ही रोटी मान के चले?
0: हाँ, एक ही रोटी
1: हाफ लगभग।
0: हाँ
1: जी, तो ये मुझे लगता है श्रोताओं आपको भी ये बात समझ में आई होगी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई लगभग आधा भोजन ही करना है ताकि वो डाइजेस्ट इजीली कर पाए, यानी आराम से वो पच जाए, क्योंकि पाचन संबंधी प्रॉब्लम ही हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाती है। बहरहाल इस तरह की बड़ी ही दिलचस्प बातें जो है वो चल रही है और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो चलिए म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से आते, तब तक के लिए इस गाने को एंजॉय करिए, सुनते रहिए गोंडा वाला FM रेडियो 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान। आप सुन रहे हैं अपना इवनिंग का फेवरेट वाला शो गोधुली, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, जो कि स्टेट आयुर्वेदिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी आपसे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की थी, और आने के बाद मेरे जहन में एक ख्याल आया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था मॉर्निंग को लेकर के, कि मॉर्निंग की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा, बरबस ही मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हाँ, सुबह उठ करके कुछ देर जस्ट बैठे रहो और कुछ भी ना करो, मतलब एक स्लो सी शुरुआत पे हम लोग बात कर रहे थे। और एक चीज फिर मुझे अभी स्ट्राइक किया कि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये जो जॉब को लेकर के, लोगों से मिलने को लेकर के ह्यूमन साइकोलॉजी के रिगार्डिंग बोला जाता है, क्या ये हमारे दिनचर्या पे भी लागू होता है कि सुबह की शुरुआत जैसी होती है उसी तरह पूरा दिन फिर चलता चला जाता है, इसके बारे में बताएं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सुबह हमें थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन के लिए ज़रूर समय देना चाहिए। सबसे पहले उठ करके हमें योग, प्राणायाम, जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छे हैं ये सब। उसके बाद 10 मिनट आप मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत करो, थॉट से फ्री करिए, फिर आपका दिन अच्छा जाएगा
4: जी। वैसे तो आपने कहा कि स्ट्रेस के लिए बेहतर है, मुझे लगता है कि स्ट्रेस हमारे बाकी कामों की वजह से ही है, मतलब हम इतना ज्यादा अलग लाइफस्टाइल में आ गए हैं इसीलिए स्ट्रेस है। स्ट्रेस के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस एक अच्छी सी शुरुआत करना है आपके साथ में। तो मुझे तो यहाँ इवन ये भी लगता है कि हम सांस लेने तक भूल गए, जो सच है। तो बच्चों से सीखा जा सकता है कि किस तरह गहरी सांसें लिया जाता है, और हमको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। तो खैर, ये एक अच्छी शुरुआत की बात हुई, किस तरह से अगर मॉर्निंग की शुरुआत आप बेहतर करते हैं तो उसी पे आपकी दोपहर, आपका, आपकी शाम, आपका दिन और आपकी रात तक का जो पूरा टाइम होता है वो उसी के अकॉर्डिंगली चलता चला जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कहते हैं ना, हमारा मूड खराब हो गया तो फिर पूरे दिन हम उसी फीलिंग के साथ रहते हैं। तो इसके साथ साथ, चूंकि एक और, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि आयुर्वेद में अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं, तो आयुर्वेद का तरीका क्या है इलाज करने का? सबसे बेसिक बात पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा।
5: आयुर्वेद में इलाज हम दो तरीके से करते हैं, एक शोधन चिकित्सा और एक शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा को हम समझ सकते हैं पंचकर्मा से। पंचकर्मा में आता है वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण। वस्ति में जैसे कटिवस्ति हम देते हैं, जैसे लंबर पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ग्रीवावस्ति हम एक तेल भर के रखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम रखते हैं गले पे, उसमें फिर तेल भरते हैं, फिर उसको हटाते हैं, ये वस्ति कहलाता है
4: जी।
5: तो ग्रीवावस्ति सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके लिए हम जानुवस्ति देते हैं, ये सब पंचकर्मा में आता है। और हम मेडिसिन से जो ट्रीट करते हैं तो वो शमन चिकित्सा में आता है।
4: अच्छा, तो आपने कहा एक शोधन चिकित्सा है पद्धति,
5: हाँ।
4: एक शमन चिकित्सा पद्धति है,
5: हाँ।
4: यानी दो तरीके आपने बताए,
5: हाँ।
4: ओके, तो बेसिकली डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ये दो तरह से जो है वो आयुर्वेद में लोगों का उपचार किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की आपने बीमारियों को बताया, ये भी देखा जा रहा है कि लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। शोधन की आपने बात कही, शोधन कितना कारगर होता है? कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, शरीर के अंदर तो दवा जा नहीं रही है, तो फिर ये फायदा ऊपर ऊपर जो तरीके हम शोधन के तरीके अपना रहे हैं उससे कैसे हो सकता है? इसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से ये कारगर होता है?
5: शोधन में दवा हमारे अंदर जाती है, शरीर में भी जाती है, वो मसाज के तरीके हो या हम अंदर दे रहे हैं उसको, बाई माउथ निकाल रहे हैं या बाई एनल रीजन निकाल रहे हैं, तो वो दवा अंदर जाती है और बहुत कारगर है, क्योंकि मेजर टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इसके थ्रू निकल जाते हैं हमारे शरीर, दवाइयों से धीरे धीरे निकलते हैं बट इसके थ्रू हमारे यहाँ जल्दी से निकल जाते हैं।
4: अच्छा, हाँ, तो ये तो काफी कारगर है और मुझे लगता है कि भाई अब आपको भी समझ में आ गया है कि आयुर्वेद जो है वो दो तरह से चलता है, दो तरह से ट्रीटमेंट कराता है, और पहला आपने बताया शोधन और दूसरा बताया शमन, और ये दोनों ही तरीके काफी ज्यादा कारगर माने जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये होम्योपैथ का भाई बहन ऐसे लगते हैं, मतलब स्लो वर्क करते हैं। अगर हम असर की बात करते हैं तो ऐसा बताया कि धीरे धीरे काम करता है आयुर्वेद, कितना धीरे काम करता है? और जब बात आती है धीरे काम करने की, तो देखिए बीमारियों पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सी बीमारी है, क्योंकि कुछ बीमारियों में हमको बहुत जल्दी चाहिए होता है रिजल्ट, उसमें टाइम बहुत नहीं होता है, बट हाँ कुछ का हम बहुत लॉन्ग टर्म में आराम से जा करके उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिसे कहते हैं जड़ से खत्म कर देते हैं। तो पहले ये आप हमको बताइए कितना टाइम लेती है, कितना धीरे धीरे असर करती है?
5: धीरे असर करती है लेकिन इतना भी धीरे नहीं करती है आयुर्वेद, क्योंकि अगर हमें पैथोजेनेसिस सही से हम समझ के कर रहे हैं तो हमें विद इन 3-4 डोज में ही असर आने लगता है, ये पेशेंट्स को खुद पता चलता है। अब ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि अब इतना टाइम नहीं लगता है आयुर्वेद में भी,
4: मतलब इतना टाइम भी नहीं लगता है
5: नहीं जितना लोग सोचते हैं।
4: मुझे एक चीज ये भी लगती है डॉक्टर साहब कि लोग जो है थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से दवाएं जो है वो खुद ही स्किप कर देते हैं बीच में, शायद इस वजह से और भी टाइम लगता है, एक वजह हो सकती है।
5: हाँ ये भी हो सकती है, बट अगर हम सही से ले रहे हैं तो हमें फायदा बहुत जल्दी महसूस होता है।
4: अच्छा, आज की जेन ज़ी तो कहती कि भाई इसमें टेस्ट बड़े खराब होते हैं।
5: ये तो इसके साथ तो हम नहीं कर सकते हो,
4: मतलब इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता,
5: समझौता नहीं कर सकते इसके साथ,
4: क्योंकि फिर इसके फायदे फिर नहीं रह जाएंगे ना। हाँ। तो इसमें आप टेस्ट नहीं डाल सकते,
5: टेस्ट नहीं डाल सकते,
4: मतलब एक चीज ले लो, चाहे टेस्ट ले लो चाहे हेल्थ ले लो,
5: औषधि कड़वी होती है ये तो मानी बात है।
4: नहीं तो ये भी कहते सच्चाई भी कड़वी होती है। तो जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि भाई देखिए टेस्ट की जहां तक बात रही, तो क्योंकि इसकी पीछे वजह ही है कि हम नेचुरल फॉर्म में इसमें ज्यादातर चीजें लेते हैं, और जो जिस टेस्ट का है कुदरत ने बनाया है वो टेस्ट तो आएगा ही आएगा। अब भले ही हमने पिज्जा खा करके अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर दिया हो, लेकिन अब टेस्ट तो वही होने वाला है। तो आपने बताया कि आयुर्वेद में जो है वो ऐसे कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कहीं ना कहीं अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं और उनका अपना टेस्ट होता है, तो वो तो लोगों को बेयर करना पड़ेगा। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो लोगों को अब समझ में आ गया है। डॉक्टर साहब, चूंकि बीच में कोविड आया था और कोविड बड़ा भयावह रहा, हमने पहली जो वेव आई उसमें देखा कि काफी लोग डरे हुए थे, दूसरे में लगा कि तो बहुत आराम से पार हो जाएगी, लेकिन दूसरे में उल्टा ये हुआ कि डेथ्स बहुत ज्यादा हो गई और हर कोई काफी डरने लगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा सबको होने लगे, कंजेशन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस हवा को हम लोग फ्री में पाते हैं उसकी कीमत समझ में आई, ऑक्सीजन किस तरह लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, सोर्स लगाने पड़ रहे थे, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, और लगातार हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा एंगेज थे कि हर किसी को एडमिट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुल मिलाकर के बहुत भयावह दौर था वो। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, कोई स्टेटस लगाए हुए है, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है कि भाई विटामिन सी का इस्तेमाल करना है, नींबू लेना है और इस तरह की दवाइयों को लेना, यानी आयुर्वेद से जुड़ी हुई कई सारी जो घरेलू चीजें होती हैं उसका बड़ा प्रचार प्रसार किया गया, इसने बड़ा वर्क किया, इसको लेकर जरा हमको बताएं कि आखिर किस तरह से कोविड जैसी महामारी में कारगर साबित हुआ तो आयुर्वेद बहुत हुआ।
5: आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस से विकार प्रशमनम च, मतलब कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और अगर आतुर हो गया है, बीमार हो गया है, तो आप उसके विकार का शमन करो। तो कोविड में ये जैसे कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई भी दवा नहीं थी, तो हमें उस समय हमने इम्यूनिटी बूस्ट करके ही बहुत अच्छा वर्क किया। इम्यूनिटी बूस्ट करने में जैसे आयुष क्वाथ है, संशमनी वटी है, गिलोय का काढ़ा, उस समय बहुत सब लोग ले करके ही अपनी इम्यूनिटी सही कर रहे थे, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला।
4: इवन मैंने कई डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया, गोंडा के ही काफी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थी, और उन्होंने खुद कहा कि उनके हॉस्पिटल में भी उन्होंने अपने स्टाफ को काढ़ा ही दिया गया टोटल टाइम, क्योंकि उस वक्त क्या होता था डर कि डॉक्टर्स सबसे ज्यादा रिस्क एरिया में आते थे, वो पेशेंट्स को डील कर रहे थे जहां सीधे सीधे उनको भी इन्फेक्ट होने का खतरा था। इवन कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई इसमें, कई डॉक्टर्स ने, और उसी वक्त ये काढ़ा काम आ रहा था। तो महामारी में तो हमने इसका असर देख लिया काढ़े का। क्या लगता है कि जैसे, क्योंकि हमने देखा है बीमारियों की अगर बात करें तो फीवर होना एक बहुत आम सी बात है, यानी ठंडा गर्म होता है फीवर हो जाता है, जुकाम भी आम सी बात है, लेकिन लोग सीधे चले जाते हैं अंग्रेजी दवा की तरफ। मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी दवाओं के एक्सपर्ट्स उसके डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज के लिए अगर खाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो नहीं वर्क करेगी। और फिलहाल रिसर्च में जो मैंने अभी लास्ट में पढ़ा है कि ऐसे दौर आने वाला है 2035 के आसपास तक, जो अच्छे खासे लोगों पे अब एंटीबॉडीज जो है वो नहीं वर्क कर पा रही है, यानी एंटी जो दवाएं दी जाती है वो नहीं वर्क कर पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारियों ने भी तोड़ निकाल लिया है उसका तोड़। तो इसको देखते हुए आप आयुर्वेद के लिहाज से क्या रिकमेंड करती हैं कि अगर छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो उसको घर पे किस तरह से हम सही कर सकते हैं?
5: कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
4: जी,
5: अगर हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, अपनी दिनचर्या को हम अच्छी रखेंगे, तो हम छोटी छोटी बीमारियों से नहीं ग्रसित होंगे। जैसे ये आप बता रहे हैं जुखाम, खांसी, इन सबकी बहुत जल्दी हो रही है प्रॉब्लम। अगर हम सुबह उठ के योग, कपाल अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब करेंगे, और एक आता है नस्य, हमारे में प्रतिमर्श नस्य कहा जाता है, नाक में एक एक बूंद आपको डालना है, इससे आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन अब यही है कि हम लेते नहीं हैं, जब तक कोरोना जैसी महामारी तक बहुत प्रॉब्लम नहीं आ जाती तब तक हम ये सब लेना नहीं चाहते।
4: Correct.
5: हैं काढ़ा, जैसे भी आपको मौसम चेंज हो, आप पहले के लोग लेने लगते थे
4: जी।
5: अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च, दालचीनी, ये तो सारे स्पाइसेस हमारे घर में ही,
4: घर में ही,
5: और ये सब एक आयुर्वेद का अंग है। सबसे पहले यही कहा जाता था कि हमारा किचन सबसे बड़ा हमारा वैद्यशाला है एक तरीके की।
4: बिल्कुल,
5: लेकिन अब हम तुरंत वही तुरंत हम मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं।
4: अच्छा, जैसे लोगों को लगता है कि भाई दादा दादी जो कह रहे हैं क्या ही फर्क पड़ता है, ये बहुत पुराने हैं कि बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, ऐसी मैंने देखा है कि जैसे आपने कहा कि अदरक का इस्तेमाल, तुलसी का इस्तेमाल, काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत होता था, लेकिन अभी लोगों को दवाओं का नाम रटा हुआ है। सर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन ले लो, ठीक है, बुखार है, कॉम्बिफ्लेम ले लो, तो मतलब पेट दर्द है, मेफ्टॉल ले लो। तो ये लोगों को पता है कि दवाओं के नाम ये हैं, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि अगर आप छोटी छोटी चीजों में लेंगे तो ये आपके ऑर्गन्स के लिए सही नहीं है, यानी इन फ्यूचर ये आपको लॉस ही करने वाला है। तो ये आपने बताया कि कहीं ना कहीं घर का जो किचन है वो वैद्यशाला कहलाता है, और वहां से आप बहुत सारी बीमारियों को जब उसकी शुरुआत हो रही हो वहीं से सही कर लेंगे। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, मुझे भी लगता है कि जैसे हर शख्स को एक अजम्पशन होता है, एक ऐसा मानना होता है, बिलीफ, कि जब कोई चीज वो खा रहा है तो उसकी बीमारी में असर हो रहा है। अभी आपने कपाल भाती का एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि कपाल भाती अगर रेगुलर हम वैसे भी करेंगे तो शायद जो प्रॉब्लम हमको जुकाम वगैरह की आती है, जो कंडीशन होता है, उससे काफी हद तक हम वैसे ही बच पाएंगे, क्योंकि वो असर जो हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करता है, उसका मतलब सिर्फ चुस्त दुरुस्त रखना नहीं होता है, अंगों का जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसको वैसे ही बनाए रखना भी होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
5: हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम योग प्राणायाम रेगुलर करते रहेंगे तो हमारा मन और मस्तिष्क और शरीर तीनों का कॉन्टैक्ट रहता है एक दूसरे से, तो वो संतुलित अवस्था में रहेगा, और अगर ये संतुलित अवस्था में है तो बाहर की चीजें हमें रोगग्रस्त नहीं कर पाएंगी। ये जब हमारा वीक पड़ता है सिस्टम, तभी हमें बाहर के रोगाणु विषाणु ये सब घेरते हैं। अगर हम इन्हें योग प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ आहार, स्वस्थ दिनचर्या, तो आप खुद देख लीजिए, अगर हम लाइफ स्टाइल में सुधार करें तो लाइफ स्टाइल वाली प्रॉब्लम्स बहुत सही हो जाएंगे हमारी।
4: मतलब आपने कहा है कि भाई जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी वो योद्धा जो लड़ता है बीमारियों से, उसको मजबूत करेंगे तो बीमारियां आ ही नहीं पाएंगी, हावी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हावी तब होती हैं जब हमारा शरीर कमजोर होता है, जब उनको अलाउ करता है कि आप आ सकते हो। बिल्कुल सही बात है, यानी ना रही कहीं हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने पर काफी ज्यादा बल देना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हम सवाल करने वाले हैं वो बहुत अहम है। घर घर की बीमारी हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। हम बीपी की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, चाहे हाई हो या लो हो, या फिर शुगर की बात कर रहे हैं, और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में से एक आता है। तो इसको जानने के लिए जरूर बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके घर में हो सकता आप भी इसके शिकार हो या कोई और हो। म्यूजिकल ब्रेक के उस पार मिलेंगे सवाल का जवाब लेने के लिए।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: तो दोस्तों, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे संग बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, जो कि आई हुई हैं स्टेट आयुर्वेदिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। एक बार वापस से हम आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि जाने से पहले हमने कहा था कि हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम कॉमन तौर पर जानते हैं BP है, शुगर है या PCOD है। इसको लेकर के आयुर्वेद के अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्या रोल है इन चीजों को सही करने के लिए, और इसके लिए अगर आयुर्वेद पद्धति अपनाई जाए तो पेशेंट्स के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। ये
3: आयुर्वेद पद्धति बहुत कारगर है इन रोगों में। जैसा कि मैंने बताया, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़े होते हैं ये रोग। अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधार लें तो बहुत हद तक हमें आराम हो जाएगा विदाउट मेडिसिंस। जैसे हम क्या ले रहे हैं, जैसे आहार क्या है, क्या विहार है हमारा, क्या विचार है, इन चीज़ों पे आयुर्वेद बहुत बल देता है। जैसे हमारा क्या आहार है, जैसे मैंने बताया था सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये हम क्या आहार ले रहे हैं। अगर हम सही खाना भी ले रहे हैं और सही टाइम पे नहीं ले रहे हैं, सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो वो भी अपथ्य हो जाता। अगर हम खाना भी सही ले रहे हैं और सही स्लीप नहीं ले रहे हैं, हम क्वालिटी टाइम नहीं है स्लीप का, तो फिर वो हमारा खाना नहीं पचेगा, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे एंजाइम सही से सिक्रीट नहीं होंगे, वो उनका पाचन नहीं कर पाएंगे। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है हमारी, हम कितना मूवमेंट कर रहे हैं, क्या पोस्चर में बैठ रहे हैं, ये सब कुछ हमारा लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है। कैसा हमारे विचार हैं, इन दोनों चीज़ों का, आहार का, विहार का, हमारे विचार पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम स्ट्रेस में हैं, कैसे हमारे विचार आ रहे हैं, कैसे हमारे थॉट प्रोसेस है, तो इन सब का इफेक्ट हमारे गट पे पड़ता है, हमारे पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स पे पड़ता है। तो इन्हीं सबकी देन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स।
2: मतलब आपने ये कहा कि हम क्या खा रहे हैं वहां से लेकर के, और किस वक्त खा रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है, और क्या खा रहे हैं। बेशक, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमने देखा कि बीपी की प्रॉब्लम होती है, इवन जानलेवा साबित हो जाती है बीपी की प्रॉब्लम। शुगर जब हद से ज्यादा लो या बढ़ जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा होता है। और कौन ऐसी ऐसी बीमारी, जैसे सुनते हैं कि गिल्टी की जो बीमारी होती है आयुर्वेद में वो भी अच्छी होती है, और इसके अलावा लीवर से संबंधित बीमारियों का इलाज भी काफी ज्यादा किया जाता है। क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो ज्यादातर किस बीमारी को लेकर के आते हैं
3: इसमें। जैसे आप अभी बताया कि जुखाम जल्दी जल्दी हो रहा है, प्रतिष्ठाय कहते हैं उसको, एलर्जी की वजह से बार बार हो रहा है, दमे की प्रॉब्लम है, खांसी जुखाम इन सब की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, लीवर से जुड़े, लीवर से संबंधित आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज में, इन सब में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
2: तो आपने मतलब ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स बताया जो लोगों को लॉन्ग टर्म रहती है, और हमने देखा है कि जब वो अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से उसका इफेक्ट तो पड़ता है, बट वो जड़ से कहीं ना कहीं देखा नहीं हो पाता, जो सच है। बट आयुर्वेद में देखा कि वो उतना टाइम भी नहीं लेता है जितना हमने कर करके बार बार उसको रिपीट किया होता है, लेकिन जो भी करता है जड़ से सही कर देता है। तो कहीं ना कहीं बार बार बात वही आती है कि आयुर्वेद आखिर बेस्ड किस पे, इस बात को हमें जरा गौर करना होगा कि कितनी पुरानी पद्धति है और मनुष्यों को किन चीजों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए इस पद्धति को ईजाद किया गया, इसमें क्या क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि मौसम चेंज होते हैं, सर्दी आते ही कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, सर्दी से गर्मी जब आती है तो अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, गर्मियों का क्योंकि हमारे यहाँ जो सीजन पड़ता है अपने भारत के इस हिस्से में जहाँ हम निवास करते हैं, वहां देखा जाता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है और उसमें यह है कि लोगों की जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। अक्सर बताया जाता है कि पानी पीजिए, मतलब बड़ी बेसिक सी बात है कि पानी पीजिए, वो भी हम नहीं पीते हैं, हम कहते हैं काम में बिजी थे, ये हमको जरूरत ही नहीं लगी कि इतनी प्यास लगे। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि पानी का क्या तरीका होता है। एक तो पानी को एक बहस ही होती, खड़े होकर के पी सकते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बैठ करके पीजिए, तो इसका क्या रीजन है? एंड इसके अलावा पानी जो पिया जाता है, क्या वो जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है तभी आपको पीना चाहिए, या कोई तरीका होता है कि आप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके जैसा कि बताया जाता है सिप सिप करके आप पीते रहिए?
3: पानी हमें बैठ करके पीना चाहिए, ये सही बात है, खड़े होके पीने से हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, पानी बैठ के पीना चाहिए और घूट घूट करके भी पीना चाहिए। और गर्मियों के मौसम में जैसे आपने बताया कि पानी ज़्यादा लेना है, तो ऑब्वियस है पानी ज़्यादा लेना है। अगर हम केवल पानी नहीं पी पा रहे हैं तो हम मौसमी फल जैसे तरबूज है, खरबूज है, इन्हें खाएं, खीरा खाएं, नारियल पानी पिएं, तो इन तरीकों से भी पानी की कमी हम पूरा कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं।
2: हाँ, लेकिन अगर ज्यादा ही नारियल पानी लेंगे तो बजट में भारी हो जाएगा।
3: हाँ, तो फिर पानी पिए,
2: पानी फिर पिए और क्या। अच्छा, पानी से याद आया, चूंकि गर्मियां आते ही लोग फ्रिज में अपने बॉटल्स को रख लेते हैं और जहां भी जाते हैं वो उसी से लेते हैं। हमने रेलवे स्टेशन पे देखा है कि अगर जो वेंडर है वो आपको पकड़ा देता है नॉर्मल पानी, तो आप उससे कहते नहीं भैया चिल्ड वाला निकाल के देना, ठीक है। या आप कहीं किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान बन करके, तो आप भी कहते हैं हाँ, वो पूछते हैं ठंडा या नॉर्मल पानी, आप कहते हैं हाँ ठंडा थोड़ा सा ले आओ। तो ये जो आदत है लोगों में ठंडा पानी पीने की, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी से कुछ साल पहले, इवन मैंने खुद अपने घर में देखा है कि 12-15 साल पहले, 16 साल पहले घर में भी हमारे यहाँ घड़ा रखा होता था, अभी आरओ ने उसकी जगह ले ली है, तो टेस्ट भी चेंज हो गया है और हमको लगता है कि ये तो बहुत फिल्टर्ड करके दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि उसमें जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं आरओ में। तो ये घड़े का कॉन्सेप्ट भी आप इसको लेकर के बताइए कि किस तरह से पानी जो है वो ठंडा कितना फायदे या नुकसानमंद होता है, क्योंकि गर्मी में चाहत तो ठंडे पानी की ही होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि नुकसान करता है। अब चूंकि हम धूप में भी रहते हैं, कुछ लोग अपने पंखे के नीचे भी रहते हैं और कुछ लोग एसी में भी रहते हैं, इसका भी बहुत असर पड़ता है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बिल्कुल, गर्मियों में शीतल जल की ही इच्छा होती है और हमें लेना भी शीतल जल चाहिए, लेकिन फ्रिज का पानी हमें नुकसान कर सकता है और करता भी है, इसलिए हमें घड़े का पानी पीना चाहिए, क्योंकि फ्रिज के पानी से हमने देखा है अधिकतर गले में प्रॉब्लम हो जाती है, जुकाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, सर्द गर्म की समस्या हो जाती है, तो हमें, और घड़े के पानी से ये सब समस्याएं नहीं होती हैं, इसलिए हमें घड़े का पानी ही प्रेफर करना चाहिए। और ध्यान रखें हम कि एसी से डायरेक्ट निकल के हम गर्मी में नहीं जाएं, टेम्परेचर डिफरेंस तुरंत हम नहीं करें, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते हैं और ये हमें बहुत नुकसान करता है, कई तरीके के स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनकी वजह से, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो ये तो हमने खैर बहुत सुना है और मेरे ख्याल से श्रोताओं ने भी सुना होगा कि एसी से निकलकर डायरेक्ट धूप में नहीं जाए, लेकिन बाय चांस मान ली कि कोई ऐसा ऑफिस है जहां पे काम होता हो, तो ये हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हाँ एसी से निकलकर डायरेक्ट नहीं जाना है धूप में, पर मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसी जगह जहां एसी है और आपको निकल के जाना भी है, तो तरीका क्या है? मान लीजिए अगर हम इतने ठंडे में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम उसको नकार नहीं सकते, तो किस तरह से हम, कितना इंतजार करें कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हो जाए बॉडी का, उसके बाद हम धूप में जाए, इसके बारे में बताएं।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम एसी से निकल के पहले ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं कि हमारा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप धूप में जाइए, डायरेक्ट नहीं।
2: मतलब आपने कहा कि हम डायरेक्ट निकल के एसी से धूप में ना जाएं।
3: हाँ,
2: थोड़ी देर हम सिर्फ छांव में कहीं बैठ सकते हैं, तो ये मतलब ये हमारे ख्याल से टाइम जो हो सकता है 3-4-5 मिनट काफी है। तो आपने कहा कि चूंकि बॉडी को भी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, फटाक से तो कोई स्विच वाला काम बॉडी में है ही नहीं, स्विच ऑन किया और सीधे काम हो गया। तो इस बात का ख्याल हमारे श्रोता और शायद मैं खुद भी रखूंगा आइंदा से कि अगर एसी में है भी किसी जगह ऐसी तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को नॉर्मल होने का मौका दें, उसके बाद कहीं बाहर आप निकले। एक चीज और बहुत बड़ी है आयुर्वेद की, और उसको लेकर के हमने भी सुना था जाना था कि खाने के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि भाई इसके साथ बिल्कुल नहीं लेना है। तो कुछ को तो हमें पता होता है कि हाँ ये दो चीजें ऐसे एक साथ नहीं लेनी है, नुकसानदेह साबित होगा, लेकिन फिर भी जब उस चीजों का हम कहीं और तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरे फॉर्म में हम जाकर के वही चीज सेम ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? मतलब ये विरुद्ध आहार जो होता है जिसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है, ये कितना नुकसानदेह होता है? और प्लीज 2-4 एग्जाम्पल हम चाहेंगे कि आप बताइए कि हम कहाँ अपने जनरल लाइफ में गलती कर रहे हैं, विरुद्ध आहार को समझ नहीं पा रहे हैं और एक साथ ले रहे हैं।
3: विरुद्ध आहार जैसे कि हम दो अपोजिट चीजों को एक साथ ले रहे हैं, ये विरुद्ध आहार कहा जाएगा। जैसे कि शास्त्रों में बताया है कि दूध के साथ नमक नहीं लेना, तो ऐसे डायरेक्ट तो हम दूध के साथ नमक नहीं लेते हैं, लेकिन हम पराठे के साथ चाय लेते हैं, नमकीन के साथ चाय लेते हैं, पकौड़ी के साथ चाय लेते हैं, तो चाय में दूध है और इन सब चीजों में नमकीन है, तो ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है धीरे धीरे करके, फिर ये स्किन डिजीज का बहुत बड़ा कारण है। जैसे दूध के साथ नमक ये बताया गया है, मछली के साथ दूध नहीं लेना
2: जी।
3: शहद और घी समान मात्रा में नहीं लेना, ये सब एक तरीके से विरुद्ध आहार के उदाहरण है
2: जी। तो आपने कहा कि मतलब जो विरुद्ध आहार है उसको एक साथ नहीं लेना होता, लेकिन हम दूसरे फॉर्म में कर करके, यानी आपने कहा नमक डाइट तो हम सभी को पता है, लेकिन वही चीज पराठे में डाल करके हम खा रहे होते हैं। अब इतनी बड़ी बात आपने कह दी, हमारे श्रोता जो है थोड़ा सा मायूस हो गए होंगे कि भाई अब से तो चाय के साथ नमकीन नहीं ले सकते, तो फिर क्या ले? मेरा भी ये सवाल है आपसे कि अगर चाय के साथ मान ली हम कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे जिसमें नमक पड़ा है, तो फिर हम क्या ले सकते हैं उसके लिए?
3: जिसमें नमक ना पड़ा हो ऐसी चीजें लें, या मीठी चीजें अगर आप ले सकते हो तो ऐसे लें, प्रेफर करें कि जिसमें नमक ना हो ऐसी चीजें।
2: मतलब थोड़ा सा मीठा भी चल सकता है?
3: हाँ, मीठा चल
2: सकता, या सादा चल सकता?
3: हाँ,
2: है
3: सादा चल सकता है, बट नमक नहीं होना,
2: नमक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बस वही हम जानना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप चाय के साथ कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी चाय तो साथ को पसंद करती है, चाहे किसी के साथ आप ले रहे हो पी रहे हो या किसी के साथ बैठ करके पी रहे हो, ये दोनों ही साथ चाय को अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि उसमें नमक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी जानकारी थी जो कि आयुर्वेद को लेकर के हमने पूछी। हमने बहुत सारे प्रश्न आज अपने एक्सपर्ट से किया और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने बखूबी उन सभी सवालों का आंसर किया, उसका जवाब दिया, और सारी ही आदतें और सारी ही बीमारी हमारी डेली लाइफ में उससे जुड़ी हुई है, यानी उसको हम कहीं ना कहीं किसी पड़ोसी में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं, कुछ चीजें हम खुद में भी देख रहे हैं। तो ये आपने ऑल ओवर बताया कि भाई लाइफस्टाइल आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपको फूड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और आपने बताया कि किन बीमारियों के लिए आयुर्वेद पद्धति ज्यादा कारगर साबित होती है। ये तो बात हो गई कि हमने जितना पूछा आपने उसका आंसर दिया, क्योंकि अब हमारा जो चलने का वक्त है वो बहुत नजदीक आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपकी तरफ से हमारे इस वक्त सुन रहे श्रोताओं के लिए कोई अपील हो, कोई बात आप कहना चाहते हो एज डॉक्टर आयुर्वेद के, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ स्टाइल को, जो कि बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार अगर आप सुन के थोड़ा भी सुधार कर सकते हैं तो प्लीज उसे करिए। जैसे कि हमारा रात का खाना, लेट नाइट पार्टीज, देर में सोना, ये बहुत खतरनाक है हमारे जीवन के लिए, बहुत ही ज्यादा लेट में सोते हैं, फिर हम सुबह देर से उठते हैं, फिर हमारा सब कुछ डिस्टर्ब रहता है, हमारा पूरा जीवन ही डिस्टर्ब हो गया, हमारा कोई एम नहीं रह गया है, हमें खुद नहीं पता है कि हम किधर भाग दौड़ में किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे खाएं, हम क्या करें अपने लिए। हमें व्यायाम के लिए, योग के लिए हमें अपने को समय ज़रूर देना चाहिए। आधा घंटा तो कम से कम अपने को दे ही सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए।
2: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि शायद इस टॉक शो को सुनने का तब तो फायदा है जब हम उस पर थोड़ा सा भी अमल करें, यानी इसको सच में अपनी व्यवहारिक जिंदगी में लेके आए, तब तो इसके कोई मायने हैं। और लाइफस्टाइल सच में हमारी काफी ज्यादा चेंज हो गई है। थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश आज इस शो को सुनने के बाद ही आप आज करिएगा। और नींद नहीं आती तो वैसे भी हम कहते हैं कि भाई बचपन में देखिए ना, जब पढ़ने बैठते थे कैसे फटाक से नींद आ जाती थी, तो आज भी वो तरीका अपना सकते हैं। किताब उठाइए, शायद नींद जो है बहुत तेजी से आ जाएगी। जी,
3: और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, सोने के बेड पे जाने के एक घंटे से डेढ़ घंटे के पहले बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देख।
2: जी,
3: ये भी बहुत वो करता है जिससे कि आपको नींद नहीं आती।
2: करेक्ट, मतलब स्क्रीन टाइमिंग जो है आपको रात की तो बिल्कुल हटानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रेज होती है, आंखों में जाता है और ये नींद ना लाने का भी कारण बनता है। और ये आपने सही कहा, तो मुझे लगता है जो मैं बात कर रहा था किताबों की, तो किताबों से दोस्ती कर ली जाए तो मेरे ख्याल से मोबाइल की इस दुश्मनी से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका हो सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दिया, एंड मैं अपनी तरफ से, रेडियो ज्ञानस्थली पूरी टीम की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अहम जानकारी दी। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू।
2: सो दोस्तों, सुनते रहिए अपना गुंडावाला FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। अगली बार वापस से मुलाकात होगी किसी नए शख्स और उनकी शख्सियत के साथ। सुनते रहिए गुंडा FM।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

रख दे तू दिल पे जरा। दिल पे हाथ रखने वाले हर चोट का मरहम होते हैं, दिल पे हाथ रखने वाले हर चोट का मरहम होते हैं, पर मरहम बनते बनते कब हमनवा बन जाते हैं पता नहीं चलता। मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के कई बादल गुजरते दिखे, जैसे वो नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल घूमते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उठते खतरों जैसे, कई बादल उठते और गिरते थे कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घिरते और घूरते दिखते थे कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में है, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती थी कि क्या और किसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है और उसकी मोहब्बत का तगाजा वो कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ की ये जो फिक्र थी ना, वो फिक्र उसकी नहीं मेरी थी। उसने तो इश्क के एक कनिखी खा ली थी और एक दरवेश की मानिन उसने मेरे श्वासों की घूनी रमा ली थी। मैंने उसके पीठ पर हाथ रख के देखा, मैंने उसके पास बैठकर धूनी को आग छेड़ी, कहा कि तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब क्या योगी मेरा क्या बनेगा। वो हंसा एक नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, घिनना जानते हैं, गरजना भी जानते हैं, निगाहों को बरजना भी जानते हैं, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देह पर इल्ज़ाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा कि तुमने सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी, क्या चक्कर खाते बादलों से मैं कैसे रास्ता मिलूंगी। खुदा जाने उसने कैसे तलब पी थी, बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा, कहा तुम किसी से रास्ता ना मांगना और ना किसी को दीवार को हाथ ना लगाना, ना घबराना, ना किसी के बहकावे में आना, और बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना, तुम बादलों की भीड़ में पवन की तरह गुजर जाना। सो सभी का स्वागत है आपकी वाली शाम आरजुबीना वाली शाम में। वेलकम बैक इन द शो गोंडा मैसेज मसाला आरजुबीना वाला। एंड यस, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई आरजुबीना आपके साथ आपकी शाम मुकम्मल करने के लिए। तो जैसा कि आज मैंने आपके सामने बादलों से कुछ नोकझोंक की बात कही, ये नोकझोंक लिखने वाली एक ऐसी रचनाकार हैं

जिनका नाम हम सभी को काफ़ी पसंद है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं अमृता प्रीतम की, जिनकी आज है बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि आज ही के दिन उनका हुआ था जन्म। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा और लिखने के साथ अपनी प्रेम कहानी को भी अमर कर दिया। अमृता प्रीतम के बारे में पहले भी बात किया है हमने, लेकिन आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो उनकी कृतियाँ पढ़ना हमारा जो कहते हैं ना एक दायित्व हो जाता है। तो उस दायित्व को निभाएंगे, आपके संग कहीं दूर तक जाएंगे, फिर तुम्हें याद किया, आँख को चूमा हमने, इश्क पूछता है अरे जिंदगी तूने कैसे कर्म किए, जिंदगी कहती है तेरे शौक की सुराही से हमने दुखों की शराब पी, विरह के नीले खरल में हमने जिंदगी का काजल पीसा, रेत रात को आसमान आती है और हमने एक सिलाई मांगती है। तो ऐसी कई कृतियाँ जिनको पढ़ के हम और आप अमृता जी के दीवाने हो जाएंगे। सबसे पहले तो अमृता प्रीतम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता है। तो उनकी कविताओं से शुरुआत करके उनके पास तक चलते हैं। और आज है कॉलिंग डे, यानी कि मंडे है, तो मैं चाहूँगी एक कविता तो ज़रूर सुनाइएगा अपनी प्रिय रचनाकार अमृता प्रीतम के लिए, और उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमृता प्रीतम एक महान लेखिका और कवित्री रहीं, आज उनकी जयंती है। अमृता प्रीतम आधुनिक भारतीय साहित्य के एक महान हस्ती रहीं। उन्होंने मुख्य रूप से पंजाबी और हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी थीं। उनके जीवन और साहित्य से जुड़ी कुछ खास बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जब भी बात करो तो चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान छूटी जाती है। जन्म हुआ था 31 अगस्त 1919 गुजरांवाला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। कर्मभूमि उनकी भारत रही। और अगर उनकी रचनाओं की बात करूं तो उन्होंने लिखा है आज अखा वारिस शाहनू, भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को बयां करती उनकी ये सबसे प्रसिद्ध कविता रही, जरूर सुनाऊंगी। पिंजर, विभाजन के दौरान महिलाओं की पीड़ा को उन्होंने एक मशहूर उपन्यास के रूप में लिखा और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी बहुत सारे मिले। रसीदी टिकट, उनकी बेहद चर्चित आत्मकथा जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा। कागज ते कैनवास, ये कविता संग्रह रहा जिसे हर किसी ने बहुत पसंद किया। और अगर आपने कागज ते कैनवास को नहीं पढ़ा तो आपने समझ लीजिए एक बहुत बहुत कीमती बहुमूल्य कविता संग्रह नहीं पढ़ा। अगर आप कविताएं पढ़ने के शौक रखते हैं तो मुझे लगता है ये संग्रह आपके लिए, मैं विश्वास कीजिए इसको पढ़ने के बाद आप मुझसे कहेंगे अरे यार जबीना क्या सजेशन था। सम्मान की बात करूँ तो उन्हें उनकी जो कहते ना कि कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनको सुन के बेबाकी लगती थी, तो उन बेबाकी भरे शब्दों के लिए ही उन्हें बहुत पसंद किया गया और उनके सम्मान भी काफ़ी ज़्यादा ही रहे इसी बात को लेकर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में उन्हें मिला और ये पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला थी। पद्मश्री 1969 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है। पद्म विभूषण 2004 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो कि उन्हें दिया गया। तो आज और बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो सुनने वालों, सुनाने वालों कहाँ हो, जल्दी से उठ जाओ, शाम हो चुकी है, आज शाम होने आई, आरजुबीना ने दी आपको बुलवाई, तो फटाफट से आइए और सुनाइए अपनी दास्तान अपनी जुबान। तो कॉलिन वाले सारे लिसनर्स एक्टिव हो जाएं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: सवार है। तो चलिए पहला कॉल देखते हैं किसका है और कौन घोड़े पे सवार है। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, शुभ संध्या। आपका शुभ नाम आरजेबीना के साथ गुंडा मैसेज मसाला में आपका स्वागत है।
1: मेरा नाम अन्नपूर्णा है, आपका क्या नाम है?
0: आरजेबीना, जिसके शो में आपने कॉल किया है।
1: नाम तो नहीं पता है ना।
0: ओके मतलब मुझे लग रहा है आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है।
1: वो अभिषेक जी पास करते थे, आज आपके पास की है।
0: मुझे लग रहा है कि आपकी किसी और से बात हुई रही। फिलहाल आप 89.6 FM पे आरजेबीना के साथ हैं और आज मंडे है और मंडे को आपकी आवाज़ में हम लोग कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो ये बताइए आज आप क्या सुनाने वाली हैं? अन्नपूर्णा जी, आपका नाम बड़ा अच्छा है। पहले तो सुन के ही लग रहा है कि मतलब किचन के भंडारे भरने वाली किसी देवी से बात हो रही है।
1: अरे भाई इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो हम चने के छार पर चढ़ जाएंगे।
0: देखिए झाड़ पे चढ़े या ना चढ़े, लेकिन हमारा नाम जो होता है ना वो हमें बहुत एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। और
1: ये बात तो सही है,
0: अपने नाम को लेके हमेशा से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसकी अंदर की एक जो अच्छी खूबी है उसे हमेशा अपने पास समझ में रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी का नाम, कभी कभी कई बार होता है ऐसे कुछ लोग मैंने सुने हैं जिनको अपना नाम पसंद नहीं होता, पर मुझे लगता है अपने नाम से प्यार करना एक बहुत अच्छा काम है। तो चलिए अन्नपूर्णा जी बताइए आज आप सुनाएंगे क्या?
1: गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे।
0: सुनाइए, सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में।

0: क्या बात है, बहुत अच्छा आपने गाया। और अन्नपूर्णा जी, जानना चाहूंगी कहाँ से आप बात कर रही हैं? गोंडा शहर,
1: आनंद समोसा, गोंडा शहर आनंद समोसा, मेरा मायका है ना।
0: अरे वाह, मतलब मुझे आना पड़ेगा आपके यहाँ समोसे खाने। वैसे मेरे फेवरेट प्लेस है, मैं वहीं से समोसे लेके खाती हूँ। अब खाऊंगी तो आपको याद करके खाऊंगी।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा ये बताइए, मतलब आप स्कूल में कविताएं पढ़ती रही होंगी, आपको पसंद होगा कविताएं पढ़ना?
1: हमको ज्ञान असली में हम पढ़े भी हैं।
0: अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैंने बिल्कुल सही इंसान से बात करना शुरू किया है अपनी।
1: सक्सेना मैडम उस टाइम थी प्रिंसिपल थी, तभी हम वहाँ पे पढ़े हैं।
0: क्या बात है। तो ये बताइए अन्नपूर्णा जी, आपकी कोई मतलब फेमस कोई ऐसी कवित्री थी जिनसे आप बहुत प्रभावित रहती थी, जिनकी कविताएं पढ़ना आपको बहुत पसंद था? कवित्री कवि नहीं,
1: मुंशी प्रेमचंद थे, उनकी कहानियां हमें बहुत पसंद थी।
0: क्या बात है। कोई ऐसी कहानी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
1: गोदान, जो थी नहीं गोदान।
0: हाँ, अरे वो तो उसमें तो मतलब क्या बताऊँ, मार्मिकता से लेके हर वो चीज है जो एक इंसान की डेली लाइफ से जुड़ी हो। क्या बात है। तो अन्नपूर्णा जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और उम्मीद करूंगी हर मंडे आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।
1: नमस्कार।
0: ऐसे मुस्कुराती रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही अन्न के जो भंडारे हैं हर जगह भरती रहिए। क्या नाम है, मतलब कितने खूबसूरत सा नाम है, अच्छा लगता है। और आप लोग के अलग अलग नाम ना मुझे एक पहचान देते हैं कि आरजे बीना की आज बात हुई तो अन्नपूर्णा से हुई, आज बात हुई इनसे हुई, उनसे हुई। तो चलिए, इंतजार बरकरार, 63-93-31-64-29 आपका नंबर कर रहा है इंतजार। तो किस बात की है देरी, चलिए सुनते हैं ना अगला गाना आपके साथ। तो अगर आप कुछ बेहतरीन, एनर्जेटिक और मजेदार सुन रहे हैं तो आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला सुन रहे हैं आरजे बीना वाला। एंड अगला गाना है जिसे सुन के आपके दिल के तार बजेंगे बार बार।

0: मेरा और आपका फेवरेट गाना, लेकिन इस फेवरेट गाने के बीच में एक कॉल जिसे सुनना बेहद है जरूरी। चलिए सुनते हैं अगली आवाज किसकी है। हेलो,
1: गुड इवनिंग मीना मैम।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं सुरेश जी, स्वागत है आपके।
1: ठीक है, सब लखनऊ में हैं।
0: अच्छा, लखनऊ में बिल्कुल स्वस्थ हैं आप।
1: जी, वही हमारा टच वाला मोबाइल है, हमारा बटन वाला।
0: जी जी।
1: तो मनु भैया नहीं कहा था कि 63 93 31 64 29 पे फोन मिलाना तो शायद बात हो पाएगी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कहते हैं ना कि जब कनेक्शन हो दिल का तो नंबर भी अपने आप मिल जाते हैं। तो आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
1: बेसिक ये नंबर हमने मिलाया तो का नाम है मिल गया। और बात वैसे जो घर पे जो गोंदा से इस्तेमाल करते थे उस नंबर से बातचीत नहीं हो पाता था।
0: अरे वाह,
1: कई बार लगाया। हाँ, असल में वो गोंडा से 10 किलोमीटर आगे आ जाओ तो आप फिर वो नेटवर्क काम नहीं करता है।
0: जी जी जी जी
1: एफएम। हाँ,
0: आज आपकी आवाज भी बहुत क्लियर आ रही है।
1: और टच वाले मोबाइल से वो एप पे सुनते रहते हैं, जैसे आपका वहाँ से आता है, दुबई से आता है, कहीं त्रिपुरा से आता है, मध्य प्रदेश से आता है।
0: जी जी,
1: इतनी दूरी दूरी पर बातचीत हो जाती है, हम लोगों पे तो बातचीत हो ही नहीं पाते।
0: क्या कहने। चलिए, फिलहाल आज आपसे सबसे पहले बात हो रही है, तो कौन सा गाना सुनाएंगे?
1: अरे जहाँ बैठे हैं फैमिली के बीच में, उनके सामने कभी गाया वाया नहीं है, न गाते हैं, ये तो अलग ही बात कर रहे हैं आपसे।
0: अब आज इतना अच्छा नेटवर्क और इतनी अच्छी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल मतलब क्लियर, जैसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर आवाज आपकी सुनाई दे रही है। आज तो गाना जरूर सुनेंगे आप, चाहे छत पे जाके आप कॉल करिए।
1: अच्छा, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या कहूँ मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ, माना तेरा चल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लूं कैर मगरूर है। माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लूं कैर मगरूर है। मानो न मानो दीवाना बेकसूर है, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या कहूँ मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जान है। ओ, देखा तुझे मैं इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से। देखा मैंने तुझे जो इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से। मानो न मानो न पूछो ये गरीब से, रुका कई बार मैंने दिल की मंग को, क्या कहूँ मैं अपनी निगाहों की पसंद को, वो जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ, दबी आवाज से सुनाया है।
0: क्या बात है, फिलहाल गाने को इतना निभाया है कि हम शुक्रिया ही कहना चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मतलब इनसिक्योर मामले में, मतलब ऐसी जगह जहां आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तब भी आपने गाया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी।
1: अच्छा,
0: ऐसे ही अपनी आवाज सुनाते रहो और ये नेटवर्क जो है ना ऐसे ही बरकरार रखें। मजा आ गया आज आपकी आवाज सुन के, बहुत क्लियर थी आवाज।
1: थैंक यू मैम, बहुत खुश हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए सुरेश जी से बात हो गई और आज संध्या जो है वो साकार हो गई। मज़ा आ गया सुन के। और जैसा कि आज आपको पता है कि अमृता प्रीतम का आज बर्थ है, बर्थडे है और जयंती है, और ऐसा कम होता है कि हम कॉलिंग पे हों और किसी महान हस्ती की बात साथ में हो रही हो, बहुत कम होता है। तो आज की शाम अमृता प्रीतम के नाम और एक कविता और जो मैं आप लोग के नाम करना चाहती हूँ, बड़ी प्यारी सी कविता है जिसको सुन के ना सिर्फ आपको बल्कि मुझे भी गर्व महसूस होगा क्योंकि मैं वो कविता आपके सामने सुनाऊंगी। वैसे तो उनकी लिखी हर कविता हम सभी के रूह में बसती है क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ कविताएं लिखी बल्कि एहसासों को जीने का मौका दिया है। ठीक है, तो उनकी फेमस वाली कविता सुनाती हूँ। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरी तखियल की चिंगारी बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखती रहूंगी, या फिर सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस से लिपट जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह पर तुझे जरूर मिलूंगी, या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदों की तरह तेरे बदन में मिलूंगी और एक ठंडक सी बनकर तेरे सीने में लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती पर इतना जानती हूं कि वक्त जी भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा, ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर चेतना के धागे कायनात के कण होते हैं, मैं उन कणों को चुनूंगी और मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। तो बड़ा प्यारा सा गाना, और चलिए उस गाने को पूरा करते हैं जिसको शुरू किया था, और ये कविता भी एक गीत बन के हर किसी के लब पे छू जाती है जब कोई अपना किसी अपने से मिल नहीं पाता है। बस रूह यही कहती है मैं तुझे फिर मिलूंगा या मैं तुझे फिर मिलूंगी।

0: और ऐसी ही गज़लें लिख के अमृता जी किसी और की हो गई। जी हाँ, अमृता जी की प्रेम कहानी इतनी अलग थी, इतनी खास थी, एक लव ट्रायंगल जैसी थी। अमृता जी किसी और को चाहती थी और उनको कोई और चाहता था। साहिर लुधियानवी से बहुत प्रेम करती थी वो, और बदले में इमरोज़ जो कि उनके दीवाने हो बैठे थे। फिलहाल हमारे साथ कॉल पे कौन जुड़ने वाला है, चलिए देखते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम, आपके साथ लाइव आरजे बीना, आपके शो गुंडा मैसेज मसाला के साथ।
1: तिवारी बात कर रहे हैं,
0: जी
1: श्रद्धा तिवारी।
0: श्रद्धा, अरे बाप रे, मेघाए बड़े बंठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कई दिनों बाद लग रहा है खोली है खिड़की हमारी गली। क्या कहते हैं, कहाँ थी श्रद्धा इतने दिनों से?
1: हम मतलब एक दिन 2 दिन शायद रेडियो ऑन किया था तो सिंपल में आई हुई थी,
0: तो
1: तो
0: आपने कॉल करना
1: शायद
0: मुनासिब
1: नहीं था, इसीलिए मतलब मैंने तुरंत बंद कर दिया और फिर सुना ही नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं।
1: और एक
0: फिलहाल
1: दिन टाइम भी नहीं था।
0: कोई बात नहीं, आज आपने कॉल कर दिया, चलिए सब मुकम्मल हो गया। गुड इवनिंग महेंद्र जी, गुड इवनिंग सविता जी। अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर जिस पर फिल्में बनी थीं, बंटवारे की तराजी, बिल्कुल देखिए ये लिखने वाले ही हैं जिन्होंने लिख लिख के चीज़ों को हम तक पहुंचाया है और हमने पर्दे पर उसे देख के अपना बनाया है। तो चलिए सुनते हैं श्रद्धा की आवाज़। श्रद्धा जो कि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, कंपोज भी कर लेती हैं अपने गाने खुद से ही, खुद के अंदाज में। तो श्रद्धा आज क्या सुनाओगे?
1: जी मैंने एक गाना लिखा है, वही आपको सुनाने वाले हैं।
0: क्या बात है, जैसा कि मैंने तारीफ की वैसा ही सामने आया रिजल्ट, क्या बात है, स्वागत।
1: यस मैम।

0: वही, थैंक यू मैम।
1: क्या बात है श्रद्धा, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग कुछ नया करते हैं। एंड यस, लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि श्रद्धा गाना खुद लिखती भी हैं और इसका म्यूज़िक भी खुद ही कंपोज करती है, मतलब इसकी जो कहते हैं ना कि रिदम है ये खुद बनाती है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, क्या लिखा आपने, और सब आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब श्रद्धा आप काम कर रही हैं क्या बात है, बहुत खूब
0: थैंक
1: बहुत खूब बहुत खूब, मज़ा आ गया। तो भाई श्रद्धा की आवाज़ तो हमने सुन ली, बाकियों की बारी है। चलिए देखते हैं किसकी किसकी जो आवाज़ है वो दूर दूर तक जा रही है। गुड इवनिंग सैंडी पांडे, मतलब थोड़ा पांडे को थोड़ा सा अजीब लिख दिया है। एनीवे, गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं? और महेंद्र ने लिखा है कि शाम ढली तो हवाओं ने पैगाम दिया, दिन की थकान को थोड़ा आराम दिया, कुछ पल यूं ही मुस्कुराकर गुजार लो, जिंदगी ने फिर एक खूबसूरत शाम का नाम दिया। क्या बात है, गुड इवनिंग सबलू जी, कैसे हैं, क्या हाल है, कैसी चल रही है ये शामें फिलहाल? शाम तो खूबसूरत ही है, लेकिन इन खूबसूरत शामों को भी किसी का इंतज़ार है। वो इंतज़ार किसका है, और मैं भी आप लोगों को बताना चाह रही थी कि गाना मैं भी सोच के आई थी सुनाने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, फिर सुनाती हूँ मैं आपको गाना। तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग के कॉल आ जाए, मुझे ना सुनाना पड़े गाना। फिलहाल अगला गाना जिसको सुन के आपके भी दिल की धड़कनें कहेंगी वाह आरजीबीना क्या क्या सुना रही हैं आप। तो मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, इश्काविक, बिल्कुल बिल्कुल वही गाना जिसका इंतज़ार है। इश्काविक छड़िया तो कखदा निसानू, हाँ बिल्कुल, जब आपको किसी काम का इश्क नहीं छोड़ता है तो गाने की लिरिक्स कुछ ऐसी हो जाती है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग, इश्क वे छड़िया।

0: तो हसीन लिसनर्स के साथ शाम हसीनी हो जाती है। फिलहाल चलिए मैं कुछ सुना देती हूँ बिना किसी तरह का विलंब के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ना हो जिसने इस शाम में कॉल ना किया हो और सबके कॉल्स ऑन एयर तक जाएं। तो चलिए एक गाना जो बड़ा पसंद है मुझे बहुत दिनों से, फिलहाल फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा कि आप लोग को सुना दूँ। और ख़ास बात ये भी है कि आज एक ऐसी कवित्री की बात हो रही है जिसने इश्क को बहुत करीब से समझा है, इश्क को करीब से जाना है, तो हमें लगता है कि इश्क को हमें भी उसी अंदाज में गुनगुनाना चाहिए जिससे हम भी समझ सकें कि क्या है एक तरफा इश्क और एक दूसरे से दूर होके इश्क निभाने का जो कहता ना मज़ा वो। तो चलिए कॉल पहले सुनते हैं फिर मेरी आवाज़ सुनिएगा, पहले देखते हैं आवाज़ किसकी है। शुभ संध्या, हेलो।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीना जी।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम, स्वागत है आपका।
1: मैं सविता शास्त्री बोल रही हूँ गोरखपुर से।
0: ओ, सविता जी आप तो मतलब क्या बताऊँ, आप चांद बन चुके हैं, बादलों के पीछे छुप छुप के ऐसे झांकती हैं, फिर कॉल हर बार नहीं करती हैं।
1: अरे नहीं, मैं उधर भी बहुत कॉल करती थी लेकिन मिल नहीं पाता था ना, असल में थोड़े ज्यादा लोग जाते थे तो इंगेज चला जाता था, और फिर इधर कुछ दिनों से बहुत ही बिजी थी। और फिर आप, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रही थी कुछ दिनों से।
0: क्या बात है,
1: अपना तो आप बता नहीं रही है, घूम फिर के समुद्र का आ रही है।
0: फिलहाल मतलब मैं ऐसा इतनी दूर तो घूमने नहीं गई थी, लेकिन हाँ कुछ पर्सनल काम के लिए गई थी, तो सोचा कि प्रकृति को भी करीब से छू के देख ही लिया जाए, तो बस।
1: चलिए, हम लोग बहुत मिस किए आपको।
0: मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया, और बस घड़ियां सोच रही थी कब मैं पहुंच जाऊं और ऑन एयर आ जाऊं।
1: तो आज आपकी आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोली आज जरूर मैं फोन करके बीना जी से बात करूंगी।
0: क्या बात है, मतलब थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मुकम्मल होगी आपसे मुलाकात भी। तो चलिए क्या सुनाइएगा आज?
1: आज मैं सोची भजन सुना दूं सारे मैंने श्रोतागण को।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: एक भजन है उनका, क्या नाम बोलते हैं उनका, गोस्वामी जी का। तो उनका एक भजन है राम नाम के हीरे मोती।
0: बिल्कुल, वो तो मैं सुनूंगी, साथ में आपसे अमृता जी के बारे में भी जानना चाहती हूँ। जैसा कि अमृता प्रीतम, वैसे तो महादेवी वर्मा और सब लोग अपने अपने काल के बहुत बड़े बड़े अपना मतलब काम करके गए, उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि उन्होंने ही सब कुछ लिख दिया है, पर जब सबको पढ़ने लगो तो सबकी अलग अलग विचारधारा समझ में आती है। तो ये थोड़ा सा आधुनिक जो इन्होंने काव्य धारा है उसमें एक नया मिश्रण घोला और बहुत खूबसूरती से इन्होंने चीजों को लिखा। खास तौर पे जो नई जनरेशन है उन लोग को इनकी कविताएं बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत अच्छा लिखा भी।
1: हाँ, वो उन्होंने जो अपनी कविता में या उपन्यास में जो भी चीज लिखी है वो उस काल से बहुत आगे की थी, तो कुछ लोगों को समझ में आई, आज के जो पीढ़ी है उन चीजों को जरूर समझ पाएगी,
0: काफी रिलेट कर पाते हैं, जैसे कि उनके लगता है कि
1: वो आधुनिक आधुनिक कहना चाहिए, विचारों से बहुत ही आधुनिक थी वो।
0: हाँ, जिसे लेखन में आज हम लोग लिविन का नाम दे के पुकारते हैं, उन्होंने लिविन की मर्यादा को निभाते हुए एक ऐसा रिश्ता बनाया और उसे अमर कह सकते हैं, लोग उसको याद करते हैं और सम्मान से याद करते हैं, सबसे अच्छी बात है कि सम्मान से याद करते
1: हैं। हाँ, उन्होंने जो भी मन में था उसको स्वीकार किया है और इतने बिंदास तरीके से अपनी को व्यक्त किया है, जैसे मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि वो अपने खुद ही संस्मरण में लिखी है कि वो बहुत प्यार करती थी वो लुधियानी बीजी को, तो जब कहती कि मेरा प्रेम इतना ज्यादा था कि जब वो आते और चाय पीकर चले जाते तो उनकी प्याली का जो बचा हुआ चाय था वो उन्हें पी लेती थी,
0: और उनकी जो सिगरेट बड़े तरीके से उनकी जो सिगरेट के बचे हुए हिस्से थे उसको संभाल के रख लेती थी, बहुत अच्छा प्रेम था। और उसी समय जो उनको चाह रहा था उसके प्रेम को भी समझ रही थी कि भाई इस जन्म में तो मैं किसी और को चाहती हूँ, लेकिन अगले जन्म में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर अपना मतलब सर्विस दूंगी। क्या बात है,
1: उन्होंने कहा भी अगले जन्म में अगर कोई मुझे मिले तो वही मिले।
0: क्या
1: ऐसा उन्होंने साफ कहा है। और उनकी कई मतलब कृति भी है जैसे काला गुलाब वगैरह, और उनकी अमृत लहरें भी है, कई कविताएं भी है, हालांकि मुझे अब बहुत दिन हो गए है ना तो पढ़े हुए तो याद नहीं है उतने अच्छे से, लेकिन टॉपिक जो है वो मुझे याद है उनका।
0: उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे, उन्होंने जो विभाजन हाँ, पे लिखा है वो
1: हाँ पिंजर, पिंजर जो एक नारी की अभिव्यक्ति है
0: बहुत मार्मिक, वो तो
1: बहुत ही मार्मिक। और जो लोग उस चीज को नहीं देखे हैं, अगर वो फिल्म देखेंगे या उनके उपन्यास को पढ़ेंगे तो एक नारी का दर्द वो समझ पाएंगे
0: उसको।
1: और इस कालखंड से वो कितने मुश्किल भरे दिन थे जब लोगों ने उसे मतलब सहा है, जिया है, तो अच्छी है, बहुत अच्छी कृति है उनकी।
0: क्या बात है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी खुली अभिव्यक्ति हम सभी करें और बात करें उनके विचारों के बारे में, बस चीजें किताबों तक ना रहें और वायरल होने का हम इंतजार न करें। आजकल तो चीजें मैं देख रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत सालों से अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उसके वायरल होने का इंतजार करते हैं कि कोई एक मतलब रील बना देता है, देन लोग उसको
1: उनका जो आज का जो पेन है या रील है वो आज गया कल गया परसों खत्म हो गया, इस टाइप का रहता है।
0: तो जिस चीज को जिस चीज तक हम खुद पहुँचेंगे ढूंढते हुए हाँ, तो वो शायद काफी हाँ, दिनों तक हमारी स्मृतियों में रहेगा।
1: हाँ, उनके मतलब उनकी जो कृति मैंने जहाँ तक पढ़ा है, उपन्यास वगैरह पढ़ा है, तो यही सार समझ में आया कि अपना प्रेम इतना पवित्र रखो कि अगर सामने किसी भी रूप में आए, किसी भी रिश्ते में आए, तो हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो।
0: बिल्कुल
1: हाँ, बहुत अच्छा है उनका।
0: तो चलिए तो, मैं चाहती हूँ कि आज आप सुना दीजिए अपना भजन जो आपने सोच रखा है।
1: हाँ, मैं मृदु शास्त्री जी का एक भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं सुनाना चाह रही हूँ।
0: क्या बात है, स्वागत।
1: सुनाती हूँ, ठीक है, शुरू करें।
0: जी जी, स्वागत है।
1: राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम

चलो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, ओ सुंदर काया मिट्टी होगी।

प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम।

0: राम। धन्यवाद जीना जी।
1: क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी। बेहतरीन आपने मतलब आवाज़ में और बिल्कुल दिल से सुनाया, सबने बहुत एंजॉय किया, चैट रूम में भी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं।
0: धन्यवाद।
1: और कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ भजन ऐसे होते हैं ना शरीर को डिटॉक्स करते हैं, कुछ गाने ही मैं कहूँगी ऐसे होते हैं जिनको सुन के आत्म पवित्र फील होती है, तो वैसा ही लगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली मंडे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। तो अभी सविता जी की आवाज़ में हमने सुन लिया ये प्यारा सा भजन, और सब अलग अलग चीज़ें सुना के अपनी जो शाम है ना उसको बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और चलिए, अब मेरी बारी थी गाना गाने की, और मैं अपनी बारी निभाने के बारे में हूँ सोच रही हूँ, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करती हूँ मैं। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी गाना आप लोग को सुनाऊँगी, और जैसा कि मैंने बताया कि आज अमृता प्रीतम की बर्थ एनिवर्सरी है, और वो प्यार को लेके उनकी जो सोच थी बड़ी क्लियर सी थी, क्रिस्टल सी, कि मेरी जो थॉट्स है वो डगमगाएंगे नहीं, अगर जिसके लिए हैं तो वो हैं, जिसके लिए परिवर्तित होने थे वो हो चुके हैं। और उनकी जीवनी तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने पढ़ी होगी, पर हाँ बात करते हैं प्रेम की, तो उसी प्रेम से जुड़ा ये गाना, ध्यान से सुनिएगा।

तो ये छोटा सा गाना जो हमें दिलाता है याद कि कोई पास हो या ना हो, वो आपको मिले या ना मिले, ठीक साहिर की तरह, साहिर लुधियानवी की तरह, जैसे अमृता की ज़िंदगी में वो आए तो लेकिन रुके नहीं, वो उनके हुए नहीं, लेकिन उनको अपना बना के अमृता जी ने हमेशा अपनी लाइफ को उन्हें समर्पित किया। जब भी वो लव पोइट्रीज लिखती थी तो उनको समर्पित लिखती थी, लेकिन एक पोइट्री ऐसी जो उन्होंने इमरोज़ को लिखी, मैं तुझे फिर मिलूँगी। तो उनकी लव स्टोरी से ज़्यादा उनकी जो लेखनी है वो हमें ज़्यादा प्रभावित करती है। चीज़ें उनकी लाइफ में भी बहुत ट्विस्ट भरी थी, और अगर उनकी जीवनी की बात करूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी उनकी जीवनी थी। एक पंजाबी परिवार से वो बिलोंग करती थी, और उनका जीवन शुरू से लेके अंत तक काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा। उनका जो कहते ना कि कम ही उम्र में उनकी सगाई हुई थी, और 16 वर्ष की आयु में प्रीतम सिंह के साथ उनकी शादी हो गई। फिर प्रीतम का नाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, अमृता प्रीतम। तो ये भी एक ख़ास बात है कि उन्होंने हर किसी को स्पेस दिया, ऐसा नहीं कि किसी को इग्नोर किया हो, पर जो शादी थी वो काफ़ी प्रेमहीन रही। 1950 के दशक में उनकी मुलाकात साहिर लुधियानवी से हुई, प्यार एक तरफा ही था, पर रसीदी टिकट में सब कुछ उन्होंने कह डाला। फिर साल था 1958 जब उन्होंने एक चित्रकार के रूप में इमरोज़ मिले, जिनसे वो अपनी किताबों का फ्रंट पेज डिज़ाइन कराना चाहती थी। फिर क्या था, वो उनके लिए डिज़ाइन बनाते गए, और डिज़ाइन बनाते बनाते कब उन्होंने उनके दिल के कैनवस पे भी अपना नाम लिख लिया पता ही नहीं चला। दोनों बिना पारंपरिक विवाह के बंधे लगभग 40 से 50 तक एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ रहे, और ये एक बड़ी चीज़ थी उस समय के लिए। पर अमृता ने उस कहते ना कि रिश्ते की गरिमा को बना के रखा, संजो के रखा, और वो संजोना मुझे लगता है कि किसी भी लड़की के लिए उस दौर में बड़ा मुश्किल था। पर अमृता ने

0: ही किया जो उनके दिल को ठीक लगा, और मुझे लगता है वही करना भी चाहिए। हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारा दिल क्या कहता है, बशर्ते कि सामने वाला क्या सोचता है। और अगर हम ये सोच के चीज़ों को करने लगेंगे ना, तो हम अपनी पहचान बनाएंगे, और अगर हम अपनी पहचान नहीं बना पाए तो हमें लगता है कि हम थोड़े अधूरे हैं, थोड़े इनकम्प्लीट हैं। और इनकम्प्लीट होने के साथ साथ हमारी जो छवि है वो हमारी नज़र में धूमिल हो जा रही है। तो और कॉल्स को भी मौका मिलेगा, फिलहाल तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी अमृता को लेके। और मैं कुछ खत लाई हूँ पढ़ने के लिए आप लोग के साथ, खास तौर पे अमृता और ये साहिर और इमरोज के, उनके कुछ पुराने खतों की कुछ चीज़ें हमें मिली, तो जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन एक गाने के बाद। तो एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद खत को आपके साथ पढ़ते हैं। पर मुझे लगता है अभी खत और गाना दोनों ही सुनने का समय नहीं है, क्योंकि कॉल कनेक्ट करने का टाइम हो चुका है। चलिए देखते हैं किसका कॉल है। हेलो,
1: शुभ संध्या मैम। हाँ,
0: शुभ संध्या
1: जी। मैं तेज नारायण शुक्ला बोल रहा हूँ।
0: तेज जी, स्वागत है आपका। शुभ संध्या, और मैं पहचान जाती हूँ आप लोग की आवाज़ों से ही, और स्वागत है आर जी बीना के शो में। 89.6 FM पे आप लाइव हैं, और मैं जाती हूँ कि आप लिखते भी बहुत अच्छा है और गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है। तो आज आपसे सवाल एक करूँगी। सबसे पहले अमृता प्रीतम को लेके आज बात हो रही है, आज उनकी जन्म जयंती है, तो
1: जी जी जी जी
0: तो उनसे जुड़ी कोई ऐसी कविता या किताब या कोई उपन्यास जो आपने पढ़ा हो जिसने आपको काफी प्रभावित किया हो।
1: पढ़ा तो है काफी पहले, लेकिन ये जो आपने मतलब आज तो बहुत अच्छा दिन है, और ये मतलब आप नरेट बहुत बढ़िया करती हैं, और मैंने भी पढ़ा है ये जो प्रेम त्रिकोण था इन लोगों का, साहिर लुधियानवी और अमृता जी का, जिसमें मतलब एक पराकाष्ठा है, मतलब प्रेम की समर्पण है और सेक्रीफाइस भी है, मतलब त्याग भी है जी। तो मतलब पढ़ा बहुत है, लेकिन इस समय मेमोरी में नहीं है।
0: क्या बात।
1: तो लेकिन मैं सुन रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा नरेट करते हैं, बड़ी अच्छी जानकारी आप लोगों की है,
0: शुक्रिया।
1: तो बड़ा जी जी जी बड़ा अच्छा लगता है।
0: तो
1: चूंकि अमिताभ प्रीतम जी की बात चल रही है, और कुछ टॉपिक वैसा ही है, हालांकि मैं इस विषय पर ज्यादा लिखता नहीं हूँ, लेकिन एक बार मनु जी ने मुझे एक दो लाइन दिया था और कहा कि इस पे कुछ अगर बन सके तो अगली बार सुनाइएगा। तो वहां मैंने सुनाया था, तो पहले मतलब क्योंकि आज के लिए समसामयिक है, तो आज उसी से शुरुआत करना चाहता हूँ।
0: क्या बात है।
1: अब जो पंक्तियां उन्होंने कही थी उसका मैं आपको सीधे सीधे सुनाता हूँ, कविता ही सुनाता हूँ जी। तो शुरू करूँ?
0: स्वागत है।
1: सोचता हूँ कि घर में जो तुमसे मिलूं, सोचता हूँ कि घर में जो तुमसे मिलूं, मेरे लब ना हिले समझ लो तुम मुझे, मेरे लब ना हिले समझ लो तुम मुझे, धड़कनों को भी मैंने अपने समझा दिया, जिक्र आए तुम्हारा तो वो ना हिले, कोई सुन ना ले उन्हें, कोई ना सुन ले उन्हें और समझ ले मुझे, सोचता हूँ कि घर में जो तुमसे मिलूं। अगला देखिए, हम देखता हूँ तुम्हें सहम जाता हूँ मैं, देखता हूँ तुम्हें सहम जाता हूँ मैं, पहले घबरा के फिर मुस्कुराता हूँ मैं, देखता हूँ तुम्हें सहम जाता हूँ मैं, पहले घबरा के फिर मुस्कुराता हूँ मैं, सोचता हूँ कि आज कुछ बोलूंगा मैं, दिल के दरवाजों को अपने खोलूंगा मैं, फिर न जाने कोई रोकता है मुझे, फिर न जाने कोई रोकता है मुझे, मेरे अंदर से कोई टोकता है मुझे, दिल को समझा के मैं फिर चला आता हूँ, घर के आईने में तुमको खड़ा पाता हूँ। खत भी लिखने की कोशिश बहुत कर चुका, खत भी लिखने की कोशिश बहुत कर चुका, कि लिख करके उन्हें फाड़ देता हूँ मैं, और कोशिश में इसी खुद को फिर मार देता हूं मैं। अब ये जिस्ट है लास्ट में, ये सोचता हूं ये कहानी यूं ही चलती रहे, सोचता हूं ये कहानी यूं ही चलती रहे, इसकी दास्तां दिल में पलती रहे, क्योंकि संबंधों की भाषा भी है, रिश्तों की परिभाषा भी है, और जीना चाहो बिन इनके तो जीवन एक तमाशा भी है।
0: क्या बात है। आपने कहा आप लिखते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि हर किसी के दिल के एक एक तार को छू के पार हो जाए। क्या बात है, बेहतरीन। मतलब मुझे लगता है कि आज मुझे टॉपिक ये छेड़ना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि आपने अपनी जो कविता संग्रह है उससे ये कविता जो छुपा के रखी थी उसे हम तक पहुंचा दिया। क्या बात है, शुक्रिया।
1: जी, अगर ऐसी बहुत हैं, मतलब, लेकिन ये है कोई ज़्यादा नहीं लिखता हूँ।
0: क्या बात।
1: अगर आप कहें तो एक, चूँकि इस समय जो दौर चल रहा है उसमें अर्थ का बहुत महत्व है।
0: बिल्कुल।
1: और अर्थ के मतलब दो मायने हैं, एक तो आपका मायना धन है और दूसरा मायना अर्थ तो है ही है। तो थोड़ा सा उस पे मैंने लिखने की कोशिश की है।
0: क्या बात,
1: वो सुनाना चाहता हूँ आपको।
0: क्या बात, स्वागत।
1: कि जीवन में यदि अर्थ नहीं है तो जीवन का अर्थ नहीं है।
0: क्या बात,
1: जीवन में यदि अर्थ नहीं है तो जीवन का अर्थ नहीं है। संघर्षों की इस बेला में टिके हुए सब इस धूरी पर, अर्थ समाहित संबंधों में यह कहना भी व्यर्थ नहीं है।
0: क्या बात,
1: रिश्ते भी वस्त्र विहीन हुए, संबंधों की भाषा बदली, रिश्ते भी वस्त्र विहीन हुए, संबंधों की भाषा बदली, सब कुछ पहले जैसा ही है, बस थोड़ी सी आशा बदली। क्या कहना है क्या सुनना है यह सब पहले से तय था, क्या कहना है क्या सुनना है यह सब पहले से तय था। पौधे तो सूख चुके पहले, बस सच्चाई खुलने का भय था।
0: क्या बात।
1: जी,
0: सच्चाई खुलने का भय था। क्या बात।
1: जी, धन्यवाद। इसमें भी कुछ नया नहीं है, वैसे भी कुछ गया नहीं है, सब सहयात्री हैं जीवन के, गंतव्यों पर उतरेंगे, ऐसे पड़ाव कई है बाकी जीवन क्रम में गुजरेंगे। वैसे संबंधों के इस पतझड़ में हरियाली की उम्मीद व्यर्थ है। जीवन में यदि अर्थ नहीं तो जीवन का अर्थ नहीं है।
0: क्या बात है। और अपनी बेशकीमती जो लेखनी है वो हम लोग के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये शाम इतनी ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव होगी, इतनी ज़्यादा साकार होगी, मैंने सोचा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया तेज जी। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि अपनी डायरी से बहुत बेहतरीन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना, और वो आज आप बखूबी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो।
1: जी, होल्ड हो गया था
0: जी। मुझे लग रहा है वो बहुत सारे कॉल्स एक साथ आते हैं तो उस वजह से, लेकिन बहुत
1: थोड़ा सा जी, मैं अब थोड़ी सी आज कोशिश कर ले रहा हूँ गाने की भी।
0: क्या बात?
1: मतलब अगर समय ज्यादा समय ले रहा हूँ मैं आपका।
0: नहीं, मैं
1: तो अगर कहिए तो मैं
0: बिल्कुल स्वागत।
1: ये मेरा नाम जोकर का है और मुकेश जी इसके मतलब गायक हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहे चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।
0: क्या बात है,
1: क्या बात है? जी, धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तेजी। और आपने जो कविताएं साझा की उसके लिए दिल से आभार, और साथ ही साथ आपने ये जो गाना भी सुना दिया वो मतलब सोने पे सुहागे का काम कर रहा है। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: So, 89.6 FM से लाइव है आरजेबीना आपके साथ, आपके फेवरेट शो गोंडा मैसे मसाला आरजेबीना वाले में। एंड यस, बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, बैक टू बैक आपकी आवाज़ इस इवनिंग को कलरफुल से मतलब एक कैनवस बना रही है। जैसे कि कैनवस से शुरुआत हुई कि कैसे एक कैनवस पे अलग अलग रंग अलग अलग स्मृतियों को छोड़ के जाते हैं, वैसे ही अमृता प्रीतम के जीवन से जुड़ी जो बातें हमने जानी वो भी कहीं कम नहीं थी, और उस बात को और आगे बढ़ाया आप लोग की आवाज़ ने। तो आगे कंटिन्यू सुनते रहेंगे, बजाते रहेंगे अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून, आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजेबीना, आपके शो गोंडा मैसेज मसाला के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: गाना सुनने का आज दिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज कॉल सुनने का दिन है। तो चलिए अगले कॉल के साथ ऑन एयर आज बिना आपके पास है, सुनते हैं आवाज, देखते हैं किसकी है। हेलो,
1: नमस्कार, शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, कैसे हैं सबलू जी, स्वागत है। देखिए आवाज आपकी मैंने पहचान ली,
1: मेरे तो वॉइस ही ऐसी है कि जिसे आप पकड़ लेते हैं ना।
0: क्या बात, ऐसा नहीं है, वॉइस की बात करें दुनिया में बहुत सारी ऐसी आवाजें जो काफी मिलती जुलती है, लेकिन हाँ कुछ आवाजें ऐसी हैं जो सुन सुन के हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं उन आवाजों को पहचानने के। तो सबलू जी आज आप क्या सुनाने वाले हैं, स्वागत है सबसे पहले तो, आप लिखते बहुत अच्छा है तो इसलिए लिखने वाले से लेखिका और कवित्री के बारे में पूछना बहुत अच्छी बात होगी। अमृता प्रीतम जी की आज बात हो रही है, तो आप बताइए आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा है।
1: जी जी यार, सुने हैं आपके, आप वॉइस के माध्यम से सुने हैं। उनका एक मूवी साइज पिंजरा इसी टाइप का है, जो उसमें एक्टर जो है मेरा बेतिया ही तरफ का है, जो कि बिहार का ही एक्टर है। उन्होंने काफी रवीना टंटन जी के साथ में काम किए हुए हैं, जो एक्टर है ना उसमें मुरथा वाला।
0: जी जी जी
1: जी जी, वो आपका बेतिया के तरफ का ही है, हम लोग का बिहार का है।
0: क्या बात है,
1: उनका ज्यादा तो पंजाबी मूवी दिख रहा है ना, जो एक दो फिल्म बनाए हुए हैं जैसे कि बटवाड़ा, इस फिल्म में देखे हैं।
0: मतलब आपने उनको ज्यादा पढ़ा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: मैं क्या कविता ही सुना देता हूँ, भोजपुरी में है और मैं भोजपुरी में पहला बार कविता तैयार करके आया हूँ रेडियो ज्ञानस्थली से।
0: तो मैं चाहती थी कि वो भोजपुरी की कविता अगर आप बृहस्पतिवार को सुनाते तो और मजा आता।
1: नहीं नहीं, जिससे हम जुड़े हुए हैं तो उस लाइन को तो तोड़ा नहीं जा सकता है, अगर आ गया तो दीजिए, नहीं तो अगर इसको अगर भोजपुरी कार्यक्रम में अगर कहेंगे तो कह देंगे, लेकिन कविता जो भी है साफ सुथरा है।
0: बिल्कुल नहीं नहीं, कविताएं तो मुझे पता है कि आप क्या लिखते हैं, बेहतरीन ही लिखते हैं। तो चलिए स्वागत है, कोई बात नहीं, आपकी कविता मतलब अपनी अपनी पसंद सुनाने की बात है, तो आप अपनी पसंद में जो भी आपने लिखा है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैं आपको मंडे को देती हूँ, तो बिल्कुल आप सुना सकते हैं।
1: क्योंकि भोजपुरी भाषा जो है ना हम लोग का बहुत ही बेस्ट लगता है, इसीलिए हम लोग भोजपुरी में बोलना भी काफी पसंद करते हैं। इधर हम लोग मुंबई रहने लगे, जॉब करने लगे, तो हिंदी भाषा तो प्रयोग करना पड़ता है।
0: क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है।
1: तोहार शहर से अच्छा मोरा गांव बा, कुइया के ठंडा पानी और चितरा के छांव बा। तोहार शहर से अच्छा मोरा गांव बा, तोहार शहर से मोरा अच्छा मोरा गांव बा। सुहावन मन भावन लागे भोर के किरिनिया, सुहावन मन भावन लागे भोर के किरिनिया, मस्ती में झूमी झूमी नाचेली मोर मुड़निया। हमुआ के बाग में कोयलिया के बाग बा, तोहर शहर से अच्छा तो हमार गांव बा।
0: क्या बात,
1: पिपरा के नीचे ठंडा कुइया के पानी, पनिया भरत में गोड़ी लागेली रानी। चाल चले जैसे नदी की हिलकोर, कमर बीचे गगड़ी शोभे जैसे नदी बीचे नाव बा। तोहर शहर से अच्छा निमन तो हमारा गाँव बा, कुइया के ठंडा पिपरा के छाव बा। मोटर के शोर नहीं छे, मोटर के शोर नहीं छे, भीड़ भी नहीं छे मारा मारी, आपस में सभे मेल बा, बा सबके यारी। गांव के बीचे लागल काका के लोग के चौपाल बा, तोहर शहर से अच्छा निमन मोरा गांव बा। भोरे भोरे पंडित जी आरती गावेले, गुरु जी की ज्ञान की बात सिखावेले। मंगड़ू के हाथ के लाठी 56 इंची छाती, घूंघट में भावजी के मुखड़ा लागे जैसे बदरी से निहारत बा चांद बा। तोहर शहर से निमन मोरा ही गांव बा, कुइया के ठंडा पिपरा के छाँव बा। तोहर शहर से निमन मोरा ही गांव बा। शुद्ध बा हवा यहाँ, शुद्ध बा खाए के, शुद्ध जल बा नदिया तालाब के, नहाए के सीधा बारे लोग यहाँ शुद्ध बाटे बोली। काकी के बोलिया में ना छल ना ठिठोरी, सरपंच जी के हरदम मोछिए पे ताव बा। तोहर शहर से निमन मोरा गांव बा, कुइया के ठंडा पिपरा के छाँव बा।
0: क्या बात है, और बिल्कुल शहर से ज्यादा बेहतरीन गांव का वातावरण होता है खूबसूरत।
1: जी जी बिल्कुल, हम लोग से मिलाई ले सर से कहीं अच्छा सुविधा अपना गांव में खुलल दिशा, सुबह सुबह बसंती बिहार का बसंती बिहार के पंखा भी खेल हमने के लागेला।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और अपने क्षेत्र के या अपने गांव का जो माहौल होता है वो हमेशा से हमें एक अपनत्व महसूस कराता है। क्या बात है,
1: सबसे बड़ी अपनापन आपस में मेल जुल जे शहर से अच्छा बा, यहाँ मतलब ही बा शहर में तो कोई मतलब केहू से ना रखेला।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबलू जी आपकी इस कविता को सुन के। हर किसी को हर किसी का गांव तो जरूर याद आ गया होगा क्योंकि गांव से जुड़ के रहना हम सभी के लिए बहुत खास है। शुक्रिया। तो चलिए सबलू जी की इस कविता को सुन के मुझे लग रहा है कि आज मजा ही आ गया। चलिए अगली जो आवाज है वो सुनते हैं किसकी। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो।
2: हाँ मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम। थोड़ा सा आपके पास रेडियो जो चल रहा है उसकी आवाज कम कर दे, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
2: जी
0: जी
2: आप सही आ रही है मैडम।
0: जी जी
2: मैं मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: अरे वाह मुमताज जी, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके?
2: बस ऊपर वाले का करम है।
0: अरे वाह क्या बात है। तो मुमताज जी आज क्या सुनाइएगा?
2: अब जो आप कहिए हिंदी में या भोजपुरी में।
0: वैसे आज हिंदी का ही दिन है तो आप हिंदी में ही गाना सुनाइए, और हिंदी में आपके गाने बड़े बेहतरीन होते हैं, तो कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप?
2: अब एक हिंदी में ही गाना सुना देते हैं।
0: स्वागत है,
2: तो इजाजत दीजिए सुनाते हैं।
0: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
2: दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे हम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है।
0: क्या बात है, क्या बात है, और गाने का चयन भी बहुत अच्छा किया है आपने। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया। मुमताज जी आप गाने बहुत अच्छे चुनते हैं और हर बार आपका गाना दिल खुश कर देता है।
2: जी मैडम, बस आप लोगों की दुआ बनी रहे, और आपसे एक शिकायत है।
0: जी बताएं।
2: बस आप लोगों से यही इल्तिजा है, और आप मेरे तरफ से आपके लिए दुआ है, बना के रस में मुलाकात को सदा रखना।
0: क्या बात है,
2: और बिछड़ भी जाऊं तो ख्वाबों का सिलसिला रखना।
0: अरे वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: शुक्रिया मैडम,
0: दिल से आभार, दिल से आभार। तो मुमताज जी की आवाज में जो लयकारी है वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो शाम में जब कॉल करते हैं तो गाने बहुत खूबसूरत से चुन के लाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले कॉल की तरफ रुख करते हैं, आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो हेलो। सो नेटवर्क इशू की वजह से अगला कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। तो चलिए चैट रूम में थोड़ा सा रुक करते हैं, सॉरी आज मैं बहुत ज़्यादा चैट रूम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मतलब ध्यान तो दे रही हूँ लेकिन नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि कॉल्स आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो सैंडी हमारे साथ, सोनिया हमारे साथ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अंबर गोयल कैसे हैं अंबर, स्वागत है आपका, और क्या हाल है अंबर जी, और आपकी माता जी कैसी हैं, और अनूप गुड इवनिंग कैसे हैं आपके, उम्मीद करती हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और आपको जन्मदिन के पश्चात जन्मदिन की बेहतरीन शुभकामनाएं। गुड इवनिंग महेंद्र जी, गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग जुगल किशोर मध्य प्रदेश से, स्वागत है आपका भी। महेंद्र जी तो हमें राजस्थान से सुन रहे हैं, सब लोग साथ हैं। अगले कॉल को ऑन एयर करते हुए चलिए देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी, स्वागत है आपका, क्या हाल है?
3: आज आपने बहुत बढ़िया गाना गाया।
0: आवाज पहचान ली मैंने आपकी, और कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, आज मैं कानपुर में हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है,
3: वो मीटिंग में आया हुआ हूँ।
0: क्या बात है, और उस मीटिंग से आपने समय निकाल के हमें समय दिया, इसके लिए हम आकांक्षी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज क्या सुनाइएगा?
3: मैं छोटा सा रवि साहब का गाना सुनाना चाहता हूँ, दिल देख रहा है।
0: क्या बात है, स्वागत है।
3: तो अगर इजाजत दे तो मैं सुनाऊं?
0: स्वागत है, दिल से स्वागत।
3: दिल बेकरार सा है, मुझ में खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है,

मुझ में खुमार सा है जब से तुझे देखा सनम, दिल बेकरार सा है, हाथों में आंचल ताम के वो मुझे पाने

0: थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, फिलहाल जिसका भी दिल बेकरार रहा होगा उसको सुकून आ गया होगा ये गाना सुनने के बाद। क्या बात है, फिलहाल बेकरार दिलों को सुकून मिला होगा इसे सुनने के बाद।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया ये प्यारा सा गाना हम लोग के साथ साझा करने के लिए अपनी आवाज में, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
1: तो चलिए, अनिल जी ने अपनी आवाज में जो सुर छेड़े हैं वो बेकरार सुर सबको करार देके गए हैं। अब अगले कॉल को ऑन एयर करने की बारी है, चलिए देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो,
2: शुभ संध्या बीना जी।
1: शुभ संध्या अनूप जी, कैसे हैं, क्या हाल है, स्वागत है आपका और बहुत लिमिटेड समय में फोन करने के लिए आभार। कौन सा गाना सुनाइएगा आज आप?
2: मैम गाना एक बार मैं उसको गा चुका हूँ अभी एक हफ्ते पहले।
1: क्या बात,
2: फिर से मन किया वही गाना गाने का।
1: अरे वाह,
2: क्योंकि गाना वो बहुत प्यारा है और गाने के बोल हैं, महलों का राजा मिला तुम्हारी बेटी राज पे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: मैम एक मिनट सांस ले लूं।
1: अरे वाह,
2: शुरू करूं?
1: स्वागत स्वागत।
2: महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी।

0: दोनों कुल की लाज निभा दे, यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कोई कब रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, और उम्मीद तो सभी करते हैं कि बेटी राज करेगी, लेकिन हर बार बेटियां राज कर नहीं पाती हैं। तो बेटियों को राज करने के लिए विवाह से ज़्यादा उन्हें पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, और वो मौके हमारे देश में अब बहुत खुले तौर पे मिलने लगे, और इसके लिए इस बदलती सोच का हम सम्मान करते हैं, और ऐसे ही देश में प्रगति पर रहें हमारे देश की बेटियाँ, और देश में सम्मान ऐसे ही प्राप्त करती रहेंगी। खुशी खुशी दे दो दुआ। तो चलिए, इस शाम को विराम भी करने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच अनूप जी, आपकी आवाज़ में ये सुर सबके दिलों तक पहुँचे होंगे और सबने भावुकता से महसूस किया होगा इस गाने को। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनूप जी ने गाना नहीं, एक कहते हैं कि सुर छेड़ा, जिसने सबको फील कराया होगा कि कैसा गाना ये। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत। और अब समय है आप लोगों से मुझे दूर जाने का, क्योंकि आपको पता है कि शाम हो चुकी है आप लोग की फरमाइशी गानों की, लेकिन मैं क्या कहूँ, बस कुछ ही मिनटों में आपकी फरमाइशी पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए आरजे बीना को दे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक प्यारी सी कहानी के साथ। उम्मीद करूँगी आप भी एक प्यारी सी कहानी लेकर ज़रूर आएंगे, आरजे बीना से शेयर करेंगे, और आरजे बीना उस कहानी को अपनी शाम में शेयर करेंगी। तो चलिए सुनते हैं आपका और मेरा फेवरेट सॉन्ग, सैयारा तू तो बदला नहीं है। बिल्कुल, मौसम ज़रा सा बदला है, और इस बदलते मौसम को ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि बजाते रहेंगे हम 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे थे अपना शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन के साथ। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम इन योर शो गोंडा फरमाइशी मेरा ये तो बसते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से वो भी आपकी अपनी आर्टिस्ट सिंपल के साथ में और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की दर्द।

अगर आप आ ही चुके हैं तो क्यों ना शुरुआत करते हैं इस गाने से। सो इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं फिर से मिलती हूँ आप सभी से, आप सभी के गीतों के साथ, आपके जज्बातों के साथ। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, भूले तो नहीं, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों सुनते हो इन चार लोगों को, क्यों सुनते हो इन चार लोगों को, दफा करो ऐसे बीमार लोगों को, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जियो और ठोकर मारो इन ठेकेदार लोगों को। डुबो देंगे तुम्हें बीच दरिया ले जाकर, डुबो देंगे तुम्हें बीच दरिया ले जाकर, क्यों देना अपनी पतवार लोगों को, और अपनी चमक से खुद चमकना सीखो, अपनी चमक से खुद चमकना सीखो, मत ढूंढो अंधेरों में यार लोगों को। सो कैसा लगा आप सबको जरूर बताना। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, जितने चांद आप लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। क्यों? सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। राजेश कुमार वेदरदी जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, और कुमार राहुल आपका भी स्वागत है, नागेश्वर धाकड़ स्टे ट्यून वेलकम इन योर शो, एंड इसी के साथ में अनूप मिश्रा जी वेलकम इन योर शो, राजू सीतापुर से, उषा कश्यप गोंडा से, निधि सीतापुर से, महेंद्र राजस्थान से, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए अब एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। मंडे मंडे मंडे मंडे मंडे की प्लेलिस्ट तो होती है तगड़ी तगड़ी तगड़ी ना, तो देखते हैं आखिर आज की प्लेलिस्ट है कैसी। सो जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से, मतलब हमारे जग्गू दादा को एमपी से सुनना है लाल दुपट्टा मलमल का पिक्चर का गाना सुनी सुनी अखियों में। सो एंजॉय करते हैं अनुराधा जी की आवाज में, सुरेश जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा लाल दुपट्टा मलमल का पिक्चर का गाना जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

जुगनू चमक उठे। तो किन किन की आंखों में जुगनू चमके हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और जग्गू दादा, आखिर आपने ऐसा क्या सोचा, ऐसा क्या दिमाग में आया कि आपने इस गाने की फरमाइश की है आज, ये भी आप चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की, उनको सुनना है गाना ये दिल और उनके निगाहों के साए। सो एंजॉय करते हैं प्रेम पर्वत पिक्चर का लता जी की आवाज में ये सुनहरा नगमा हमारी सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जी एमपी से और अरविंद मनकापुर से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

घेर लेते हैं बाहों के साए। लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ये फरमाइश थी सोनिया तिवारी की। इसी के साथ में सोनिया तिवारी का भी कुछ कहना है दोस्तों। इनका कहना है कि ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए हर पल प्यार के एहसास जगाएं। इतना खूबसूरत गीत सुनाने के लिए दिल से धन्यवाद अरजीत सिंपल जी। सो ये था सोनिया की तरफ से बहुत बढ़िया वाला थैंक्स। अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। तो क्या आप सभी अगली फरमाइशी गीत की तरफ चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए चलते हैं। धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना, जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा एक बार फिर से, ओल्ड इज गोल्ड नगमा, लेकिन इस बार दोस्तों धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश।

और इसी के साथ में सोनिया तिवारी का कहना है कि अंधेरों में चिरागों की जरूरत किसे है, सच्चे दोस्तों की चमक ही काफी है। अगर ढूंढना ही है तो वफा ढूंढो दिल में, वरना रोशनी में तो हर साया भी साथी है। वाओ, बहुत उम्दा। अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, मींस प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश, जो कि है बहराइच से, और उनको सुनना है गाना हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। स्टे ट्यून्ड।

चाहे ना माने हमें एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर जो की है बहराइच से। अब वक्त हो चला है हमारे अगले फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ने का, तो चलिए चलते हैं। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि बीमार हैं इसलिए बीमार दिखते हैं, बीमार हैं इसलिए बीमार दिखते हैं, रंग चढ़ा दिया फिर भी दरार दिखते हैं। किश्तें बढ़ रही हैं दिन ब दिन मेरी, फिर महीनों बाद वो उधार दिखते हैं। रफू कर दिया है सारे जख्मों पे अपने, रफू कर दिया है सारे जख्मों पे अपने, मगर घाव तो मेरे उस पार दिखते हैं। सारे शरीफ लोग आ बैठे हैं महफिल में, सारे के सारे शरीफ लोग आ बैठे हैं महफिल में, इसलिए हम सबको गुनाहगार दिखते हैं। सो अब इंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश। राजेश कुमार बेदर्दी को सुनना है गाना चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा, हर दिल को छू जाने वाला, रोमानियत वाला, मेलोडियस सॉन्ग उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अच्छा जी, मतलब अब मिरर का काम, शीशे का काम चांद तारा भी करने लगा। अब सबकी पत्नियां, सबकी गर्लफ्रेंड कहेंगी अब मुझे चांद वाला मिरर लाके दो, है ना, क्योंकि चांद में तारों में सब में तो आपकी महबूबा दिखती हैं, और खूबसूरत दिखेंगे शायद, क्यों दोस्तों। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना ब्यूटीफुल। सो एंजॉय करते हैं ये अतरंगी सा गाना, और शायद गाना मैं पहली बार सुन रही हूँ। नाउ लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सो एंजॉय करते हैं ये पंजाबी सॉन्ग। अगर नहीं समझ में आए ना पंजाबी गानों की, ये तो खासियत होती है मित्रों, अगर गाना ना समझ में आए बस बीट्स पे ऐसे पंगड़े पाने लगो भाई, और कुछ नहीं चाहिए।

लग दी, हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा किसकी फरमाइश पर, धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास कोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले महेंद्र दीपेन राजस्थान से आपके भी गाने का नंबर आएगा, आपका भी पारी आएगा। सब्र का फल जरूर मीठा होता है कहते हैं ना, और तबिश खान स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। और अभी इस गाने के पहले मैंने एक कुछ शायरियों की कुछ नज्म आप लोगों के सामने पेश की थी, तो मेरे एक लिसनर है नागेश्वर धाकड़, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है। तो उनका कहना है कि दर्द दिल की बीमारी से हम थोड़ा आराम चाहते हैं, दर्द दिल की बीमारी से हम थोड़ा आराम चाहते हैं, टूटे दिल की बीमारी का इलाज चाहते हैं, अब कोई फिर से मोहब्बत की आग दिल में ना लगा दे, अब कोई फिर से मोहब्बत की आग दिल में ना लगा दे, इसलिए खुद को तन्हाइयों में आराम चाहते हैं। वाओ बहुत खूब, अब एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है राजेश कुमार की गोंडा से, उनको सुनना है गाना आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या ही चीज होती है यार, मोहब्बत समझ में आ जाती तब तो बात ही क्या थी ना दोस्तों।

आंखों में नींदे ना दिल में करार। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा मेलोडियस और रोमांटिक वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, राजू की, सीतापुर से। और राजू को सीतापुर से सुनना है गाना जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए। सो एंजॉय करते शब्बीर कुमार और अनुराधा जी की आवाज में कुली का ये वाला गाना। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

कहीं फूट ना जाए, हमें एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत सा अतरंगी सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, और उषा कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना मिलो ना तुम तो हम घबराए, और मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है। सो लता मंगेशकर जी की आवाज में हीर रांझा का ये सच में बहुत ही बेहतरीन सा नगमा, हर दिल में झटका कर देने वाला नगमा हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

वाओ, हमने एंजॉय किया ये सुनहरा सा नगमा, रोमानियत फैला देने वाला और दिल को एकदम मखमली कर देने वाला सुरीली आवाज लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। अब बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले नवीन राजपूत का कहना है कि क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक पल का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है, लगने लगते हैं अपने भी प्यारे और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। प्यार प्यार बस यही तो है प्यार नवीन जी। सो एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से और उनको सुनना है गाना सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए। सो एंजॉय करेंगे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में महेंद्र की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास गोंडा से रवि आपका स्वागत है।

शादी पार्टी ब्याह विदाई, ओ माय गॉड, है कितना मतलब ऐसे सैड मोमेंट ना, लेकिन हम लोग कितने अच्छे से कितनी खुशी के साथ इस पल को भी मतलब एंजॉय करते हैं, कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। वैसे हम इंडियंस होते भी ऐसे ही हैं। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे राजस्थान से महेंद्र की फरमाइश पर पढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की, उनको सुनना है गाना भीगा भीगा है समा। सो एंजॉय करेंगे ये नगमा, लेकिन उसके पहले दोस्तों राहुल का कहना है कि ना कानों पे यकीन है ना खुद पे है एतबार, सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा आरजे सिंपल जी की आवाज। Your voice is outstanding, ma'am. So thank you so much. It means really a lot. और धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि सिर को झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सिर को झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना उसे मत चाहो नहीं तो वो बेवफा हो जाएगा। So अब enjoy करते हैं कार्तिक कश्यप की फरमाइश, ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनहरा सा नगमा। Stay tuned, everyone.

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में। जी हाँ, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आप के अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजू सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, पेट पूजा करके आना, सीधे 9 बजे मिलते हैं। और इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगली फरमाइश है राहुल की, और राहुल को सुनना है, तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। तो कुमार सानू और अनुराधा जी की आवाज में इंजॉय करते हैं दिल है कि मानता नहीं पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ. के शेखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत ने विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
5: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जल भराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

धड़कन। सो क्या हाल है दोस्तों, अखियां जो हंजू रोन दे। वैसे आंखों को रोने देना चाहिए, थोड़े से बहुत इन्फेक्शन जो होते हैं आंखों के वो होने के कम चांसेस हो जाते हैं, और अगर शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई हो तो शायद वो भी कम हो जाता होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो हमने इंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा आयुष्मान खुराना का नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों, मेरे मित्रों, आप ये बताओ कि आप लोगों ने पेट पूजा की कि नहीं की। अगर नहीं की है तो जाके अभी भी समय है, अभी बहुत समय है, जाके पेट पूजा कर लीजिए। फिलहाल चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की मन का पुर से, और अरविंद को मन का पुर से सुनना है गाना। छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आर जी सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चक्कर वाले वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूंगी, इस गाने ने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया है। तो कहना ये है कि अपनी ही सांसों पर एहसान किए हैं, इन धड़कनों को बेहद परेशान किए हैं, आईने से आंखें मिलाने की जिद में अपने ही चेहरे पर निशान किए हैं, अब खुद से बेरुखी का ये आलम है कि दर्द को सीने में मेहमान किए हैं, खुद को मनाते मनाते एक शाम गुजर गई, फिर खुद से खुद को अनजान किए हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में नवीन राजपूत जी की एमपी से। नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना याद पिया के आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अरविंद कुमार की फरमाइश पर जो की है मन का पुल से। अब बढ़ेंगे चलेंगे अपने अगले फरमाइशी गीत की तरफ। ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपने अपने फरमाइशी गीतों को एंजॉय करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे और जज्बातों को इस महफिल में बिखेरते रहेंगे। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की। उनको सुनना है गाना कोई तुमसा नहीं। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा सिर्फ और सिर्फ आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

पता नहीं, हम इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है नागेश्वर धाकड़ की और उनको सुनना है गाना नैना दा क्या कसूर। सो इंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर ये वाला गाना। और इसी के साथ में इनका कहना है कि दिल के दर्द को हमने दिल में दफन किया है, अब कोई खुशी नहीं मिलती दिल को खुश देखकर, इसलिए अपनी खुशी को जमाने के नाम किया है। अब कोई आकर भी नहीं पूछेगा मेरा हाल, इसलिए अपने हालातों को अपने हालात में रखा है। सो एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पे ये वाला गाना।

बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से। निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना कितने बेचैन हो के उनसे मिले, और उनको क्या थी खबर थे हम कितने अकेले। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना, इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों, मेरे मित्रों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आर्ज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून, मिलते हैं कल, और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, अपनी बकबक गर्ल आरजे सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी का। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी हाँ, हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं शुभ संध्या आपको। और नवीन राजपूत जी मैं देख पा रहा हूँ। मनु जी जय श्री कृष्ण राधे राधे। जी हाँ, आपको भी राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पंडित आशीष शुक्ला जी को बहुत दिनों के बाद देखा। गुड इवनिंग आरजी मनु सर एंड एवरीवन। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। जी, गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना। जब साथ न दे कोई आवाज हमें देना। आसमान पे भी होंगे तो लौट के आएंगे। जी हमारा आपका साथ बरकरार रहे। और आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, क्या बात है, वो जिंदगी के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखने वाली शायर है। बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं। बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं। जो डूब जाएं उबरने का हुनर जानते हैं। बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं। जो डूब जाएं उबरने का हुनर जानते हैं। बचाए रखिए जरा हमसे नजर वरना हम। बचाए रखिए जरा हमसे नजर वरना हम। नजर से दिल में उतरने का हुनर जानते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शायर जिसको नजरों से दिल में उतरने का हुनर आता है, बात करेंगे उनकी। हमारे साथ अनूप मिश्रा जी भी हैं। क्या बात है भाई, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी। अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। रवि जी हैं गोंडा से भाई। गुड इवनिंग सर जी। रवि जी प्रणाम करते हैं आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, कौन दोहराए वो पुरानी बात। गम अभी सोया है जगाए कौन, वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं। कौन दुख झेले आजमाए कौन, अब सुकून तो भूलने में है लेकिन उस शख्स को भुलाए कौन। आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, देखिए आज याद आए कौन। जी हाँ, क्या बात है। और अगर स्थिति ऐसी बात है तो फिर ये तो मैं कहूँगा कि भुला देंगे तुम्हें भी, जरा शब्द तो रखो। अगर ऐसी स्थिति कभी बने तो कहिएगा कि भुला देंगे तुम्हें भी, जरा शब्द तो रखो। रग रग में बसे हो, थोड़ा वक्त तो लगेगा। जी हाँ, एक प्यारी सी गजल के बाद आपको शायर की ओर लेकर चलते हैं जो जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल। हो सकता है ये गजल आप बहुत दिनों के बाद सुनने जा रहे हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हो सकता है कि कुछ जो हमारे नए श्रोता हैं उन्होंने शायद इस गजल को सुना ही ना हो। आइए, तलत अजीज की प्यारी सी आवाज में हम आपको सुनाते हैं ये प्यारी सी गजल। सुनकर बताइए कि ये गजल आपको कैसी लगी। सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद।

जी हाँ, कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वास्तव में होते भी हैं, सबको पता है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक फिल्म मैंने देखी थी, मुझे याद आ रहा है, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन का डबल रोल, तो उसमें बेटा जो है वो पुलिस में हो जाता है और डेविड जिनका नाम रहता है वो बदला लेने के लिए आतुर होते हैं। अब एक का काम है उस नेता की जान को बचाना और एक ने ठान लिया है, पिता ने ठान लिया है कि मैं मारकर ही दम लूंगा। दोनों की मुलाकात होती है तो अमिताभ बच्चन जो पिता बने हैं वो लिखते हैं छे। तुमने कहा ये तुम्हारे लिए, देखो सामने वाला क्या है, ये छे है और ये मेरे लिए नौ है। जहां से तुम देख रहे हो वहां से आप सही हो, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं वहां से मैं भी सही हूं। तो स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, आप कहां खड़े हैं ये मैटर करता है। अजहर फराग एक बहुत ही बावकार नाम मुशायरों की दुनिया का, उन्होंने कहा कि कैसे दुनिया का जायजा किया जाए, कैसे दुनिया का जायजा किया जाए, ध्यान तुझसे अगर हटा लिया जाए, मतलब आप नहीं है तो फिर दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। कैसे दुनिया का जायजा किया जाए, ध्यान तुझसे अगर हटा लिया जाए, तेज आंधी में ये भी काफी है, तेज आंधी में ये भी काफी है, पेड़ तस्वीर में बचा लिया जाए, हम जिसे चाहें अपना कहते रहें, हम जिसे चाहें अपना कहते रहें, वही अपना है जिसको पा लिया जाए। मतलब आप कहने को सबको अपना कह सकते हैं लेकिन आपका है वही जो आपने पा लिया। हम जिसे चाहें अपना कहते रहें, वही अपना है जिसको पा लिया जाए, एक होने की कस्में खाई जाएं, एक होने की कस्में खाई जाएं और आखिर में कुछ दिया लिया जाए, जिंदगी मौत के दरीचे को, दरीचा बोलते हैं खिड़की को, जिंदगी मौत के दरीचे को एक पर्दा है जब उठा लिया जाए। क्यों ना आज अपनी बेबसी का फराग, क्यों ना आज अपनी बेबसी का फराग, दूर से बैठकर मजा लिया जाए। जी हाँ, खामोशी की, गम की भी अपनी एक अदा होती है और उसका भी अपना एक आनंद होता है। आप में से बहुत से लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे होंगे और मैं भी हिंदी साहित्य का एक छोटा विद्यार्थी हूँ। सुख का विलोम दुख होता है लेकिन आनंद का विलोम हिंदी में नहीं है, क्योंकि सुख शरीर से संबंधित है, दुख शरीर से संबंधित है, आनंद स्पिरिचुअलिटी की एक अवस्था है आनंद। और हिंदी साहित्य में जहां तक मैं विद्यार्थी रहा हूं हिंदी साहित्य का, आनंद शब्द का विलोम बना ही नहीं, अभी तक नहीं बना, हो सकता है आगे बन जाए। नवीन जी लिखते हैं कि प्यार करने वाले मरते नहीं, मार दिए जाते हैं। हिंदू कहते हैं मार दो इन्हें, मुस्लिम कहते हैं दफना दो इन्हें, पर कोई क्यों ये नहीं कहता मिला दो इन्हें। बहुत सही बात। और जी सप्ताज ने लिखा है, बहुत दिनों के बाद ये गजल सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आइए अब चलते हैं एक प्यारी सी गजल की तरफ। और भाई तलत अजीज की आवाज़ आपने सुनी और सविता जी आपको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं एक प्यारी सी गजल की ओर और सुनते रहिए रेडियो गणेशकी 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वास्तव में अगर देखा जाए तो मित्रों, हम लोग इस दुनिया में मुसाफिर ही तो हैं। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने जब विलियम शेक्सपियर को पढ़ा तो उन्होंने कहा, द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर द पपेट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ गॉड। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। और सभी मुसाफिर ही हैं, मतलब सबको आना है, सबको जाना है। कुछ चले गए। वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है कि रोज नया एक किस्सा कहने वाले लोग कहते कहते खुद किस्सा हो जाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे। तो हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है और जब तक उसका रोल है इस दुनिया में तब तक वो अपने रोल को निभा रहा है, अपने पार्ट को प्ले कर रहा है। और जब पार्ट समाप्त हो जाता है तो वो ऊपर वाला बहुत बड़ा गणितज्ञ है, उसने कहा कि हिसाब किताब कैसे रखें। तो उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुला लिया, कहा इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी हमको, नहीं तो हिसाब किताब में बहुत दिक्कत पड़ती। हमारे साथ सतीश वर्मा जी हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जी हाँ बिल्कुल, आपके सभी दोस्त आपके साथ हैं और आप बिल्कुल पूछिए। चलते हैं अजहर फराक साहब की तरफ। लिखा उन्होंने कि कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है। इंसान की आंखों को तो कोई भी अच्छा लग सकता है। कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है, एक रिफाकत में कहां उम्र गुजर सकती है। मतलब एक ही दोस्त के साथ, एक ही महबूब के साथ उम्र गुजर जाए तो गुजरने को गुजर जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि जीवन का वो चार्म नहीं रहेगा। एक रिफाकत में कहां उम्र गुजर सकती है, कुछ तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा। अब एक नया पहलू, तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा, ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। एक ये रिश्ता है कि हम आप एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कोई और रिश्ता रखते हैं, कोई और प्यारा सा बॉन्डिंग, प्यारी सी बॉन्डिंग हो हम सबके बीच, हम दोनों के बीच, क्योंकि ये मोहब्बत है। बहुत लोगों की अधूरी रह गई, हो सकता है हमारी भी रह जाए। मेरी ख्वाहिश है कि फूलों से तुझे फतह करूं, फतह मतलब जीतना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फूलों से तुझे फतह करूं, वरना ये काम तो

कभी ऐसा होता ही नहीं कि मतलब दो दिन एक समान हो जाए। आज थोड़ा सा शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा पूर्णमासी के दिन पूर्ण। अभी आपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया श्रावण मास की पूर्णिमा को, अगले ही दिन से घटना शुरू हो गया। घटते घटते घटते घटते घटते घटते एक दिन ऐसा आएगा कि अमावस्या की रात आ जाएगी, नो मून डे, उस दिन चांद दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो क्या चांद का भी अपना दर्द हो सकता है? हो सकता है। इस दुनिया में जितने ऐसे लोग हैं जो महसूस कर सकते हैं, उन सब का गम से रिश्ता जरूर होगा, खुशी से हो या ना हो। जी हाँ, आइए अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं भाई माजी की तरफ, इंसान की याद। और आज मुझे याद पर एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल याद आई है, तो सोचता हूँ कि आपको वो गज़ल सुनाऊँ। हो सकता है आपने भी बहुत दिन पहले सुनी हो, इस बीच ना सुनी हो, तो क्यों ना आप भी सुने और हम भी सुने ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर वो इस आवाज को पहचान चुके हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्यारी सी आवाज किस गजल के गाने वाले की है। जी हाँ, आपके उत्तर की कर रहे हैं प्रतीक्षा, देखते हैं कौन पहचानता है इस प्यारी।

0: जी हाँ, जरा देखते हैं भाई कि आवाज को हमारे किन श्रोताओं ने पहचाना है। विशाल बेदरी ने कहा है, नुसरत साहब और सविता सस्ती ने लिखा है, पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान और अरविंद जी ने केवल प्रणाम किया है। जी नहीं, एक मौका आपको पुनः देता हूँ, जरा सुनिए और बताइए कि ये आवाज किसकी है। जी हमारे साथ लगता है कोई फोन पर आ चुका है, जरा उनसे देख लेते हैं कि क्या वो जानते हैं कि आवाज किसकी है। हेलो हेलो हेलो, जहा लगता है कुछ नेटवर्क की अपनी समस्याएं हैं। तो नवीन राजपूत ने भी जवाब दिया है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। जी नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल बेदर्दी जी, आपने सही पहचाना, ये आवाज राहत फतेह अली खान की है। उन्होंने इस गजल के माध्यम से नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट दिया था। तो सांसों की माला पे सुमिरू में पी का नाम जो मैंने आपको सुनाया है वो राहत फतेह अली खान की आवाज है। और शायरी क्या है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, तो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं, तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी है। जी हाँ, एक आवाज़ हमने आपको पहचानने की दी थी और भाई विशाल जी ने पहचाना, और अब दूसरी आवाज़ मैं आपको फिर सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप आवाज़ को पहचान लेंगे। तो पहचानिए, अब ये प्यारा सा नगमा जा रहा है आपके कानों में और बताइए क्या आप इस आवाज़ को पहचानते हैं। अगर पहचानते हैं तो बताइए नाम क्या है।
1: There is an emergency.

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heel attended. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Mehr Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आसमान वाले ने चाहा तो कल 9:30 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी आपके इसी कार्यक्रम में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, दूसरी माँ। शिवानी जानती थी कि उसके पिता ने सिर्फ उसी के खातिर दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इतने सालों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर अरुणिमा के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ती देख उसके मन में उनके लिए नफरत पनपने लगी। उसने उस दिन वो सब देखा जिसे देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज से घर लौटते समय उसे डैडी अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वो औरत डैडी से बात कर रही थी उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो डैडी के बेहद करीब थी। 10 साल पहले जब शिवानी की माँ की मृत्यु हुई थी तब सारे रिश्तेदारों ने डैडी को दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, लेकिन डैडी ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी शिवानी के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा, और डैडी अपने वादे पर अब तक कायम थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो एक औरत के करीब होकर शिवानी के वजूद को अपेक्षा की गर्म सलाखों से भेद रहे थे। शिवानी को अच्छी तरह याद था कि उसके मम्मी और पापा के बीच कभी बहुत ज्यादा नहीं बनी थी। मम्मी के खानदान के मुकाबले डैडी के खानदान की हैसियत कम थी, इसीलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयां करके डैडी को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। शिवानी की समझ में आज तक ये बात नहीं आई थी कि जब डैडी और मम्मी के विचार आपस में नहीं मिलते थे तो डैडी ने उन्हें अपनी जीवन संगनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने शिवानी से चाय के लिए पूछा तो शिवानी ने मना कर दिया और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। 5 बजे के आसपास डैडी का फोन आया तो उसने अपने गुस्से पर जबरन काबू करते हुए बोला, डैडी आप इस वक्त कहाँ हैं? बेटे मैं इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ, डैडी ने बड़े प्यार से बोला। आपके साथ कोई और भी है? शिवानी ने शक भरे अंदाज में पूछा। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? क्या तुम्हें फोन पर किसी की खुशबू आ गई थी? डैडी ने हंसते हुए बोला। हाँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा तुमने अरुणिमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। शिवानी को समझते देर नहीं लगी कि डैडी के साथ कार में बैठी औरत का नाम अरुणिमा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना, शिवानी की माँ काफी साल पहले गुजर गई थी, पर रिश्तेदारों के बहुत समझाने के बावजूद उसके डैडी ने दूसरी शादी नहीं की। उनका साफ कहना था कि वो शिवानी के लिए दूसरी माँ कभी नहीं लाएंगे। पर उस दिन इतने सालों बाद अरुणिमा नाम की महिला को उसने अपने डैडी के साथ बड़े ही सहज भाव से बातें करते देखा। वो बहुत परेशान हो गई। अब आगे, डैडी के मोबाइल से शिवानी को एक औरत की खनकती आवाज सुनाई दी। अब वो आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का ये जुमला जहरीले तीर की तरह शिवानी के सीने में लगा। एकाएक उसके दिमाग की नसें तनने लगीं और उसका जी चाहा कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे। शिवानी बेटे, तुम लाइन पर हो ना? उसे डैडी का बेफिक्री से भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, वो बेजान स्वर में बोली, डैडी ये सब क्या हो रहा है? आपके साथ कौन है? बेटे मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ डैडी ने फोन काट दिया और शिवानी सोचती रह गई कि ये अरुणिमा कौन है, कि डैडी के जीवन में कब और कैसे आ गई। डैडी और अरुणिमा के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। 7 बजे शाम को काकी माँ ने उसे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी शिवानी क्या बात है, आज तुमने चाय नहीं पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी माँ, मेरी तबीयत ठीक है। डैडी आ गए? शिवानी ने पूछा। हाँ, और वो तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद शिवानी ड्राइंग रूम में आई तो उसे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज उसने डैडी के साथ उनकी कार में देखा था। अरु, ये है मेरी बेटी शिवानी। डैडी उस औरत से शिवानी का परिचय कराते हुए बोले। ना चाहते हुए भी शिवानी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना पड़ा। जीती रहो। वो खुद उठकर शिवानी के करीब आई और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसने उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन अंकित कर दिया। अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। अरु, ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना? डैडी हंसते हुए बोले। डैडी के ये शब्द पिघले शीशे की तरह शिवानी के कानों में उतरते चले गए। उसका जी चाहा कि वो अपने कमरे में जाए और खूब फूट फूट कर रोए। आखिर डैडी ने उसके विश्वास का खून जो कर दिया था। बेटी तुम क्या करती हो? अरुणिमा ने उसे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। उस वक्त शिवानी की हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत से उसे नफरत करनी चाहिए थी वो औरत उसके वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना, शिवानी के पापा ने उसकी माँ के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करी। उन्होंने शिवानी की बहुत अच्छी परवरिश अकेले ही की, पर उस दिन शिवानी के इतने बड़े हो जाने के बाद जब शिवानी ने उन्हें एक औरत के साथ देखा तो उसका दिल रोने को हो आया। और शाम को डैडी उस औरत को लेकर घर पहुंच गए और उन्होंने अरुणिमा से उसका परिचय कराया। अब आगे वो उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। काकी माँ, देखो तो कौन आया है, डैडी ने काकी माँ को आवाज दी। मैं जानती हूँ कौन आया है, काकी माँ ने वहां चाय की ट्रॉली के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ, आप! अरुणिमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई। चाय की ट्रॉली मेज पर रख कर काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी, फिर दोनों प्यार से गले मिली तो शिवानी दोनों को उलझन भरी नजरों से देखने लगी। अरुणिमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, ये बात तो शिवानी को समझ आ गई थी, लेकिन कोई सिरा उसके हाथों में नहीं आ रहा था। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं, शिवानी ने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही डैडी बोल पड़े, बेटी अरुणिमा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है, हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी अरुणिमा जी ने डैडी की ओर इशारा किया तो डैडी ने फौरन अपनी बात पलटी और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब शिवानी के समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि मम्मी डैडी के बीच ऐसा क्या था जो वो एक दूसरे से बात करना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे। निसंदेह डैडी शादी से पहले इसी अरुणिमा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान शिवानी ने अरुणिमा जी से काफी बातें की। वो बहुत जहीन थीं, वो हर विषय पर खुलकर बोल सकती थीं। उनके नॉलेज को देखकर शिवानी के मन में उनके प्रति कुछ देर पहले तक जमी नफरत की बर्फ तेजी से पिघलने लगी थी। उनकी बातों से शिवानी को ये भी पता चला कि वो एक प्रोफेसर थी। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना कहने को इकलौता बेटा नितिन था जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। डिनर करने के बाद जब अरुणिमा जी गईं तो शिवानी अपने कमरे में आ गई। शिवानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस उम्र में डैडी अरुणिमा जी से शादी करके दीन दुनिया की नजरों में उपहास का पात्र बने। सुबह टेलीफोन की घंटी से शिवानी की नींद खुली। उसने फोन उठाया तो उसे अरुणिमा जी की मधुर आवाज सुनाई दी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना शिवानी के पापा, जो इतने सालों से माँ के जाने के बाद अकेले थे और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। शिवानी के इतने बड़े होने के बाद अरुणिमा जी को लेकर एक दिन घर पहुंचे और शिवानी को ये पता चला कि वो उसके डैडी की कॉलेज टाइम की फ्रेंड हैं। ये सारी बातें शिवानी के दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थीं और उसे बहुत परेशान कर रही थीं। अब आगे, स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, वो जरा संभल कर बोली। कहिए, कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है तो तुम मेरे घर आ जाओ, खूब बातें करेंगे। सच कहूं तो बेटे, कल तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बोली। लेकिन आंटी, डैडी की इजाजत के बिना शिवानी ने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे डैडी से मैं बात कर लूंगी, वो बड़े हक से बोली, वो मना नहीं करेंगे। उस पल जहन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था जिससे उसे बेहद नफरत होनी चाहिए, वो धीरे धीरे उनके करीब क्यों होती जा रही थी। एक घंटे बाद वो अरुणिमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो उसे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बैठाया। इसके बाद वो उसके लिए नाश्ता बना लाई। नाश्ते के दौरान शिवानी ने उनसे पूछा, आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। सच कहूं तो मैं कल से आपके बारे में ही सोचे जा रही हूं। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ये कहकर शिवानी उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका और हुनर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वो उसे मोहब्बतों का आईना जान पड़ रहा था। उनके सलीके और हुनर को देखकर शिवानी के दिल में एक होक सी उठ रही थी। वो सोच रही थी, काश उनके जैसी उसकी भी माँ होती। शाम होते ही डैडी शिवानी को लेने आ गए। रास्ते में उसने डैडी से पूछा, डैडी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? डैडी ने बड़ी हैरानी से उसे देखा, फिर आहत भाव से बोले, बेटे, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो तुम आज ऐसी बात कर रही हो? तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप अरुणिमा जी से प्यार करते हैं ना? शिवानी ने बिना किसी भूमिका के कहा। डैडी पहले काफी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ये सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। ऐसी बात थी तो आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? शिवानी बोली, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मुझे अरुणिमा से शादी करने के लिए मना कर दिया। मैं तो उनके खिलाफ जाकर भी अरुणिमा से शादी करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से शादी करने से अरुणिमा ने मना कर दिया और इसीलिए हमारी शादी नहीं हो पाई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दूसरी माँ। अब तक आपने सुना, शिवानी के डैडी ने उसे एक औरत से मिलवाया जो उनकी कॉलेज की दोस्त थी। शिवानी की माँ को ख़त्म हुए बहुत साल हो गए थे और अब इस तरह अपने पापा की दोस्त से मिलना उसे बहुत उलझन में डाले हुए था। लेकिन न जाने क्यों वो खुद उनसे करीब होती चली जा रही थी। अब आगे, कुछ दिन पहले वो मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उसका एक लड़का है। अरुणिमा के तुम्हारी मम्मी बनने से कोई एतराज नहीं है। लेकिन डैडी, मुझे एतराज है, शिवानी कड़े स्वर में बोली। क्यों? डैडी की भवें तन गईं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जगह साई हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है, डैडी सख्ती से बोले। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा। तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है। उस वक्त शिवानी को अपने डैडी इतने बेकार इंसान लग रहे थे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दो दिन पहले ही अरुणिमा जी का इकलौता बेटा नितिन लंदन से वापस लौटा। नितिन के बारे में शिवानी सिर्फ इतना ही कह सकती थी कि वो तो जैसे उसके सपनों का राजकुमार था, जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने की कल्पना करती थी। कितनी अजीब बात थी, जिस पिता को शादी की उम्र की दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए था, वो अपने बारे में सोच रहे थे। उस दिन अरुणिमा जी खरीदारी के लिए शिवानी को भी अपने साथ ले गईं। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन डैडी के कहने पर उसे जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब अरुणिमा जी ने एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे तो शिवानी को उनसे नफरत होने लगी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर ये सब हुआ तो वो सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाएगी। ये बात उसे पता चल गई थी कि डैडी को अरुणिमा आंटी को उसकी माँ बनाने का फैसला लेने वाला दिन 28 नवंबर तय हुआ था और ये शादी बहुत ही सादगी से गिने चुने लोगों के बीच में होनी थी। 28 नवंबर को सुबह होते ही वो सबको छोड़कर जाने की पूरी तैयारी करने लगी। उसने सोच लिया था कि डैडी जैसे ही अरुणिमा आंटी के साथ फेरे लेंगे वो कहीं चली जाएगी। दोपहर को जब वो अपने कमरे में मायूस बैठी थी तभी काकी माँ ने कुछ सामान उसके हाथ में लाकर रखा और धीमे से बोला, ये कपड़े तुम्हारे डैडी की पसंद के हैं जो उन्होंने अरुणिमा बेटी से खरीदवाए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। शिवानी काकी माँ से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो कमरे से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद शिवानी ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहां काफी मेहमान बैठे थे। मेहमानों की गहमा गहमी देख कर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो सोफे पर बैठी ही थी कि अरुणिमा जी आ गईं। उनके साथ नितिन नहीं था। शिशिर, हमें इजाजत है? उन्होंने डैडी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखना, डैडी भावुक स्वर में बोले। तभी वहां नितिन ने कदम रखा जो दूल्हा बना हुआ था। शिवानी का सिर घूम गया। उसने उलझन भरी निगाहों से डैडी की तरफ देखा तो वो उसके करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अरुणिमा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से अरुणिमा आंटी तुम्हारी मम्मी है, इन्हें हमेशा खुश रखना बेटा। एकाएक शिवानी की रोलाई फूट पड़ी। वो डैडी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर नितिन की हमसफर बनकर वो अरुणिमा जी की बेटी बन गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी दूसरी माँ। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे ही गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आप ये खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक्स को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

एलिशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था एलिशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ एलिशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो एलिशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर एलिशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में ब्लैक तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन एलिशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि एलिशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपर हिट से भी सुपर हिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपत की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपत मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है, 2006 में आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं